मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 आषाढ़ माह की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 37 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी पहली सभा।

0: अलग काज, हाथ पैर से कम काज लेबाक प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ़ल जा रहल अछि। थोड़बो दूर जेबाक हो तब वाहन चाही, हाथ से काज नहीं करे पड़े एहि लेल नाना प्रकारक मशीन उपलब्ध अछि। घर में जात उखरि लोढ़ी सिलौट आदिक उठाव भेल जा रहल अछि। गृहिणियों लोकन के कम से कम शारीरिक श्रम करे पड़नि एहि लेल विज्ञान सतत सचेष्ट अछि। आधुनिक विज्ञानक दोसर हानिकारक पक्ष ई अछि जे ओ मनुष्य के प्रकृतिक प्रतिकूल आचरण करबा लेल प्रोत्साहित करै छै। स्थिति ई अछि जे प्रकृतिक समांतर जीवन शैलीक विकास भऽ रहल अछि जे मानव जातिक लेल नितांत अहितकर अछि। विकासवादक मते जे प्राणी परिस्थिति सँ स्वयं के समायोजित करय में असमर्थ रहै छै ओ लुप्त भऽ जाइ छै। पृथ्वी पर जैव विकासक यह क्रम रहल अछि। हिम युग सँ पूर्वक कतिपय विशालकाय जंतु आब पृथ्वी पर नहीं देखल जाय छै, आब ओकर जीवाश्म अवशिष्ट छैक। गीता में कहल गेल अछि जातस्य ध्रुवो मृत्यु हो, जे जन्म धारण केलक अछि ओकर मृत्यु निश्चित अछि। एहि मत में आ विकासवादक सिद्धांत में पूर्ण मतैक छैक। मात्र व्यक्तिये लुप्त हो से नहि, प्राणीक प्रजाति विशेष सेहो लुप्त होइ छै। मानव जैव विकासक कड़ी में अद्यतन प्राणी थिक। विकासवादक सिद्धांत वा गीताक मत मनुष्यों पर उत्वा घटित होइच जतवा कोनो अन्य प्राणी पर। वैज्ञानिक मनुष्यक भविष्य के लऽ कऽ चिंतित छथि। मानव आय भौतिक सुख सुविधाक हेतु जे किछु कऽ रहल अछि ओ यद्यपि प्रकटतः सुखकर बुझना जाइच, मुदा ओकर अंतिम परिणति कोन रूप में हैत कि ओ अंततः मानवक लेल कल्याणकारी सिद्ध हैत वा विनाशकारी, ई एक गोट विराट प्रश्न चिन्हक रूप लऽ लेलक अछि। शहरी जीवन के लिए शहरी जीवन आइ अस्वास्थ्यकर भऽ गेल अछि। मोटर वाहनक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हानिकर गैस जीवनी शक्तिक निरंतर क्षय कऽ रहल अछि। अद्यतन शोधक अनुसार मोटर वाहनक यात्री के कैंसर हेबाक विशेष संभावना रहै छनि। आधुनिक जीवनक व्यस्तता निरंतर बढ़ रहल अछि आ पैरे चलबाक अपेक्षा वाहनक उपयोग करब अधिक प्रचलित अछि। सुविधा प्राप्त समाज में टिन में बंद खाद्य सामग्री लोकप्रियता प्राप्त कऽ रहल छैक। मानव श्रमक मूल्य दिनानुदिन घटि रहल अछि आ आब तऽ मानसिके श्रम कम से कम करबाक प्रवृत्ति सेहो बढ़ल जा रहल अछि। कंप्यूटर सँ गणित कऽ लिय, डाटा संकलन कऽ लिय, सुनबा में आयल अछि जे कंप्यूटर उपन्यास लिखबा में समर्थ अछि। आप कहू जे जँ सब प्रकारक मानसिक वा दिमागी काज मशीने करत तऽ मस्तिष्कक कोन उपयोग रहि जतैक? ई एकटा एहन प्रश्न अछि जकर उत्तर संसारक बुद्धिजीवी वर्ग के ताकक छनि। प्रश्न सँ सब केओ अवगत छथि मुदा समाधान किनको नहि भेट रहल छनि। डार्विनक कहब छैक जे प्राणी जाहि अंगक उपयोग जतेक कम करैत अछि ओकर ओ अंग ओतेक निर्बल होइ छै। जँ प्राणी पैरक उपयोग नहि करतैक तऽ कालांतर में ओकर पैर निर्बल भऽ जतैक। संभव अछि दीर्घ कालोपरांत मानव जाति पैर विहीन भऽ जाय। तहिना हाथोक लोप भऽ जतैक जँ मनुष्य हाथ सँ काज नहि लिए। जँ दिमागक उपयोग नहि कयल जतैक तऽ दिमाग वा जकरा मस्तिष्क कहै छियै सेहो की भऽ कऽ रहतै कहब कठिन अछि। की एहन स्थिति वांछनीय अछि जे मानव जाति हाथ पैर मस्तिष्क विहीन भऽ जाय?
1: चिंतन आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा, खरीफ सूर्यमुखी की उन्नत खेती। वाचन स्वर गोपी चंद झा का है।
2: कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। खरीफ सूर्यमुखी के बाओ जूनक अंतिम सप्ताह से

0: ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है चिंतन, आधुनिक वैज्ञानिक। आलेख व वाचन सुरेंद्र झा का है।
1: आधुनिक विज्ञान मनुष्य के भौतिक सुविधा देबाक नाम पर ओकरा शारीरिक निष्क्रियता दिस प्रेरित

0: प्रलय के मध्य धरि होइत अछि। बिया दर 405 किलो प्रति हेक्टेयर राखि कऽ पाती मे 45x30 सेंटीमीटरक दूरी पर बाउ करी। खेत मे जल निकासी के नीक व्यवस्था हेबाक चाही, किया तऽ बेसी वर्षा सँ फसिल खराब भऽ सकत। खेतक तैयारी और जलवायु, सूर्यमुखी के लेल खेतक नीक जोताइ कऽ माटि के भुरभुरा बना ली और पाटा लगा कऽ समतल कऽ ली। खरीफ मौसम मे तापमान मे बेसी नमी होइत अछि, एहि लेल खेत मे जल नहि रुकबाक चाही। फसिल के जल भराव सँ बचेबाक लेल मेर विधि सँ बाउ केनाइ सबसँ उत्तम रहैत अछि। उन्नत किस्म, अपन क्षेत्रक कृषि विशेषज्ञ सँ सलाह लऽ कऽ संकर किस्मक चुनाव करी। आ प्रमुख उन्नत किस्म और संकर किस्म एहि प्रकार अछि: संकर किस्म सूर्या KBSH1, MSFH8 और DR SH1, उन्नत किस्म मॉडर्न PSC 36 और ज्वालामुखी। बीज उपचार और बाव, बिया जनित रोग सँ बचावक लेल बाव सँ पहिने बिया के उपचारित केनाइ आवश्यक अछि। प्रति किलो बिया के 3 ग्राम थैरम या केप्टान सँ उपचारित करी। बिया के मात्रा 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर राखी। दूरी पाती सँ पाती 45-60 सेंटीमीटर और गाछ सँ गाछक दूरी 30 सेंटीमीटर राखी। गहराई बिया के 4-5 सेंटीमीटर सँ बेसी गहीर नहीं बाउ करी। खाद और उर्वरक प्रबंधन, बाउ के समय प्रति हेक्टेयर लगभग 10-15 टन सरल गोबरक खाद खेत में मिलावी। रासायनिक उर्वरक में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटासक उपयोग निश्चित रूप से करी। सूर्यमुखी एकटा प्रमुख तिलहनी फसल अछि, जकर खेती मुख्य रूप से एकर उच्च गुणवत्ता वाला तेल और पौष्टिक बिया के लेल कयल जाइत अछि। एकर बिया में लगभग 38-45% तक तेल पाओल जाइत अछि, जे हलुक, स्वास्थ्यवर्धक और असंतृप्त वसा सब भरपूर होइत अछि। यह कारण अछि कि घरेलू उपयोग के संग संग खाद्य उद्योग में सूर्यमुखी तेलक मांग लगातार बनल रहत। भारत में सूर्यमुखी के खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में कयल जा सकत अछि। परंतु सिंचाई के सुविधा वाला क्षेत्र में जायद मौसम फरवरी मार्च के सबसे उपयुक्त मानल जाइए, किया तो एहि समय तापमान और आर्द्रता फसिलक लेल अनुकूल रहते, तथा रोग और कीट का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होते। सूर्यमुखी कम अवधि 90-100 दिन में तैयार होय वाला फसिल अछि, एहि लेल किसान एकरा मुख्य फसिल के साथ साथ फसिल चक्र में सेहो आसानी से शामिल कर सकते। उचित किस्म, समय पर बाव, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और पटौनी अपनेला पर किसान प्रति हेक्टेयर नीक उपज और बेहतर लाभ पाबि सके छे। सूर्यमुखी के जे खेती होइत अछि, ओ एही सवाल सबसे बेसी अहाँ उठैया कि सूर्यमुखी एकटा बहुमौसमी फसल अछि, जकरा खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम उगाओल जाइत अछि। परंतु कोन मौसम में खेती करबाक चाहिए, यहाँ के राज्य जलवायु और पटौनी की उपलब्धता पर निर्भर करैत। खरीफ मौसम में सूर्यमुखी के जे खेती होइया, ओ बाव सामान्यतः जून से जुलाई के बीच होइत अछि। ई फसल वर्षा पर आधारित क्षेत्र में कयल जाइत अछि, एकर लाभ यह कि वर्षा के जल उपलब्ध रहिए, अब पटौनी पर कम खर्चा आबैत अछि। नुकसान ये कि बेसी वर्षा से जल भराव भ सकैत अछि, रोग और कीटक प्रकोप बढ़ सकैए, फूल छोटगर बन सकैए और दाना के गुणवत्ता सेहो प्रभावित भ सकैए। रबी मौसम में बाव एकर अक्टूबर से नवंबर के बीच कयल जाइत अछि, जेठम सर्दी में हलुक ठंड पड़ैत अछि और पटौनी उपलब्ध होइत अछि, ओहिठाम ई मौसम नीक मानल। एकर लाभ अछि कि मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहिए आ गाछ के बढ़वार जे ओ नीक होइ। आ पाला वाला क्षेत्र में सावधानी बरतबा चाहिए। आ जायद मौसम में बाव फरवरी के दोसर पखवाड़ा से मार्च तक कयल जाइत अछि। कृषि विशेषज्ञ के अनुसार ई सूर्यमुखी के खेती का सबसे नीक समय मानल जाइए। जायद मौसम सबसे नीक एहि लेल मानल जाइत अछि कि तापमान फसिल के लेल अनुकूल रहैत अछि, रोग और कीट का प्रकोप कम होइत अछि, परागण बेहतर होइत अछि, बिया में तेलक मात्रा बेसी होइत अछि आ उपज सामान्यतः खरीफ के तुलना में बेसी भेटैत अछि। आ सूर्यमुखी एकटा एहन तिलहनी फसिल अछि जे विभिन्न प्रकारक माटि में उगाओल जा सकैए। एहि के संग कृषि चर्चा का समय संपन्न भेल। गोपी चंद्र झा की आज्ञा दिया, नमस्कार।
1: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है, ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसद

0: केंद्रीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना आरकेल।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा, विषय है हार्ट अटैक, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण।
4: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर

0: ज्योति प्रकाश कर्ण से जानकारी प्राप्त करते हैं हार्ट अटैक यानी हृदय आघात के बारे में। डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, ये हृदय आघात यानी हार्ट अटैक है क्या?
1: हार्ट अटैक का कारण है कि जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसमें रुकावट हो जाना, सडनली बंद हो जाना, और वो बंद होने के कारण जो हार्ट को सप्लाई कम से कम हो जाता है, इस कारण से छाती दर्द ये सब होने लगता है, ये हार्ट अटैक है आपका।
0: कारण क्या है?
1: जो 90% जो कारण है वो है प्लाक, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना हार्ट में, और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का जमा होकर फट जाना, इस कारण सडनली वो बंद हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे मेन कारण होता है हार्ट अटैक वाले का।
0: कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी?
1: चर्बी, चर्बी।
0: सिम्टम्स क्या है, लक्षण?
1: लक्षण में जैसे छाती में दर्द होना, छाती में ही नहीं, आपका जबड़ा से लेके पेट के अपनी ऊपर हिस्सा तक दर्द होना हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको दोनों बाहों में दर्द होना, खासकर बाएं बाहों में दर्द होना, पीछे दर्द होना, बैक में दर्द होना, कहीं भी आपको ऊपरी छाती के आसपास में बाह के रीजन में दर्द होता है, ये हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको अत्यधिक गैस बनना, गैस भी लक्षण है। तीसरा चीज़ जो है वो पसीना आना, सडनली पसीना आ रहा है, आप बेहोश हो रहे हैं सडनली, आपका सांस फूल रहा है, तो ये सब अमूमन लक्षण होता है हार्ट अटैक का।
0: हार्ट अटैक के लिए खतरे की बातें क्या है?
1: सबसे जो रिस्क फैक्टर जेनेटिक होता है, हमेशा हम पूछते हैं कि भाई आपको फैमिली हिस्ट्री क्या है हार्ट अटैक की। लोग कहते हैं भाई हम तो कुछ नहीं करते लेकिन अटैक हो गया, तो बड़ा रिस्क फैक्टर एक फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद आपका आता है लाइफ स्टाइल, बैड हैबिट्स, सिगरेट का पीना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाना, नहीं टहलना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये रिस्क फैक्टर हो गया। आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो नॉर्मली स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्सेसिव फैटी फूड, लैक ऑफ वॉकिंग और जेनेटिक फैक्टर, ये सब जो फैक्टर है अटैक को बढ़ाता है।
0: अल्कोहल,
1: शराब जो है आपके सब ऑर्गन को खराब करता है, इसलिए बिल्कुल दूर ही रहें इससे, शराब से बिल्कुल दूर रहें।
0: खतरे में कौन है? डायबिटिक लोग या जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, क्या वो हार्ट अटैक के लिए?
1: जी बिल्कुल, डायबिटिक में क्या होता है कि आपका एक पहले से टेंडेंसी है, आर्टरी नैरो होता है। जो नॉर्मल डायबिटिक आदमी, नॉर्मल पर्सन में और डायबिटिक पर्सन में लोग एंजियोग्राफी करते हैं, डायबिटिक्स का आर्टरी पहले से ही पतला होता है, डिफ्यूजली डिजीज होता है वो, तो हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है डायबिटिक में, पहली बात। दूसरी बात है कि डायबिटीज वाले को ब्लॉकेज जो होता है एक आर्टरी में नहीं, वो मल्टीपल आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, एक साथ सब आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है। तीसरी बात, डायबिटीज वाले को ज़्यादातर आपको बाईपास की सलाह दी जाती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज रहता है। तो नंबर वन, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, खासकर जो यंग स्मोकर्स जो होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं 40 साल से पहले, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें अटैक के बाद कॉम्प्लिकेशन चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि कोलेटरस नहीं बना होता है। कोलेटरस एक होता है जो कि एक बन जाता है कभी कभी ओल्ड एज में, लेकिन यंग में होता नहीं कोलेटरस, इसलिए चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है आपकी यंग पर्सन में।
0: जांच क्या करवाते हैं इसके लिए?
1: जी, शुरुआती जांच में जैसे एक ECG हो गया, ECG में हम लोग नॉर्मल आपका ECG करते हैं, फिर आपका एक ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, इसमें हम लोग ECG लगाते हैं और आपको एक मशीन होता है ट्रेडमिल करके, उसमें चला के देखते हैं कि भाई चलने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद एक इकोकार्डियोग्राफी जांच होता है, फिर हम लोग जो कंफर्म करते हैं वो एंजियोग्राफी से करते हैं। एंजियोग्राफी नॉर्मली एक सुई के द्वारा होता है, बहुत छोटी सी जांच है, सुई के साइज़ का एक नीडल होता है जिसको हम लोग हाथ की नस या पैर की नस में घुसा के हार्ट तक पतली सी कैथेटर ले जाते हैं, जहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट और डाई डाल के देख लेते हैं कि कितना कितना ब्लॉकेज है सब में।
0: और उसके बाद अगर कंफर्म हो गया कि ब्लॉकेज है तो फिर ट्रीटमेंट क्या है?
1: ट्रीटमेंट जो अटैक का है, दो तीन तरह का ट्रीटमेंट है। जो शुरुआती ट्रीटमेंट था वो हम लोग रेस्ट था खाली, उसके बाद इवॉल्व थोड़ा सा और आगे आया तो हम लोग का मेडिकल थ्रोम्बोलिसिस आने लगा, जिसमें कि दवाई के द्वारा घुलने लगा आर्टरी, लेकिन उससे चांसेस था ब्रेन हेमरेज होने का ज़्यादा। अब जो सबसे अच्छा इलाज है वो है हम लोग का एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जैसे ब्लॉकेज हुआ उसमें क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू ही एक पतली तार घुसा देते हैं आर्टरी में, बैलून से उसको खोल देते हैं और वहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं।
0: जी, जिन्हें एक बार अटैक आ गया है उनके लिए क्या दूसरी बार या तीसरी बार अटैक होने का खतरा ज़्यादा होता है?
1: बिल्कुल ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल आदमी है जिसको अटैक आ चुका है वो भी एक रिस्क फैक्टर ही है, जैसे आपका हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर, ऐसे एक प्रीवियस अटैक भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है।
0: लाइफ स्टाइल के बारे में, खान पान, रहन सहन,
1: जी
0: ये सारी चीज़ें,
1: बिल्कुल आपका समय से सोना सबसे इम्पोर्टेंट है, समय से जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जागने के बाद जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, जैसे कि वॉक करना है, योगा करना, प्राणायाम करना, वो करना जरूरी है। आप डाइट ले, आप संतुलित आहार ले, अपना फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ये सेवन बढ़ाएं, फैटी चीज़, ऑयली चीज़, तला भुना चीज़ कम ले, मीठी चीज़ का भी, जैसे पहले नमक कम था, आप शुगर कम भी हम लोग कहते हैं, मीठी चीज़ कम से कम ले, डायबिटिक नहीं है तो भी कम ले आप।
0: चलते चलते क्या सलाह देंगे?
1: बिल्कुल हार्ट से अटैक से घबराए नहीं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है लेकिन सबसे खतरनाक ये चीज़ है, बिल्कुल सब लक्षण को नज़रअंदाज न करें।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे हरिहरण, जगजीत सिंह और मोहम्मद रफी। इसी के संग भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, प्रमुख स्वर ए हरिहरण का है।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिवजी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम पांच वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। प्रातः 8:00 सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का समय होगा प्रातः 8:15 पर। खबरनामा का प्रसारण करेंगे प्रातः 8:30 पर। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा प्रातः 8:48 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे प्रातः 10:00। प्रातः 10:30 पर सुनिएगा विद्यापति गीत। प्रातः 11:00 सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत, इसके अंतर्गत आज सुनिएगा पंडित जसराज से गायन। NCERT या प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:30 पर। दोपहर के 12:00 आप आनंद ले पाएंगे नए फिल्मों के गानों का। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार सुनिएगा दोपहर के 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर हम सुनवाएंगे देशभक्ति गीत, आवाज होगी मन्ना डे की। दोपहर 1:15 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। हमारे पटना केंद्र से दोपहर के 2:03 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इलाकाई खबरों का समय होगा दोपहर के 2:05 पर।

रोजगार सूचना, समय होगा दोपहर 2:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप पुनः फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे। हमारी पहली सभा के अंत में आप सुनिएगा लोकगीत, समय होगा 2:03। पहली सभा का आरंभ होगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी से, समय होगा 5:00। संध्या 5:40 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। विद्यापति गीत का आनंद लीजिएगा 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे 6:25 पर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर अनुभव के चश्मा सर। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। खेती गृहस्थी का समय होगा 7:00। 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। 7:47 पर सुनिएगा जिले की हलचल। बिहार विधानमंडल समीक्षा, यह प्रसारण किया जाएगा पटना केंद्र से, समय होगा 7:50 पर। 8:00 रात्रि में सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा। रात्रि के 8:15 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम सिंगरहार। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 और रात्रि के 9:15 पर सुनिएगा उर्दू खबरनामा। पब्लिक स्पीक, यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि के 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रात्रि के 11:00 हिंदी समाचार और रात्रि के 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ ही देर में समाचार का प्रसारण होगा, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और

0: राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मॉल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत आ हमारा संगे शुरू में उपस्थित सागर अहूँ का नमस्कार।
1: नमस्कार रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में।
0: और

0: जेना श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार सँ। सबसे पहले आजुक सुविचार, श्रद्धावानम ज्ञानम लभती। मतलब जे श्रद्धावान लोक छथि ओ हमेशा ज्ञान के लाभ लेबाक प्रति अपन उत्तरदायित्व के जिम्मेदारी के निर्वहन करै छथि, और जे जिनका कोनो श्रद्धा नहि छनि ओ अपने मियाँ मिठू बनैत रहै छथि, हुनका ज्ञान सँ कोनो मतलब नहि छनि, ओ छोट मोट पोखरि जकाँ कनिये में उपजुब करऽ लागै छथि। तो हमरा लोकन के श्रद्धावान बनबाक चाही, और जत ज्ञान के अथी होय ओत ज्ञान के सकारात्मक रूप सँ ध्यान रखबाक चाही।
1: बिल्कुल सही, जो झुकते हैं, जो नमन करते हैं, उन्हीं के पास प्राप्ति होती है, उन्हीं के पास झुक करके लोग भी आते हैं।
0: जी जी, और देखियो खैर अपना ओहिठाम तब सागर एक चीज के अपना ओहिठाम तक परम्परा छलै है, गुरुकुल के और गुरु शिष्य के परम्परा कते नीक आदर सम्मान के छलै है। आइ काल्हि के तऽ आब शिक्षक आ गुरु के निजी स्कूल से लऽ कऽ सरकारी स्कूल तक के हम बात करै छी, जे स्थिति सब गोटे देख रहल छियै।
1: कोनो बिल्कुल उस समय ज्ञान को देना और ज्ञान को प्राप्त करना ये संस्कार माना जाता था, किंतु आज हम लोगों ने भौतिकवादी युग में हमने उसे बना दिया है कि व्यापार है, व्यापार है वो,
0: व्यापार, व्यापार।
1: तो बिल्कुल, तो इस दृष्टिकोण से लोग देखने लगे हैं सभी चीजों को। और गुरुकुल की, गुरु शिष्य की परंपरा जो थी वो शिष्य उनके यहाँ रहता था, गुरु माता और गुरु जी के पास रहकर, यानी एक परिवार वाला नाता था, और ये पारिवारिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है।
0: तय नहीं, व्यावसायिक रूप अलग, आइए मान लीजिए हमारे लोग कहने देखै छी जे लोग डॉक्टर इंजीनियर भऽ जाइ छथि लेकिन अपन डिप्रेशन के नहीं हटा पाबै छथि।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा कौन काज के। फिलहाल कार्यक्रम में आगा हमारे लोग बढ़े छी, और जना कि श्रोता लोग बुझल छन कि एक नजर राखै छी आजुक दिनक इतिहास पर, और जानकारी साझा करै छी जे आजुक दिन कि खास महत्व रखैत अछि हमरा राष्ट्र में, हमरा समाज में। और बताबैत छी, जानकारी साझा करै छी जे आइए के दिन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के योजना के तहत बंगाल के विभाजन के औपचारिक मंजूरी देने छल। एकरा तहत बंगाल के पूर्वी बंगाल, आसाम और पश्चिम बंगाल के बांटल गेल छल। ब्रिटिश सरकार एक कदम के देश भर में व्यापक विरोध सेहो केने छल। आइए के दिन 1969 में नासा के अपोलो 1 मिशन के लूनर मॉड्यूल ईगल चंद्रमा पर उतारल गेल छल। अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्र सतह पर पहुंचल छला है, जखन कि माइकल कॉलिंस कक्षा में रह गेला। किछ घंटा के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम राखे वाला दुनिया के पहिल मानव होबाक रिकॉर्ड बनेने छला है। बात करै छी हम जे हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेता में से एगो राजेंद्र कुमार के जन्म आइए के दिन 1929 ईस्वी में सियालकोट में भेल छलन है। विभाजन के बाद हुनकर परिवार भारत आबि गेल छल। मदर इंडिया, धूल का फूल, मेरे महबूब, संगम, आरजू और सूरज जकां बहुत सारा सुपर स्टार फिल्म ओ देलनि। 1960 के दौरान में हुनकर लगातार सफल फिल्म के कारण हुनका जुबली कुमार सेहो कहल जाय छलन है। ओ निर्माता सेहो रहला, और फिल्म लव स्टोरी बड़का हिट फिल्म हुनकर साबित भेल छलन है। राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा के रोमांटिक और पारिवारिक फिल्म के लोकप्रियता बढ़ावे में महत्वपूर्ण योगदान देने छला है, और 12 जुलाई 1999 ईस्वी में मुंबई में हिनक निधन सेहो भऽ गेल छलन। तो छल आजुक दिनक इतिहास जे हमारा लोकन श्रोता लोकन से जानकारी साझा केलों। और आजुक नमस्कार मिथिला के अंक में हमारा लोकन अब सीधा एक डेगा और आगा बढ़ाबे छी। पहले मैथिली गीत के आनंद ले छी, ओकरा बाद फिर जे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम के हमारे परिपाटी रहल है वही हिसाब से हमारा लोकन आगा डेग बढ़बत रहब, मुदा ताई से पहले सुने छी सुंदर सन मैथिली गीत।
1: चलिए श्रोताओं के पास भेजते हैं यह खूबसूरत सा गाना।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुगम संगीत का आनंद ले रहे थे मैथिली में, जानकी देवी का स्वर था। और अब नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में समय हो चला है कि हम जानें अपने सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को। तो चलिए सुनते हैं रंजीत कुमार झा से हालचाल।
3: धन्यवाद सागर, नमस्कार। राज्य में कमजोर मानसून और सिंचाई के लिए पानी के संकट किसान के लिए चिंता बढ़ावा लागल है। अखन तक 5 जिला में धान के 5% से कम रोपनी भेल है। कृषि विभाग के ताजा आंकड़ा के अनुसार प्रदेश में अखन तक कुल 39% धान के रोपनी भ सकल है। 5% से कम रोपनी वाला जिला में जमुई, नवादा, गया, भोजपुर, औरंगाबाद सम्मिलित कल गए। हालांकि अखन तक पिछला वर्ष के तुलना में अधिक रोपनी भेल, जबकि सर्वाधिक रोपनी उत्तर बिहार के जिला में भेल है, जिसमें पंचायत के सीमांचल में रोपनी की स्थिति निक बनल है। पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज और सीतामढ़ी जिला इसमें शामिल है। राज्य के विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार के बढ़ावा देबा के लेल राज्यपाल सचिवालय के स्तर से मुहिम चलाओल जाए। एकरा लेल राज्यपाल सब कुलपति के अलग से सेल गठित करबाक निर्देश देलन है। अही महीना के अंत तक प्रत्येक विश्वविद्यालय से विशेषज्ञ नोडल अफसर तैनात कर देल जाए, जे शोध और नवाचार के बढ़ावा देबा के लेल काज करता। राज्यपाल सचिवालय के कुलपति पत्र लिख कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के गाइडलाइन के आलोक में शोध नवाचार के बढ़ावा देबा के लेल एगो पूरी योजना तैयार करबा के लेल कहल गेल है। राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शीघ्र योजना के तहत सब उच्च शिक्षण संस्थान में आब शोध कार्य केनाय जरूरी भ गेल है। केंद्र सरकार के वित्तीय मदद से अब बिहार राज्य के 369 गो प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्र के लिए नवका छात्रावास बनाओल जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखिंदर कुमार रौशन रवि को आशय की जानकारी पठौलन है। इससे पहले वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से नवका दिल्ली में भेंट दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थी के लिए छात्रावास के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के देने छला है। राज्य के सब राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के तकनीक शिक्षा के आधुनिक बनाबा और युवा के रोजगार के लिए तैयार करवा के लिए इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम चालू कल जाए, जाहि में रोजगार परक पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप पर ज्यादा फोकस कल जाए। एकरा मद्देनजर श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग व्यापक योजना तैयार कलक है। ITI के विद्यार्थी के पढ़ाई के दौरान आधुनिक उपकरण, इंटर्नशिप और डिजिटल तकनीक AI के व्यवहारिक ज्ञान से हो दिल जाए, ताकि पास आउट होते हुनका तुरंत रोजगार भेट सकें। सरकार खनिज स्टोरेज लाइसेंस के नियम के एगो बड़का करा रूप दिलक है। एक और जतव व्यवसाय के आकार के आधार पर CCTV, धर्म काटा और विभागीय पोर्टल

0: जुड़ाव अनिवार्य कर देल गेल है, ओतहि लघु मध्यम और बड़का व्यवसायी के तीन गो अलग भाग में बांटल गेल है। ओकरा लेल खनिज भंडार के लेल नियम सेहो निर्धारित कर देल गेल है। खान एवं भूतत्व विभाग एहि संबंध में आदेश जारी कर देलक है। एकर उद्देश्य खनिज के भंडारण परिवहन के पूरी प्रक्रिया के पारदर्शी बनेनाइ और अवैध खनन पर रोक लगेनाइ है। देखल जा रहा है अवैध खनन के कारण नदी पर विशेष बेजोर सेहो पड़ि रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी घोषणा कैलन है कि बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर नवका विश्वविद्यालय स्थापित कैल जाए। वो कहलन है कि राज्य सरकार सिर्फ नवका विश्वविद्यालय नहीं बना रहा है बल्कि बिहार के भविष्य में मजबूत नींव सेहो तैयार कर रहा है। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोल लेवा के बाद राज्य भर में 551 सरस्वती विद्या निकेतन के शुरुआत सेहो कैल जाए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ में संदमारी के मामला सामने अबते बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अलर्ट मोड पर आ गए। रग्बी खिलाड़ी सुधांशु कुमार के फर्जीवाड़ा के राजफास के बाद खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी पाव वाला हर खिलाड़ी के प्रतियोगिता में भाग लेव के जांच कैल जाएत और हुनकर सर्टिफिकेट के सेहो जांच कैल जाएत। राज्य सरकार पर्यावरण के अनुकूल वाहन के बढ़ावा देबाक लेल एगो महत्वपूर्ण पहल के शुरुआत केलक है। सरकार बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के स्वीकृत भेला के बाद आब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा वाला नागरिक के सब्सिडी देबाक प्रक्रिया शुरू कर देलक है। परिवहन विभाग के अनुसार विभाग के आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के एगो विशेष लिंक जारी कैल गेल है जेकरा माध्यम सँ पात्र लाभार्थी सब्सिडी के लेल आसानी से अपन आवेदन आवेदित कर सकैत छथि। ई हाल चाल अखन अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
4: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जाले प्रखंड मुख्यालय में जाले के दर्जन गांव के जुड़े वाला महत्वपूर्ण मार्ग एक बेर फिर बाधित भ गया। मुरैठा रेलवे हॉल्ट सौ मरसा जायवाला श्रीनगर S52 जायवाला सड़क पर अधवारा समूह के खीरो नदी के खनुआ घाट के निर्माणाधीन उच्च स्तरीय RCC पुल के लिए बनाओल बिल डाइवर्सन पहले बारिश में बह गया। एक कारण 10 गो गाँव के यातायात प्रभावित है। बड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रेल को अपर पुलिस अधीक्षक महानिदेशक यातायात बिहार सह नोडल पदाधिकारी सुधांशु कुमार के अध्यक्षता में जिला के कानून व्यवस्था और पुलिस कार्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु पर समीक्षात्मक बैसार कैल गई। बैसार में अपर सचिव महानिदेशक पुलिस कार्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु के विस्तार के समीक्षा करते आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा और भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रवि को किसान समृद्धि गुणवत्ता मंथन कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य मखाना के क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ेनाई, जमीनी चुनौती के पहचान कर एगो किसान के आय में वृद्धि के लिए एगो ठोस कार्य योजना तैयार केनाई छ। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर नचिकेत कोत बाली वाले और भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयुक्त निदेशक अमित सिंह के लाइन।

0: जिलाधिकारी कौशल कुमार रवि को निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के स्तर के निरीक्षण कैलन तथा निर्माण कार्य में प्रगति के जायजा सेहो लेलन। निरीक्षण के दौरान ओ संबंधित पदाधिकारी के एजेंसी और अधिकारी से अखन तक प्रगति के जानकारी सेहो प्राप्त कैलन और निर्माण कार्य के निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से काज पूरा करवाक निर्देश सेहो देलन है। दरभंगा जिला के आयोजन क्षेत्र के लिए तैयार कैल जा रहा GIS आधारित मास्टर प्लान के संबंध में समीक्षा और सुझाव के बाद दरभंगा शहर के दायरा बढ़ावा के शुरू कर दिल गेल। सरकार जे खाका तय कलक है ओ में अखन तक शहर के कुल क्षेत्र पर 191.68 वर्ग किलोमीटर छ। शहर से सटल 5 गो प्रखंड दरभंगा केवटी रनवे बहादुरपुर हनुमान नगर हायाघाट कुल राजस्व ग्राम के 186 और दरभंगा नगर निगम के शामिल किया गया है। वर्ष 2019 में दरभंगा जिला आयोजन क्षेत्र के अधिसूचना से हो जारी किया गया छल। हिंदी समाहार मंच दरभंगा के तत्वावधान में रवि को साहित्यकार साधु शरण भगत के एकल काव्य पाठ स्नेह अग्नि शिक्षण संस्थान शिवंकरपुर में किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता अखिलेश कुमार चौधरी कहलन। आगत अतिथि और साहित्यकार के स्वागत अभिनंदन करते अखिलेश चौधरी कहलन कि एहि कार्यक्रम के उद्देश्य अतः के साहित्यकार और विद्यागत साहित्य सृजन केनाइ अछि। जिला में चित्रगुप्त सभा 16 अगस्त को काय समयधावी छात्र छात्रा के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करत। रवि का चित्रगुप्त भवन के अध्यक्षता आर के दत्ता के अध्यक्षता में कैल गए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सत्र 2026-28 उपशास्त्री इंटर प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए पहल मेगा सूची सैनिक समर्थ पोर्टल पर जारी कर दल गया। कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ऑनलाइन सूची लाइव कैलन। एक संगे विश्वविद्यालय के सब अंगीभूत और संबंध महाविद्यालय में नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो गल गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षता में हुनक आवासीय कार्यालय कक्ष में रवि का सिंडिकेट के बैसार हाइब्रिड मोड में संपन्न है, जाहि में विश्वविद्यालय और शिक्षक के हित में कतेक निर्णय लेल गेल। मानवीय आधार पर विश्वविद्यालय के 175 गो नवनियुक्त शिक्षक के रोकल गेल वेतन तत्काल जारी करवा के निर्देश लेल गेल। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राज्य स्तरीय नवाचार प्रदर्शनी में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के ओर से विकसित 3 गो तकनीकी मॉडल के खूब चर्चा कैल गेल। एहि के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: नमस्कार। मिथिला कार्यक्रम में अभी हम सुन रहे थे हालचाल सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि के बारे में, और जैसा कि आप सबको पता है कि हम कार्यक्रम में किसी ना किसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं, आपसे जुड़ते हैं किसी विषय को लेकर के। तो आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं?
4: जना कि पहले हम लोगन यादे सागर और श्रोतो लोगन कहते हैं जो आजुक इतिहास जखन हम लोग जानकारी साझा करे छलूँ हैं तो हम बतेने छलूँ आइए के दिन नीलमार स्ट्रॉन्ग चांद पर जैसे पहुँचल छला है और ओकरा बाद हमारा लोकन चांद पर पहुँचवा के लिए और अंतरिक्ष के माध्यम से कतेक अग्रसर हमारा लोकन भेनु हमर जो इसरो है से कतेक प्रगति केलक है उस पर हमारा लोकन चर्चा करब।
3: जी बिल्कुल। एक समय था जब हम लोग बचपन में सुना करते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा दूर के नहीं रह गए हैं और लोगों ने चंद्रमा पे कदम रख दिया है। कभी कभी उपमाएं दी जाती थी, शेर व शायरी की जाती थी कि चांद जैसा तुम्हारा मुखड़ा, लेकिन चांद को जब नजदीक से देखेंगे तो शायद ही किसी को कहें कि चांद जैसा तुम्हारा मुखड़ा।
4: एक बड़ा सुंदर प्रचलन कहावत है सागर अपना सबके समाज में, दूर के ढोल सबके सुहावन लागे छे। तो यह वाला जैसे प्रतीत भ रहा है, लेकिन हमारा श्रोता लोग बताबे चली जे चंद्रमा पर पहुँचवा के जो उपलब्धि छे वो प्रकृति में अगर सबसे पैघ उपलब्धि ककरो मानल जाए तो एक ओहो बड़ पैघ उपलब्धि छे।
3: बिल्कुल। 1969 का वह समय था जब अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने थे जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे और वैमानिक इंजीनियर भी थे। तो उन्होंने पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पे पांव रखा, चंद्रमा की सतह पे, और तब से लेकर आज तक लगातार वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से चंद्रमा पर शोध जारी रखा है।
4: हाँ, उसमें चंद्रमा पर जो शोध जारी है जो तो

0: के जे अखन पूरे विश्व भर में होर लगबाक अछि ओहिमे जतेक तेजी से अपन भारत आगा सागर कदम बढ़ौलक,
1: बिल्कुल
0: कारण जे जाहि समय में नील आर्म स्ट्रांग चंद्रमा पर पहिल व्यक्ति भेला जे कदम रखने छला है ओहि समय में अगर हम भारत के अगर अपना आप के तकी जे चंद्रमा पर जेबा में हम कतेक सक्सेस भेल छलहुं है, हमर की योगदान अवदान रहल छल, और आइ वर्ष 2026 में ओहि चीज के जे हम विश्लेषण करै छिए तो कतौ ने कतौ विश्लेषण में आइ सामने परिणाम आबि रहल अछि जे भले ही हमर देर सँ शुरुआत भेल हुए चांद पर जेबाक लेल, चांद पर के जे छै से ओहिठमनका ओहिठमन जे चीज उपस्थित छै वस्तु उपस्थित तकरा खोज करबाक लेल, मुदा जतेक तेजी सँ हम ओहिमे अग्रसर भेलहुँ।
1: बिल्कुल, हम लोगों ने देर से शुरुआत भले करी हो लेकिन हमने एक ठोस कदम उठाया, सही तरीके से सही दिशा में हमारा इसरो बढ़ता रहा। चंद्रयान जिसे हम कहते हैं, लगातार चंद्रयान 3 तक हम जा चुके हैं अब, जिसे पहुंचा चुके हैं हम चंद्रमा पे। और सबसे पहली चीज देखिए कि चंद्रयान 1 जब 2008 में वहां पहुंचा था तो इस मिशन ने सबसे पहले पानी के अणुओं की मौजूदगी की खोज करके इसने बदल दी थी दिशा, बिल्कुल शोध की, पूरे विश्व के शोध की दिशा
0: और जागृति उनका बढ़ा दल।
1: बिल्कुल, और चंद्रयान 2019 में जिसमें चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होकर विस्तृत तस्वीर और वैज्ञानिक डाटा हम तक साझा किया गया था, जिससे इसरो को काफी मदद मिली थी चंद्रमा के बारे में जानने में। और चंद्रयान 3 2023 में 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग हुई थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सफलतापूर्वक सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था।
0: यह हम कहलहुं देखो जे देर सँ शुरुआत हमरा इसरो के तरफ सँ जरूर भेलै लेकिन हमर स्थान कतौ आबि गेलै 4 पर, जतय हम कतौ छलहुं तो बहुत पाछा हम गिनतियो में नहीं कतौ छलहुं है नासा के सामने में। लेकिन जतेक कम समय में जतेक उपलब्धि हमर वैज्ञानिक लोकन हमरा एहि क्षेत्र में देलें कतौ ने कतौ भारत के जे छै से छाती चौड़ा भऽ जाइ छै कि बहुत कम समय में अगर आइ कोनो राष्ट्र कहैत हेथिन कि चांद के बारे में हमरा बहुत रास जानकारी अछि ढेर रास जानकारी अछि तो भारत आइ पूरा विश्व के दावा के साथ कहि सकै छथिन जे चांद के पास चंद्रमा पर जतेक जानकारी हमरा पास अछि ओते ककरो पूरे विश्व में नहीं हेतै, केकरो लग में एगो किताब हेतनि दू गो किताब हेतनि, लेकिन आइ के डेट में हमर वैज्ञानिक अपना मेहनत सँ चंद्रमा पर प्राप्त और उसका स्थिति मौजूदगी के बारे में एकटा पुस्तकालय भऽ गेल छथि।
1: बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय शोध भले ही देर से शुरू हुआ हो, हमने एक तो आज़ादी हमारी जो है बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि हम बहुत देर से आज़ाद हुए, फिर हमारा देश जिस तरह के पूंजीवाद में फंसा हुआ था, जिस तरह की गरीबी थी उससे निकलते हुए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय लोगों की मानसिकता बड़ी उच्च रहती है, हम दिमागी तौर पर बड़े प्रबल होते हैं चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ हों। यही कारण रहा कि इसरो ने बड़ी ही तेजी के साथ वैश्विक पटल पर अपनी जगह बनाई और चंद्रमा पे अपने कदम जमा दिए।
0: देखिए कुछ सागर इठमन बात की हो रहा है जे जना कि एक और एक
1: जी,
0: बीच में अगर हम प्लस के चिन्ह दे दे छे तो एक आ एक भ जाय छे 2
1: जी,
0: अगर हम प्लस के चिन्ह हटा दे छे तो एक और एक भ जाय छे 11।
1: बिल्कुल,
0: तो अहां के बात के हम तरह समर्थन कर रहल छी जो एक और एक बीच में से जे प्लस के चिन्ह जोड़ के चिन्ह हट गेले तो 11 भ गेले। हम आजादी कहिया भेलो ई मायने नहीं राखे छी, मायने ही राखे छी जे हम सफलता कहिया प्राप्त केलौं।
1: बिल्कुल,
0: हमरा पास ने वैज्ञानिकता के कहियो अभाव छल, ने कहियो प्रामाणिकता के अभाव छल, ने कहियो सकारात्मक सोच के अभाव छल। अगर हमरा संगे अभाव छल तो ओकर सबसे पैघ चीज छलिए जे हमर मानसिक जे सोच छल
1: जी,
0: ओ मानसिक सोच हमरा विज्ञान के आगा नहीं बढ़ दै छल, जानि बुझि के एहन षड्यंत्र रचल जाय छल, वैज्ञानिक के दबाएल जाय छल, हुनका खर्च करो सँ सरकार के द्वारा रोक लगाएल जाय छलनि, हुनका अर्था अभाव के दे जे छै दिशा देखाएल जाय छलनि है, जकर ज्वलंत उदाहरण हम अहाँ के दै छी कि जखन परमाणु बम बनबक लेल सारा सृष्टि सारा प्रकृति बाप बाप करैत रहै तखन हमर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अत्ते बड़का वैज्ञानिक रहथिन, लेकिन सीवी रमन अत्ते बड़का वैज्ञानिक रहथिन, लेकिन ओहि समय के सरकार कहथिन पहले हम देश को खिलाएगा तब हम वैज्ञानिक सफल परीक्षण कराएगा, कथी लेल अहाँ के देश के कहीं कथु का अभाव नहीं छल। हम ओहिठम हमरा बाजम कोनो अथी नहीं है, हम जे हकीकत छै ओहि चीज से लोग रूब रखें। आई के सरकार वर्तमान सरकार की केलकै तो विज्ञान के लेल वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध करबा के लेल हुनका बजट खोल कर देलकै, हुनका पर विश्वास जतेलकै जहाँ अहाँ कह सकै छी करू, यह विश्वास आई भारत के चंद्रमा पर जाकर स्थिर केने अछि।
1: देखिए रंजीत जी, आपकी बातों का पूर्ण समर्थन, लेकिन किसी भी शोध कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले आवश्यकता है कि व्यक्ति जिंदा रहे, और वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हम कई दशक पार कर चुके हैं अब, और कई क्रांतियों के बाद आज हम इस स्तर पर खड़े हैं कि अब हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें जूझना नहीं पड़ रहा है, और अब हम वैज्ञानिक

0: दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिस रफ्तार में अमेरिका का आर्टेमिस और चीन का चांग ई जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, हम चाहेंगे कि इसरो का चंद्रयान उससे तीन गुनी रफ्तार से आगे बढ़े। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा, मौसम के मिजाज का एक गाना सुनते हैं। बादलों ने दस्तक दे दी है आसमान में।
1: हाँ, हम लोगों को मौसम संबंधी जानकारी श्रोता लोगों से
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: संबंधी जानकारी साझा करवाए। मुदा ताहिसे पहले सबसे पहले फिल्म संगीत सुनी छोड़ा, फिर हम लोगों श्रोता लोगों से रूबरू हैं तो सुनी छी सुंदरतम फिल्म संगीत।

0: अखन हमारा फिल्म संगीत सुनने से श्रोता लोकन और सागर अब हमारा श्रोता लोकन से किछ जानकारी साझा करबाक समय भ गेल अछि। तो सबसे पहले हमारा मौसम संबंधी जानकारी करे छी।
1: बिल्कुल, छाई बरखा बहार, आज मौसम विभाग यही कह रहा है कि बरखा छाए रहने की संभावना है लगातार। मिथिला के सभी क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश की गुंजाइश हर जगह बनी हुई है। दिन में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नमी लगभग 90% बनी रहेगी, जिसके कारण उमस और भारी महसूस होगा। कई जगहों पर गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। आज दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। एयर क्वालिटी 55 के आसपास देखी जा रही है, जिसे बेहतर कहा जा सकता है।
0: और जो श्रोता लोग बात करी यातायात संबंधी जानकारी के बारे में, तो बताबे चली कि जो हम सड़क मार्ग के बात करी तो जिला प्रशासन के तरफ से जो वन वे नियम लागू है तेमें कतौ कोनो फेरबदल अखन तक नहीं कैल गेल है। जो कोनो वीवीआईबी मूवमेंट के कारण फेरबदल कैल जाए तो ओकर जानकारी अपने लोगन के आकाशवाणी दरभंगा परिवार के द्वारा जरूर देल जाए। जो हमारा बात करी ट्रेन सफर के, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जाहि गाड़ी के आगमन के समय निर्धारित है और जाहि गाड़ी के प्रस्थान करबाक समय निर्धारित है वो अपना समय से आगमन और प्रस्थान करत, ताहि में रेलवे बोर्ड के द्वारा कोनो परिवर्तन नहीं कैल गेल है। मौसम अगर ठीक रहल तो समय सारणी ठीक रहत, मौसम गड़बड़ भेल तो ओकर असर समय सारणी पर पड़बाक असर नजर आबि रहल है। जो बात करी हवाई सफर के बारे में, तो हवाई अड्डा अथॉरिटी के समय से जाहि विमान के परिचालन के समय निर्धारित कैल गेल है ताहि में हवाई अड्डा अथॉरिटी के तरफ से कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। लेकिन जाहि हिसाब से बादल लागि रहल है, मौसम जना हमारा लोग स्टूडियो आवा काल में बादल देखने छलूँ है रास्ता में, ओहि हिसाब के जो सिचुएशन स्थिति बनल रहल तो भ सकैया जे विमान के उड़ो में और नीचे आवे में थोड़े समय के हेराफेरी भ सकैया। तो श्रोता लोकन अपने लोकन से आकाशवाणी दरभंगा परिवारी अपील करैत अछि जो आज तीनों माध्यम से अपने लोकन कतौ सफर करबाक योजना हुए तो ओहि तीनू जे योजना तीनू जे साधन छै सफर करबा के अपना दरभंगा सँ ओहिठमन का जे इंक्वायरी नंबर देल गेल छै ओहि इंक्वायरी नंबर पर अपने लोकन एक बार क्वेरी कऽ ली, ओकरा बाद जे छै से सफर के शुरुआत करी।
1: बिल्कुल, खासकर वायु सेवा से जो लोग आज प्रस्थान करने वाले हैं उनके लिए तो ये जानकारी बिल्कुल है कि आप बिल्कुल कॉल कर लें, क्योंकि मौसम जिस तरह का है उसमें वायु सेवा बाधित होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और बातचीत अपने एक दूसरे विषय की ओर बढ़ें। चंद्रमा का सफर तो हम लोगों ने तय कर लिया है, अब हमारे पास और भी बातचीत के लिए विषय हैं।
0: हाँ देखो, चंद्रमा तक तो हम लोग अपन पहुँच जरूर बना लेलूँ हैं सागर, लेकिन हम श्रोता लोकन से सेहो कहबन और सब गोटे से बात कहबन जे सफलता के शिखर पर बैस कर पलथी मारि गेनाई सबसँ नीक बात छै, लेकिन सफलता के आरमे दोसर तरफ दोसर तरह कार्य के बढ़ावा देनाइ ई बहुत गलत काज छै। जेना कि हम अपने लोगन के बताबी कि आइ हम चंद्रमा पर पहुँच गेलहुँ हैं, बड़ी उल्लासिता के बात छै, बड़ा खुशी के बात अछि, लेकिन हम एक तरफ चंद्रमा पर बहन गेलहुँ हैं तो दोसर तरफ कतौ न कतौ ग्राफ में हमरा सबके चरित्रिक ग्राफ में सेहो गिरावट आयल, ओकरो सुधारबाक जरूरी अछि।
1: बिल्कुल।

0: ये तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है और सबसे ऊपर हमें मस्तिष्क दिया गया है और यही हमें दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग बनाता है। और यह मस्तिष्क अगर हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित कर रहा है तो फिर हम पशुवत होते चले जाते हैं। तो मनुष्य का काम है कि सबसे पहले अपनी नैतिकता, अपने चरित्र और अपने व्यवहार को संतुलित रखे, समाज के उपयोग के लिए रखे।
1: हाँ, कहा कहते हमारे वह छे और हम जोड़ी छे इतर हैं जे अब हमारोन के जैविक खेती के बढ़ावा देवा के तरफ कृषि विज्ञान से लौक केंद्र सरकार राज्य सरकार तक सब गोटे ढोल पीट

0: कहबाक तात्पर्य हमर वएह छलै आओर ओकरा हम जोड़ै छी एहि तरहें जे आब हमरा लोकनिके जैविक खेतीके बढ़ावा देबाके तरफ कृषि विज्ञानसँ लऽ कऽ केन्द्र सरकार आ राज्य सरकार तक सब गोटे ढोल पीटने जा रहल छै जे हमरा लोकनिके जैविक खेतीके तरफ वापस भऽ जाइक चाही।
1: बिल्कुल,
0: आखिर ई स्थिति उत्पन्न किएक भेलै जे हमरा लोकनिके जैविक खेतीके तरफ वापस आबऽके समय जे छै से समयके माँग भऽ गेल या हमर मजबूरी भऽ गेल या हमर सामाजिक चित्रणे एहन बनि रहलै जे हमरा जैविक खेती के तरफ फिर एक बार वापस जाए पड़ रहा है।
1: आप रंजीत जी, एक चीज हम गौर करते हैं कि आपने सुना होगा कि शेर अगर पेट भर जाए तो वह शिकार नहीं करता, किसी जानवर को नहीं मारता है।
0: जी, जी।
1: लेकिन मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता। मनुष्य का पेट भरा हुआ भी रहे तो भी अगर आप उसके सामने कुछ दें तो अगले के लिए संचय करने लगता है। यही लालच हमें पृथ्वी का दोहन करने पर विवश करती रही। धरती हमें दे रही थी, हम खा रहे थे, पी रहे थे, खेती अच्छा चल रहा था, लेकिन दूना दूने से चार गुने से पांच गुना की जो ये चाहत हमारी थी, हमने रासायनिक खादों का इतना प्रयोग किया, हमने वैज्ञानिक संसाधनों का इतना दुरुपयोग किया कि हम जिसे धरती माँ कहते हैं उसकी चीख हमने सुनी ही नहीं कभी। और आज जब वह बदला लेने पर आई है, एक दिन माँ की कोख माँ का दूध जो है वो सूख गया जब, तो बच्चा अब बिलखने लगा है, अब कह रहा है कि नहीं नहीं हमें दूध पीना है, इसलिए जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, देर से ही सही, मनुष्य चेता है, सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है कि हम जैविक खेती की ओर बढ़ें और यह अनिवार्यता है आज की तारीख में।
0: देखियो, जो हमारा सरकार की बात करी तो केंद्र सरकार से लोगों को बिहार सरकार तक जैविक खेती के सबदिना प्रोत्साहन और बढ़ावा देवा का नीति अपना नीति में शामिल कयने छल। हम आम जनता ओहि नीति के नहीं जे छै से अनवेंशन कऽ सकलिए, नहीं ओकरा हम ग्रहण कऽ सकलिए और हम कतौ ने कतौ निर्भर भऽ गेलहुँ। जे हम सिर्फ कतौ ने कतौ भारत कृषि प्रधान देश छलै, कृषि पर निर्भर रहै छलहुँ हैं, ओहि कृषि कार्य के लेल हम निर्भर भऽ गेलहुँ आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक खाद पानि पर, जे हमरा जीवन शैली के बहुत तरह से प्रभावित करैत अछि। तकर परिणाम भेल जे पहले तो शुरुआती दौर में सबके नीक लगलन जे हमरा खेत में बेसी पैदावार भऽ रहल रहै। अगर हम ग्रामीण परिवेश के बात करी सागर, तो हमरा लोकन देखै छलियै जे पहले जे अपना सबके खेती होइ छलै है, हमरा लोकन के बचपन काल के याद है, अल्हुआ उपजै छलै।
1: बिल्कुल,
0: अल्हुआ, कौन, श्यामा, मरुआ, ई सब जे मोटा अनाज उपजै छलैया, तो किसान के ओतेक मेहनतो नहि होइ छलनि हैं और बेसी खाद्य के जे छै से ओकरा लेल उपयोग नहि करऽ पड़ै छलै। खेती के ट्रेंड बदल गेलै, लोक खेती ओकरा बाद की करऽ लगलखिन, तऽ आब तो छोड़ि दियौ मरुआ ई सब खेती, आब लगभग अपना मिथिला क्षेत्र में तो किसान लगभग नहिए टाक करै छै।
1: बहुत सारे फसल ऐसे हैं जो हमारे खेतों से गायब हो चुके हैं। बिल्कुल,
0: लेकिन जखन लोक बुझलखिन जे चूंकि ग्रामीण क्षेत्र छै ओहिठाम तऽ लोक खेती बुझै छलै बाबू, ओ जैविक खेती या ई खेती नहि बुझै छलै, ओ सिर्फ खेत बुझै छलखिन हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोक जतेक ओहि खेत के सेवा करै छलखिन हैं, अपना बेटा बेटी जकाँ ओहि खेत के सेवा करै छलखिन हैं, बड़का बड़का छिट्टा में हेतेटा छिट्टा जे दू आदमी से उठा कऽ माथ पर धोरै छलखिन हैं, ओहि छिट्टा में भरि भरि कऽ गोबर पटाओल जाइ छलै खेत में।
1: बिल्कुल,
0: आइ ओ चीज खत्म भऽ गेलै। आब दरवाजा पर किनको बरद नहि छनि, गोबर कहाँ सँ औतनि, गाय नहि छनि, बरद कहाँ सँ औतनि, महीस नहि छनि, बरद कहाँ सँ औतनि, और ओ खेतमे ओ गोबर जेतै नहि। दोसर बात जे प्राकृतिक खेती कहल जाइ छलै पहिले, बरद और हरवाह होइ छलै जे हर सँ खेत जोतै छलै।
1: बिल्कुल, हमने भी देखा है, उस पर बैठे भी हैं कई बार, वो जो पाल लगाते थे पीछे, उस पर बैठना बैठकर झूले की तरह हम लोग चला करते थे और आगे आगे बैल चल रहा होता था, ये एक मजेदार दृश्य था। अब कुछ तथ्यपरक बात कर लेते हैं, क्यों जैविक खेती अनिवार्य है। देखिए, पहले आप सुनते होंगे कि टमाटर हर सीजन में नहीं मिलता था, गोभी हर सीजन में नहीं मिलता था, लेकिन आज आप देखिए बाजार में सब कुछ उपलब्ध है। वो कैसे उपलब्ध है? निश्चित तौर पर हम जबरन उगा रहे हैं उसे, हम इंजेक्शन दे करके उगा रहे हैं उसे। और यह जो इंजेक्शन वाली चीज़ है, जो रासायनिक खाद से बनकर के आ रही सब्जी फसलें हैं, आप सुनते होंगे कई बार रेडियो टेलीविज़न पे हम लोग भी कहते रहते कि बहुत अच्छे से धोएं, गर्म पानी से धोएं तब खाएं, यह स्थितियां पहले नहीं थी, लेकिन आज अब यह स्थिति बन गई है। तो इन रासायनिक चीज़ों को हम डायरेक्ट अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं और रसायन जब हमारे अंदर जाने लगता है तो हम खुद विषाक्त हो रहे हैं।
0: जिह्वा बड़ी खराब चीज छे, जतबे चीज नीक छे जे घुमा फिरा कऽ हम कहै छियै इएह मुँह पान खुआबै छै, इएह मुँह डॉट डॉट डॉट, तऽ जी के एकटा बड़ा प्राकृतिक गुण छै जे ओकरा जे चीज नीक लगै छै ओ बेसी ग्रहण करऽ चाहै छै।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जे चीज कटु लागै छै तकरा ओ कम ग्रहण करऽ चाहै छै, तऽ लोक के स्वाद लगन बड़ा सुन्दर, लोक खेनाइ शुरू केलखिन, ओ बिसरि गेलखिन जाहिमे इंजेक्ट कयल फल छै इंजेक्ट कयल। लेकिन अपना ओहिठाम एकटा परम्परा सागर इहो रहलै है जे हमरा लोकनि जाहि सीजन के फल और सब्जी उगै छलै ओही सीजन में हमरा लोकनि ग्रहण

0: करै छलहुँ जी। ओहोमे पहिले हम देवी देवता के अर्पण करै छलियै, हमरा लोकनि ग्रामीण परिवेश मे एहनो देखने छियै।
1: प्रकृति ने हमें उस मौसम के हिसाब से चीज दी है, क्योंकि वो उस मौसम के लिए सुपाच्य है, उस मौसम के लिए बेहतर है।
0: अच्छा, गाँव घर में इहो कहल जाइ छलै जे हे अखन भोटा खेबा के समय नहीं छै,
1: बिल्कुल मना किया जाता था,
0: तो पहले लोग एकरा मानै छलखिन। लेकिन जहन भौतिकतावादी युग बढ़ि गेलै, कतौ ने कतौ संस्कार, धर्म, आस्था, श्रद्धा एहिमे कमी अयलै, तऽ लोक ओकरा मजाक बनबऽ लगलै जे ई बेसी बुझै छथिन जे महिनामे हम भोटा नहि खायब, एहि महिनामे हम सजमनि नहि खायब, आइ फेर घुमि कऽ अहाँ ओतै एलहुँ हँ।
1: बिल्कुल, हमें आना भी पड़ेगा, क्योंकि भारत सदैव से ग्रामीण क्षेत्र का देश रहा है, प्रकृतिवादी लोग रहे हैं, हम प्रकृति की पूजा करते रहे। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आस्था का पर्व है छठ, जिसमें हम और चंद्रमा को और सूर्य को अर्घ देने की परंपरा क्या है, वह प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा ही तो है। तो जिस देश में प्रकृति के प्रति इतनी श्रद्धा हो, निश्चित तौर पर धरती की, नदियों की, पेड़ों की, पहाड़ों की हमें रक्षा करनी होगी, सेवा करनी होगी, और अपने खेतों की रक्षा करने के लिए निश्चित तौर पर हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा।
0: देखियो, खेत तो रहबे करते
1: जी,
0: खेत में अहाँ जे चीज डालबे, पृथ्वी के माटि के गुण छै जे अहाँके जकरे बीज देबे सह चीज अहाँके उगत, मुदा हम नहि रहब, खेत हमर वंशावली चलते, हमरा बाद हमर पिता बेटा ओकरा उगेतै, हमर पोता उगेतै, परपोता उगेतै, हम नहि रहब। लेकिन हमर आबो वाला पीढ़ी के लेल एकटा नीक प्लेटफॉर्म हम कोना बना कर देबै, एकटा नीक पर्यावरण हम कोना बना कर देबै। आइ देखियौ, पहिले लोक कहै छलखिन जे मिथिला जतऽ खाली पानिये पानि छलै, बाढ़ि मे डूबल रहै छलै 12 महीना में 9 महीना, अखनो मिथिला के किछु ग्राम जे छै से 9 महीना पानिये मे रहै छै, लेकिन ओहि मिथिला मे 20 रुपए लीटर पानि बिका रहल छै। कतौ सँ स्थिति उत्पन्न भेलै? और सागर कार्यक्रम के घड़ी के सुई सेहो हमारा लोकनि के इशारा किछु कर रहल।
1: हम निकले से पहले हम लोगों को फिर से एक बार अपील करते चले कि हम जिस जैविक खेती की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने खेतों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ खेती की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे जुड़कर बात कर रहे हैं धरा, प्रकृति, आकाश, जमीन,
0: पूरे
1: प्रकृति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपने पारंपरिक और पौराणिक दृष्टिकोण को फिर से अपनाएं।
0: तखने टा हमहू सुरक्षित रहब, ई पर्यावरण सुरक्षित रहते और हमर आबो वाला भविष्य सेहो सुरक्षित रहते। तो अही सब जग संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सँ हमारा श्रोता लोकनि कहबनि, एकटा और अपील करबनि आकाशवाणी दरभंगा के तरफ सँ हम, जे अखन ई बारिश के मौसम आबि गेल अछि, मानसून सेहो दस्तक दऽ देने अछि, भले ही एक दू दिन लेट सेट सही पानि हेबे करते, तऽ अइ पानि जे हेतै तऽ एहि बेर सब गोटे संकल्प लै छी जे एकटा कऽ गाछ वृक्ष एहि प्रकृति के रक्षा के लेल, आबऽ वाला भविष्य के लेल हमरा लोकनि एकटा कऽ गाछ वृक्ष जरूर लगायब।
1: बिल्कुल, और दूसरी अपील यह कि बरखा के पानी को अगर आप संचित कर पाएं, अपने तालाबों तक पहुंचा पाएं और जल संचय के लिए अलग अलग उपाय अपना पाएं, तो जरूर से जरूर कीजिए आने वाले भविष्य के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए।
0: हाँ देखो, मान लीजिए गाछ वृक्ष हम आइ काटि लेब, काल्हि उगा लेब, लेकिन पानि एकटा एहन प्राकृतिक संसाधन छै जे अहाँ बना नहि सकब, ताहि लऽ कऽ ओकरा बचेनाइ अति आवश्यक छी। ठीक, एहि सब संग आजुक नमस्कार मिथिला के अंक सँ हमरा लोकनि लै छी विदा। नमस्कार
1: मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर। घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी।

0: एकही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गई दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: गिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। ओर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक

0: 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से ये अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में UCC विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: UCC विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है।

0: श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है।

0: इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Monsoon session of parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
4: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened a lone party.

0: ODI and sealed the three-match series 2-1 at Lord's in London last night. Despite Rohit Sharma's magnificent score of 138 runs, Shubman Gill's 77 and Virat Kohli's 74, India only managed 360 for 7 in pursuit of a mammoth target of 388, built on the back of a career-best 142 from Ben Duckett and 91 from Jacob Bethel. Opting to bat first, England scored 387 runs for the loss of 3 wickets in the allotted 50 overs. Chasing the target, visitors could score 360 runs for 7 in 50 overs. Jacob Bethel was declared player of the match and Joe Root was adjudged player of the series. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakel.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age informs Shah to introduce Rajya Sabha Vande Mataram Protection Bill today. Armenia and Saudi Arabia, among six nations eyeing India's battle-tested Astra missiles, headlines the Hindu Business Line. In its editorial piece titled Two Pillars of Space Success, Hindustan Times writes, robust talent pipeline will ensure India's continued public sector success and spur private sector momentum in the space sector. From punching above its 8 weight with a low-cost Mars orbiter mission to establishing itself firmly in the club of elite space-faring nations with its superstardom, India has enough claims to space superstardom. Also, India became the third country in the world after the US and China to have private sector capacity in orbital launch, a critical threshold demonstrating technological sophistication. Hindustan Times headlines Sindhu ends two-year title drought in style, adding the 31-year-old become first Indian to win Japan Open, combining relentless attack and tactical discipline and composure. And finally, coming soon in Gujarat, a life-size Harappan town with markets, dockyards. Very soon, visitors to Lothal, one of the most prominent outposts of the Indus Valley civilization, will be able to get a feel of walking through the Harappan streets and civic spaces, informs the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Monsoon session of Parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of Parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। हुकूमत ने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो पार्लियामेंट के कामकाज को खुशसलूबी से जारी रखने के लिए तआवुन करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाऊ में मोल्दोवा की अपनी हमनसब माई सांधू से वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश काबीना कमेटी ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है। कबायली बिरादरियों को इस कानून के दायरेकार से बाहर रखा गया है। जम्मू और कश्मीर के रजौरी और पुंछ जिलों में ताजा सैलाब और जमीनी तोड़े खिसकने से 11 अफराद हलाक हो गए, 8 अफराद अब भी लापता हैं। अमेरिका ने ईरान पर फजाई हमले किए हैं। हमलों की ये नवी रात है जिसकी वजह से आबनाए हुरमुस से मुतालिक कशीदगी में मजीद शिद्दत आ गई है। और स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को इजाफी वक्त में 1-0 से हराकर 2026 का फीफा आलमी कप जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। 25 दिन के इस इजलास में 19 नशिस्तें होंगी। तफसील हमारे नामानिकार से।
3: उम्मीद है कि इजलास के दौरान बहुत से अहम बिल बहस और मुबाहिसे और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। उधर राज्यसभा में कौमी एहतराम को नजरअंदाज करने की रोकथाम से मुताबिक तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इन बिलों के अलावा

0: और सरकारी इमलाक, सड़क और बुनियादी ढांचों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। दोनों जिलों में सैकड़ों गाड़ियां या तो सैलाब में बह गईं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। पूरे जिले में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जबकि राजौरी जिले के तकरीबन निसफ इलाके में बिजली मुनक़ हो गई है। जम्मू कश्मीर से गुलशन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: जुनूब मगरबी मानसून हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की इंतबाह जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 82.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में महकमे मौसमियात के मरकज ने बताया कि चंपा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट और बिलासपुर, कुन्नूर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल की वजह से अचानक सैलाब और बादल फटने के अलावा मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसी दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट के पेश नजर कांगड़ा, चंपा और सिरमौर जिले की इंतजामिया ने आज सभी तालीमी इदारे बंद रहने का हुक्म दिया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: उत्तराखंड में कल सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं और इंतजामिया अलर्ट के पेश नजर हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तफसील हमारी नामा निगार से।
3: भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, होड़ी और उधमपुर नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के रेड अलर्ट के पेश नजर पहली से बारहवीं जमात के स्कूलों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सभी महकमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला ने आवाम और यात्रियों से अपील की है कि वो महकमे मौसमियात और इंतजामिया की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मुतदिल से शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मामूलत जिंदगी मुतासिर हुए हैं। तफसील हमारे नफानिकार से।
0: मुजफ्फरनगर जिले में शदीद बारिश के सबब एक पुरानी इमारत के मुनदिम होने से चार बच्चों समेत पांच अफराद हलाक हो गए, जबकि पांच दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस दौरान संत कबीर जिले में एक प्राचीन मंदिर भी मुनदिम हो गया है, लेकिन किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं है। शदीद बारिश ने रियासत के कई जिलों, जिनमें राजधानी लखनऊ शामिल है, मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। मुतादिद इलाकों में सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक के आमोदरफ्त में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि उसने ईरान पर ताजा फौजी हमले किए हैं और ये हमलों की लगातार नवी रात है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान के खिलाफ ये ताज़ा हमले कल रात किए गए, जो ईरान की फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करने के मकसद से जारी रहेंगे, जिन्हें ईरान आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जिनमें अमरीकी फौजों ने ईरान के बहुत से फौजी असासों को निशाना बनाया है, जिनमें साहिली निगरानी और फजाई दिफाई ठिकाने, समंदरी तनसीबात और मिजाइल और ड्रोन के जखीरों की जगह भी शामिल हैं। अमरीकी फौज ने इस्लामी पासदारान इनकलाब की फौजों को भी निशाना बनाया है, जिन्होंने उर्दुन में 17 जुलाई को अमरीकी फौजियों पर हमले किए थे। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने अदम इस्तेकाम और तनाजे की हालिया शिद्दत के पेश नजर भारतीय शहरियों के लिए एक ताज़ा हिदायत जारी की है। उसने किसी भी मकसद से ईरान का सफर करने वाले भारतीय शहरियों के लिए हिदायत जारी की है कि वो अपना सफर मुलतवी कर दें, जब तक के सलामती की सूरत हाल में बेहतरी ना आ जाए। हिदायत में कहा गया है कि जो भारतीय शहरी ईरान में मौजूद हैं, वो आरजी तौर पर ईरान से निकलने पर गौर खोज करें और इसके लिए वो जो भी परवाजें दस्तियाब हैं उनका इस्तेमाल करें। सफारतखाने ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय शहरियों को ये हिदायत भी दी है कि वो अपनी ज़ाती मालूमात सफारतखाने में जल्द अज जल्द दर्ज कराएं। उसने ये बात भी जोर देकर कही है कि सफारतखाने की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रखें, ताकि वो ताज़ा जानकारी और मजीद हिदायत से बाखबर रहें। किसी भी तरह की

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी आज से 5 दिवसीय सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज पाटलिपुत्र स्टेशन से 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होंगे। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, समस्तीपुर और वैशाली समेत 14 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि मॉनसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य सदन के समक्ष रखेगी।
2: सत्र के पहले दिन आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 21 और 22 जुलाई को प्रश्नोत्तर काल के बाद विभिन्न राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे। 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और सरकार का जवाब होगा, जिसके बाद बजट पारित कराया जाएगा। 24 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। मानसून सत्र में सरकार सदन में 13 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करेगी। इनमें बिहार नगर विकास विधेयक, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक तथा चिकित्सा एवं नर्सेस पंजीकरण से जुड़े संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच विपक्ष ने भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर, महंगाई, राज्य की वित्तीय स्थिति और किसानों को यूरिया की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार बैठक आज शाम 5 बजे या विधानमंडल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में मॉनसून सत्र से जुड़े विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 369 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा। श्री रोशन ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत राज्य के 369 प्रखंडों में छात्रावास बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार जीविका दीदियों को अधिक कार्य कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

0: श्री कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जीविका दीदियों की आय बढ़ाने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। राज्य सरकार के सहयोग से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अद्भुत आस्था के अवसर पर आज पाटलिपुत्र स्टेशन से स्पेशल ट्रेन द्वारा 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने यात्रा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।
1: यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टर तथा महिला और पुरुष पैरामेडिकल कर्मियों की मेडिकल टीम भी साथ भेजी जाएगी। वहीं ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुजरात सरकार की ओर से सोमनाथ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, स्थानीय परिवहन तथा स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज अंतिम दिन है। बिहार राज्य हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राशिद हुसैन ने बताया कि यात्री बिहार राज्य हज समिति की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हज भवन में कई काउंटर बनाए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में देर शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सिवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। सिवान, सारण, नालंदा और बक्सर जिले में 2-2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में खरीफ मौसम के दौरान अब तक धान की लगभग 40% रोपनी पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में 37,90,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य है, जिसमें अब तक 14,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रोपनी हो चुकी है। हालांकि बारिश की कमी के चलते भोजपुर, गया, नवादा और जमुई जिलों में अब तक केवल 1% रोपनी हुई है। वहीं मक्का की बुआई में अच्छी प्रगति हुई है। 2,71,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 80% क्षेत्र में मक्का की बुआई पूरी हो चुकी है। इस बीच कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खरीफ फसलों की रोपनी और बुआई की प्रगति की समीक्षा करते हुए किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आज से शुरू हो रहा है। आयोग ने साक्षात्कार के लिए विषयवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। सामान्य वर्ग में हिंदी विषय का कट ऑफ सबसे अधिक 69.9% रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। वहीं क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज इंग्लैंड ने जीत ली है। एक रिपोर्ट।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब

0: जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: मुंगेर में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप के फाइनल में मेजबान मुंगेर और पश्चिम चंपारण ने जगह बना ली है। सेमीफाइनल में मुंगेर ने टाई ब्रेकर में पटना को 4-2 से जबकि पश्चिम चंपारण ने किशनगंज को 5-4 से हराया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। पटना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर एक ही मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट सवार 4 होमगार्ड जवानों के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने संबंधित वाहन का 2,000 रूपये का चालान किया है तथा ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल पर सवार चारों होमगार्ड जवानों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। एसटीएफ की टीम ने भूमाफिया और कुख्यात अपराधी संजय कुमार को पटना से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस और नगद राशि बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत 31 मामले दर्ज हैं। पूर्वी चंपारण पुलिस ने एक मिनी कारतूस फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने चकिया, मधुबन, गरहिया और फेनहारा थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 500 से अधिक निर्मित और अर्धनिर्मित कारतूस, हथियार बनाने की मशीनें, रसायन और अन्य सामग्री बरामद की है। इस मामले में फैक्ट्री संचालक सहित 4 आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है। विधान परिषद के सदस्य और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने आरा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र से पुलिस ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र समेत कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 263 ग्राम ब्राउन शुगर और 12 किलो से अधिक अर्धनिर्मित ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने राज्य भर के 551 आदर्श विद्यालयों का एक साथ उद्घाटन किया। बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार की पहली रिवर लिंक परियोजना का हुआ शुभारंभ। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से। दैनिक जागरण लिखता है, वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 साल की जेल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, भागलपुर में 66 वर्षीय वृद्ध कोरोना पॉजिटिव मिला। आज अखबार लिखता है, सोनम वांगचुक आज खत्म कर सकते हैं अनशन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र भी आज से 5 दिवसीय सत्र के दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज पाटलिपुत्र स्टेशन से 1100 श्रद्धालु निःशुल्क सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना होंगे। और मौसम विभाग ने आज कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद

0: बाद पटना, समस्तीपुर और वैशाली समेत 14 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है, लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
3: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
1: मतलब जानकारी भी, मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल। 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
3: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
4: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
5: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
6: बिहार सरकार की गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
7: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
6: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
8: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
8: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर,
11: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं।
12: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
1: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ। 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से।

सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल हमालू।

0: एक बार फिर हम हाजिर हैं अंजुमन लेकर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ये नन्हे नन्हे से परिंदे पेड़ों को उगाने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं? जी हाँ, ये परिंदे दरख्तों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, जिससे नए पेड़ पौधे उगते हैं और जंगलात की तहफ्फुज होती है। बहुत सारे ऐसे जानवर और परिंदे हैं जो नुकसानदेह कीड़े मकौड़े को खाकर हमारी फसलों की हिफाजत और माहौल को साफ रखने में मदद करते हैं। सामीन, वक्त का इशारा हुआ जाता है कि आज की खास पेशकश की जानिब रुख किया जाए, तो आइए चलते हैं। शायरों की महफिल सजने वाली है, कासिम खुर्शीद की निजामत में शोरा है कपिल अनवर और सदफ इकबाल।
1: सामीन, जैसा कि आप वाकिफ हैं कि उर्दू प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश और काविश दोनों रहती है कि हम आपको मुख्तलिफ तख्लीकारों से मिलवाएं, उनकी तख्लीकात आप सुनें और कई बार उनके रूबरू भी आप हों। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम जारी और सारी रहता है हमेशा, और वो है महफिल सुखन। महफिल सुखन इस एतबार से बेहद अहम प्रोग्राम तस्वूर किया जाता है कि इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शुराय कराम और शायरात की मौजूदगी होती है और हम उन्हें सुनते हैं और महसूस होते हैं। जाहिर है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास गो वक्त कम होता है, लेकिन हम उनके मंतखब कलाम आप तक पेश कर सकें। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जिस महफिल को हमने आरास्ता करने की कोशिश की है और उसमें जो शोराए कराम और एक बहुत ही मोहतरम शायरा मौजूद हैं, उनमें जनाब कफ़ील अनवर साहब हैं। कफ़ील अनवर साहब कतई तौर पर मोहताज तारुफ़ नहीं है, आपके कई शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और जहाँ तक इनके शेरी इतराफ़ात का मामला है तो उस तमाम पूरा एक ज़माना मोतरीफ़ है इनसे, रसाइल के ज़रिए और दूसरे ज़राए से, ज़राए अबलाग में आपकी शायरी सुनी जाती है, जानी जाती है, पहचानी जाती है। हम अपने स्टूडियो में जनाब कफ़ील अनवर साहब आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। और सामीन, ऐसी एक शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं जो समाजी रहनुमा तो हैं ही, हम कहेंगे उनको, और समाजी कारकुन हैं, समाजी खिदमात में भी लगी हुई हैं बहुत गहराई के साथ। और जाहिर है इनका जो बुनियादी वस्फ रहा है वो शायरी रही है, और एक शायरा के तौर पर न सिर्फ ये कि बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हैं, और इनका अपना एक अलग तर्ज तखातुब है, बल्कि जो शेरी तर्ज तखातुब है इसकी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा शायरा हैं, और इनका कलाम, इनका अंदाज, इनका तर्ज तखातुब सभी हमें बहुत मुतासिर करता है। मेरी मुराद है मोहतरमा सदफ इकबाल।

0: सुखन पर फिसल गया।
1: क्या बात, क्या बात,
0: सच
1: क्या?
0: है कि वो
1: जमीने सुखन पर फिसल गया।
0: सुखन पर फिसल गया,
1: क्या कहने, क्या?
0: ये शेर देखेंगे
1: इरशाद।

0: बहुत
1: क्या
0: क्या बात है,
1: रज फिरा के यार का निकलते ही ढल गया।
2: क्या बात, क्या बात।
1: ये शेर देखेंगे, उरियानिया ख्याल की हर सू थी खेमा जन,
2: वाह वाह वाह वाह,
1: उरियान

0: बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपका। दो शेर लिखे के उनकी तय की हुई रफ्तार से बिल्कुल हूँ अलग।
1: क्या कहते
0: हैं? उनकी तय की हुई रफ्तार से बिल्कुल हूँ अलग, उनके सोचे हुए मेयार से बिल्कुल हूँ अलग।
1: क्या कहते हैं?
0: और खूब वाकिफ हूँ हर एक चीज की कीमत से सदफ। खूब वाकिफ हूँ हर एक चीज की कीमत से सदफ, ज़र्फ मेरा है कि बाजार से बिल्कुल हूँ अलग।
1: क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? क्या कहने
0: हैं? एक नज़्म इजाज़त है उसके बाद कुछ अशार सुनाऊंगी। सुनो ऐ मेरी जान।
1: क्या बात?
0: सुनो ऐ मेरी जान, ये जो बची हुई जिंदगी की चंद शामें हैं।
1: क्या क्या?
0: सुनो ऐ मेरी जान, ये जो बची हुई जिंदगी की चंद शामें हैं, आओ मिलकर इसे रोशन करें।
1: क्या क्या?
0: आओ मिलकर इसे रोशन करें, गुजारे कहकहों के साथ, एक दूसरे का हाथ थामे उफक के पार जा पहुँचे।
1: क्या क्या? क्या
0: एक दूसरे का हाथ थामे उफक के पार जा पहुँचे, सजा लें कहकशां को अपने दामन में, चांद को माथे का टीका बनाए और भर के बाहों में तुमको, भर के बाहों में तुमको सारी रात आंखों में काटे।
1: क्या कहने? क्या कहने?
0: सारी रात आंखों में काटे, कुछ अनकहे लफ्ज तुम्हारी समात में उंडेले।
1: वाह।
0: ऐ मेरी जान, ऐ मेरी जान, अभी भी वक्त है बाकी।
1: क्या कहने? ऐ
0: मेरी जान, अभी भी वक्त है बाकी, अभी लम्हे मुंतजिर हैं हमारे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है।
1: क्या कहने?
0: अभी लम्हे मुंतजिर हैं हमारे, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐन मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, रेत की मानिंद ये समय भी हमारे हाथों से फिसल जाए, वक्त के गर्द में हम भी कहीं गुम हो जाएं।
1: क्या कहने?
0: ये जो मल गजासा अंधेरा है,
1: क्या बात?
0: ये जो मल गजासा अंधेरा है, शब में बदल जाए, ऐ मेरी जान, बहुत मुमकिन है।
1: क्या बात, क्या बात?
0: ऐ मेरी जान, बहुत मुमकिन है, एक दिन तुम मुझे पुकारो।
1: माशाल्लाह।
0: ऐ मेरी जान, बहुत मुमकिन है, एक दिन तुम मुझे पुकारो और मेरी समात बेजान हो जाए, तुम अपने लम्ब से मेरे जिस्म को चाहो जगाना।
1: क्या अच्छी नज़्म।
0: तुम अपने लम्ब से मेरे जिस्म को जगाना चाहो, बोसे से अपनी चिंगारियां भरना चाहो, तब सब कुछ राख हो चुका।
1: क्या बात है, क्या
0: तब
1: बात?
0: सब कुछ राख हो चुका होगा, तुम्हारी समात को किसी सदा का गुमा गुजरेगा।
1: क्या कहने?
0: तुम्हारी समात को किसी सदा का गुमा गुजरेगा, पलट कर दौड़ कर जब तुम आओगे।
1: वाह,
0: पलट कर दौड़ कर जब तुम आओगे, तब ये इदराक होगा, ये जो तुम्हें अपनी जान कहती थी, वो जो तुम्हें अपनी जान कहती थी, वो जो जान से हार बैठी।
2: बहुत खूब।
1: क्या कहने, क्या कहने, क्या क्या खूबसूरत।
0: शुक्रिया। इजाजत हो तो एक चंद अशआर पेश करूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये देखिए के
1: बहुत खूब।
0: सुबह का, शाम का, दिन रात का मतलब समझे कासिम भाई। गौर कीजिए के सुबह का, शाम का, दिन रात का मतलब समझे, लफ्ज मत समझे मगर बात का।
1: क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह।
0: सुबह का, शाम का, दिन रात का मतलब समझे, लफ्ज मत समझे मगर बात का मतलब समझे। और ये देखिए कि जिनके इजहार से हो जाते हैं आरिज गुलनार।
1: क्या कहने, क्या कहने।
0: जिनके इजहार से हो जाते हैं आरिज गुलनार, बिन कहे ऐसे ख्यालात का मतलब समझे।
1: क्या कहने सर, क्या कहने।
0: और बिन छुए ही कभी महसूस करे गर्मिये लम्स।
1: क्या कहने।
0: बिन छुए ही कभी महसूस करे गर्मिये लम्स, कभी सुलगी हुई बरसात का मतलब समझे।
1: वाह वाह वाह।
0: बिन छुए ही कभी महसूस करे गर्मिये लम्स, कभी सुलगी हुई बरसात का मतलब समझे। कोई उजलत नहीं, आराम से दे सारे जवाब। कोई उजलत नहीं, आराम से दे सारे जवाब, गौर से पहले सवालात का मतलब समझे।
1: क्या बात, बहुत अच्छा।
0: कोई उजलत नहीं, आराम से दे सारे जवाब, गौर से पहले सवालात का मतलब समझे। और ये देखिए, तवज्जो चाहूंगी कि कौन दरियाए मानी में लगाए गोते। कौन दरियाए मानी में लगाए गोते, किसको फुर्सत है तेरी बात का मतलब समझे। कौन दरियाए मानी में लगाए गोते, किसको फुर्सत है तेरी बात का मतलब समझे। और मोती ऐसे नहीं बनते हैं,

0: सदफ से कहिए। मोती ऐसे नहीं बनते हैं, सदफ से कहिए। खास लम्हात की सौगात का मतलब समझे।
1: क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह।
0: इजाजत हो तो दो चार शेर पेश करूं के रगे ख्याल को सौतो सदा से बाहर रख।
1: क्या बात,
0: रगे ख्याल को सौतो सदा से बाहर रख। मरीज़े इश्क को ऐसी दवा से बाहर
1: रख।
0: रगे ख्याल को सौतो सदा से बाहर रख। मरीज़े इश्क को ऐसी दवा से बाहर रख। और बस एक बूंद तपिश के खिलाफ काफी है।
1: क्या बात,
0: बस एक बूंद तपिश के खिलाफ काफी है। नजर की आग को काली घटा से बाहर रख।
1: क्या बात,
0: और बस एक बूंद तपिश के खिलाफ काफी है। नजर की आग को काली घटा से बाहर रख। और ये देखिए कि कासिम भाई शकील साहब के, उठा के दर्द का खेमा चला जा सहरा में। उठा के दर्द का खेमा चला जा सहरा में। बदन के दर्द को बोझल हवा से बाहर रख।
1: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने।
0: बदन के दर्द को बोझल हवा से बाहर रख। और जमीन लपेट किसी ख्वाब में गुजारा कर। जमीन लपेट किसी ख्वाब में गुजारा कर। हिसारे ख्वाब को शहरे खुदा से बाहर। जमीन लपेट किसी ख्वाब में गुजारा कर। हिसारे ख्वाब को शहरे खुदा से बाहर रख। और बदन को खोल सितम की उदास रातों में। बदन को खोल सितम की उदास रातों में। जुबान का कर्ब किसी बददुआ से बाहर रख। और मकता है कि सदफ ये रात रगे जां को तोड़ डालेगी। सदफ ये रात रगे जां को तोड़ डालेगी। जनू की रात को नाजो अदा से बाहर रख।
1: क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। मैं क्या बताऊं, ये एक बड़ी, हम तो कहते हैं कि एक तारीखी नशिस्त में हम इसको कह सकते हैं कि अभी कफील अनवर साहब ने जो गज़लें सुनाई और उसके बाद सदफ़ इकबाल जब आई तो उन्होंने अपनी बहुत ही मुरस्सा गज़लें और बहुत ही खूबसूरत नंद पेश की। और हमारे पास वक्त नहीं है इतना, वरना मैं ऐसा लग रहा था जैसे हम सुनते ही रहे हैं इसको। और सदफ़ जब अपने शेर कह रही थी, जब अपनी नज़में सुना रही थी, तो कई चीज़ें जो है जहन के नहा खानों में कहीं ना कहीं जो है वो कौनती नज़र आ रही थी। मुझे एक नज़्म अपनी याद आ रही छोटी सी, मैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि सफ़र ये ख़त्म हो जाए नहीं ऐसा नहीं होगा। कहा किसी ने कि सफ़र ये ख़त्म हो जाए नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत होगा तो इन नज़ार का साया नहीं होगा। मैंने एक नज़्म कही इस पर कि सफ़र में किताबों से हटकर निगाहें, कि सफ़र में किताबों से हटकर निगाहें मनाजिर को तकती रहीं दूर तक यूं। सफ़र में किताबों से हटकर निगाहें मनाजिर को तकती रहीं दूर तक यूं। और बहुत नन्हे अरमां मचलने लगे हैं और कोई रक्स आंखों में करने लगा।
0: वाह वाह वाह,
1: कि बहुत नन्हे अरमां मचलने लगे हैं, कोई रक्स आंखों में करने लगा है। और ये दिन रात पेड़ों से फूलों की बारिश और हवाओं के बहके हुए से ये झोंके, और तुम्हारे लिए हैं ये बागों के झूले कि बचपन कभी झूलता था यहीं पर। हमें ऐसी यादों से अब वास्ता क्या, सफर में किताबों से हटकर निगाहें।
0: बिल्कुल, नज़्म है या पेंटिंग है?
1: तो ये बिल्कुल नहीं, आपकी नज़्म सुन रहे थे तो मैंने कहा कि कई चीज़ें जैसे आदमी को कौनती रहती हैं, आती रहती हैं, तहरीक मिलती है। कुछ अशआर पहले पेश करूं अपने के, कि अब कशिश कोई नहीं किरदार की।
2: अब कशिश कोई नहीं,
1: कि अब कशिश कोई नहीं किरदार की, उनसे मिलना शर्त है बाजार की।
0: वाह वाह वाह, उनसे मिलना शर्त है बाजार की।
1: क्या कशिश कोई नहीं
0: किरदार, क्या बात है,
1: कशिश कोई नहीं किरदार की, उनसे मिलना, उनसे मिलना शर्त है बाजार की। और इस कदर मायूस होना था अगर दिल में क्यों थी आरजू दीदार की। इस कदर मायूस होना था अगर कि दिल में क्यों थी आरजू दीदार की। और अब कशिश कोई नहीं किरदार की, उनसे मिलना शर्त है बाजार की। सदफ ने भी जिक्र किया अपने अशार में और अपनी नज़मों में भी, नज़्म में भी, और कफील साहब ने भी जिक्र किया। हम दरअसल तमाशा ही देख रहे हैं। गालिब ने भी कहा था कि होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मैं तीन चार अशार में पेश करना चाहता हूँ कि अब तमाशा ये मेरी जान

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। संगीतमय प्रेम फिल्मों में अपनी शर्मीली मुस्कान और प्रेम से भरी आंखों से दर्शकों पर जादू चलाने वाले बॉलीवुड के जुबली किंग राजेंद्र कुमार का है आज जन्मदिन, और आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम हम समर्पित करते हैं उन्हें। सुनेंगे आज राजेंद्र कुमार की फिल्म से बेहतरीन नगमे। राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। अपने अभिनय और व्यवहार के लिए जाने जाने वाले राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार का उपनाम मिला। उनकी 6 फिल्में लगातार 25 हफ्तों तक यानी सिल्वर जुबली मनाने में सफल रही थी सिनेमाघरों में। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से 1960 के दशक तक सर्वाधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में शुमार राजेंद्र कुमार लगातार 7 बार शीर्ष अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए और 6 बार सूची में शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया। तो चलिए राजेंद्र कुमार की फिल्मों से बेहतरीन नगमों का लेते हैं आनंद।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं बॉलीवुड के जुबली किंग राजेंद्र कुमार की फिल्म के गाने।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज सुन रहे हैं बॉलीवुड के जुबली किंग राजेंद्र कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उनके फिल्मी नगमे।

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं और आज सुनवा रहे हम बॉलीवुड के जुबली किंग राजेंद्र कुमार के जन्मदिन पर उनके कुछ बेहतरीन नगमे।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। कार्यक्रम जारी है एक अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं और आज बॉलीवुड के जुबली किंग राजेंद्र कुमार के जन्मदिन पर सुनवा रहे हैं उनके फिल्मों के बेहतरीन नगमे।

अपने दमदार अभिनय, प्रेम से भरी आंखें और शर्मीली मुस्कान के लिए राजेंद्र कुमार सबके दिलों में सपनों में बसते रहेंगे, लेकिन आसमान भी झुककर सलाम करेगा उनके उदारवादी चरित्र को और दयालुता को। राजेंद्र कुमार यूं ही हमारे हृदय में बसे रहें।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। अब आप सुनेंगे विद्यापति गीत। कलाकार होंगे राम कुमार मल्लिक, प्रेम मल्लिक और समित कुमार मल्लिक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24

जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप आनंद ले रहे थे विद्यापति गीतों का। हमारी पहली सभा भी जारी है, अगले कार्यक्रम के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। पंडित जसराज का गायन कबीर भजन, राग शुद्ध भरारी।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे पंडित यशराज। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश कालिय इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, और सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट

0: पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है। प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।

0: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
1: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
0: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
0: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
1: भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो।
5: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी पे बैठ कर
10: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ। आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार

0: सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: प्रेत केतु।
1: आज्ञादात,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहता

0: हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है
1: जी। पिताजी
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेतकेतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह फलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने ही वाले हैं और ये वक्त होता है फिल्म संगीत का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हम आपको सुनवाते हैं नए फिल्मी गाने। तो नए फिल्मी गानों के सफर में आइए शामिल होते हैं और सुनते हैं प्यारे प्यारे गाने।

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरुण देव यादव के आवाज़ों में। गीत लिखा था जूनो ने और संगीत अनुराग सैकिया का। अब आपको हम सुनवाते हैं फिल्म धक धक का ये गीत सुनिधि चौहान के स्वर में, सुनिधि चौहान एवं जितेंद्र सिंह के स्वर में। गीत लिखा है ऋषि दत्ता ने और संगीत, माफ कीजिएगा, गीत लिखा है कुंदन विद्यार्थी एवं बाबा बुल्ले शाह ने और संगीत दिया है ऋषि दत्ता ने।

श्रेया घोषाल एवं जुबिन नौटियाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़क में। रश्मि विराग के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जावेद मोहसिन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का सफ़र। नए गीतों के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हाय पापा का ये गीत। आवाज़ दी है अनुराग कुलकर्णी एवं चिन्मयी श्रीपदा ने, गीत कुसर मुनीर का और संगीत दिया है एहसान अब्दुल वहाब ने।

0: वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म काकुदा का गीत गुलराज सिंह एवं अदिति पॉल की आवाजों में, शब्द रचना मनोज यादव की और संगीत दिया था गुलराज सिंह ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म गदर 2 से, स्वर विशाल मिश्रा, नीति मोहन, शैल अख्तर, शहनाज अख्तर की। गीत लिखा है

0: जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे गदर 2 का गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। अभिवादन स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी कविता का। श्रोता बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, सकुशल होंगी और इस समय अपने सारे कामकाज निपटा कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो आपका इंतजार हुआ खत्म, आ गई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें और सुनवाने आपको प्यारे प्यारे गाने। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें आज के दिन विशेष के बारे में। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 20 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत इंसानों के पहली बार चंद्रमा पर कदम रखने और नील आर्मस्ट्रांग के ऐतिहासिक पल की याद में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा के सतत उपयोग के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की थी। श्रोता सखियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में इस दिवस को मनाने के लिए आधिकारिक मान्यता दी गई थी। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और चंद्रमा की खोज के बारे में शिक्षित करना है। हम यदि बात करें चंद्र अन्वेषण में भारत की भूमिका के बारे में, तो चंद्रमा के अन्वेषण में भारत का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें 2008 का चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ऐतिहासिक 2023 का चंद्रयान 3 मिशन और भविष्य की चंद्रयान 4 योजना शामिल है। श्रोता सखियों, बातें आपसे अभी और भी करनी है मुझे, बहुत सारी बातें हम करेंगे, पर उससे पहले आइए ना सुनते हैं हम और आप मिलकर ये प्यारा सा गीत।

इस संगीत में अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नारी संसार में। श्रोताओं, हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं हम महिलाओं की देखभाल के बारे में। मैंने वैसे तो देखभाल की जरूरत हर इंसान को होती है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो और हर उम्र में होती है। बच्चों की बचपन में, बड़े होने के बाद, वृद्धावस्था में, लेकिन महिलाओं के जीवन में जो एक समय होता है रजोनिवृत्ति का, उसके बाद महिलाओं की खास देखभाल की जरूरत होती है। तो यदि आपके परिवार में आपके परिवार के सदस्य इस बात से जागरूक हैं, इस बात के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो अगर आप पे ध्यान देते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं देते हैं तो आप खुद अपना देखभाल करें। तो बहनों, इसी विषय पर, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं की देखभाल कैसे करें, हम एक वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार हैं श्वेता।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे महिलाओं के जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव की जो हर महिला के जीवन में स्वाभाविक रूप से आता है, रजोनिवृत्ति, जिसे अंग्रेजी में मेनोपॉज कहा जाता है। आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि जीवन की एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, लेकिन इस समय शरीर और मन में कई तरह के बदलाव आते हैं जिन्हें समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। रजोनिवृत्ति के दौरान या उसके बाद कुछ महिलाओं को अचानक गर्मी लगना, अधिक पसीना आना, नींद कम आना, चिड़चिड़ापन, थकान, जोड़ों में दर्द या मन का उदास रहना जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सही जानकारी और स्वस्थ जीवन शैली से इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस समय सबसे जरूरी है संतुलित और पौष्टिक भोजन। अपने भोजन में दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, तिल, सोयाबीन और मौसमी फल अवश्य शामिल करें। ये शरीर को आवश्यक कैल्शियम, विटामिन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिससे कि हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से सुबह या शाम की सैर करें, योग करें और हल्का सा प्राणायाम भी करें। शारीरिक गतिविधि न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि तनाव भी कम करती है और अच्छी नींद लाने में मदद करती है। रजोनिवृत्ति के बाद समय समय पर स्वास्थ्य जाँच भी आवश्यक है। रक्तचाप, रक्त शर्करा, हड्डियों की जांच, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा की नियमित जांच कराना महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कभी भी ना करें। यदि किसी प्रकार की परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो स्वयं दवा लेने की जगह योग चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। हमेशा याद रखिए कि रजोनिवृत्ति जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। ये समय स्वयं को अधिक समय देने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का है। तो चलिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता दें। इसी सोच के साथ दीजिए विदा, श्वेता को नमस्कार।
1: धन्यवाद देते हैं हम श्वेता जी को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और बहनों, जैसा कि इन्होंने कहा कि रजोनिवृत्ति जो है वो जीवन का अंत नहीं है और कोई भी अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा वक्त जीवन का एक पड़ाव होता है। यदि आपका जीवन जो है इस समय सुखमय चल रहा है तो हो सकता है किसी तरह की कोई तकलीफ आपके जीवन में आ जाए। अगर आप बहुत तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, तो ये पीड़ा और ये तकलीफ जो है ये हमेशा नहीं रहेगी। अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद अंधेरा, ये तो जीवन है, गति ही जीवन है और परिवर्तन संसार का नियम है। तो बहनों, आज हम बात करेंगे इसी अंधकारपूर्ण जीवन के बाद जीवन में खुद से रोशनी लाने वाली एक बहादुर साहसी बेटी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। आप लगभग जानती होंगी अरुणिमा सिन्हा के बारे में। ये हमारे देश की और हमारे देश की नहीं, ये पूरे दुनिया की एकमात्र विकलांग

भारतीय माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह करने वाली सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विश्व की एकमात्र विकलांग महिला हैं। मैनो इनका जन्म 20 जुलाई 1989 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रुचि बचपन से ही खेल में रही थी। वह एक नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी भी थी। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी उनके जीवन में कुछ एक ऐसा घटना घटित हुआ जिसने उनकी जिंदगी का इतिहास ही बदल दिया। अरुणा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को ट्रेन से एक एग्ज़ाम CISF का एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जा रही थी कि उसी समय ट्रेन में कुछ बदमाश लुटेरे ट्रेन के अंदर आ गए और उन्होंने उनके गले का चेन छीनने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया। और विरोध करने पर उन लुटेरों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उनके बाहर फेंकने के बाद विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी ट्रेन ने उनका एक पैर लगभग कुचल दिया। उसके बाद वह पूरी रात ट्रेन की पटरियों पर अपनी उसी अवस्था में पड़ी रही। अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उनका पैर बहुत ज़्यादा पैर की स्थिति खराब हो चुकी थी, इसलिए उनके पैर को काट दिया गया। उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रही। जिंदगी और मौत की जंग में उनकी जीत हुई और अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा की इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़रों में अब अरुणिमा सिन्हा एक कमज़ोर और विकलांग हो चुकी महिला थी। लेकिन उन्होंने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं किया। अरुणिमा सिन्हा नहीं रुकी और युवाओं को जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया। अपना एक पैर गंवा चुकने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने गजब के जीवट का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उस ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों में भी प्रतिनिधित्व किया था। तो बहनों, ये थी अरुणिमा सिन्हा, जिनका जन्म आज ही हुआ है। तो उन्हें हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और भी कई सारे कीर्तिमान रचें और हमें हम सबको इसी तरह प्रेरणा देती रहें। तो बहनों, हम चाहेंगे कि हम और आप उनके जीवन से प्रेरणा लें और देखें, हमने देखा कि उन्होंने कितनी बहादुरी से अपने जीवन में आए हुए परेशानियों का मुकाबला किया। तो इसी तरह अगर हमारे जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उससे लड़ें, मुकाबला करें उसका और आगे बढ़ें। और बहनों, इस समय हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम और आप मिलकर सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

बहनों, मौसम तो इस समय सही में बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। और खूबसूरत दिखना हम सबकी चाहत होती है कि हम सभी अच्छे दिखें, खूबसूरत दिखें। लेकिन बहनों, बाहरी सुंदरता जो होती है वह मेकअप से या हमारा चेहरा जो कि ऊपर वाले और हमारे माता पिता की देन होती है, तो कोई इंसान यदि खूबसूरत नहीं है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सबकी चाहत होती है कि वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। लेकिन बहनों, यदि हम बाहरी सुंदरता से ज़्यादा ध्यान अपने आंतरिक सुंदरता पर देंगे तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आंतरिक सुंदरता जो है वो अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से और उससे भी ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य से आती है। तो यदि आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी सेहत अच्छी है, तो आपके त्वचा पे निखार दिखेगा, आपका चेहरा हमेशा चमकता दमकता रहेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप अच्छे लगेंगे, आप खुश रहेंगे। और खुश रहने वाला इंसान हमेशा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो बहनों, हमारी असली चमक जो है हमारे सेहत से आती है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य जो है वो हमें प्राकृतिक रूप से चमकाता है। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए यदि हम कुछ बातों पर ध्यान दें तो हम खुद को स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं। जैसे अपने आहार को जो है हम संतुलित रखें, अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ताजे फल और नट्स शामिल करें, मौसमी फल और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को अंदर से ऊर्जावान बनाते हैं, हमारे शरीर के लिए

0: पर्याप्त हाइड्रेशन जो है वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए। यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। हमारे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योग जो है वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए योग, प्राणायाम या फिर कोई भी शारीरिक व्यायाम जो आपको पसंद हो और जो करने में आप सक्षम हो वह ज़रूर करें। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके साथ ही बहनों, भरपूर नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रतिदिन आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। ऐसी नींद नहीं कि हम सो रहे हैं, लेटे हैं, लेकिन हमारे मन में चल रहा है कि ये काम करना है। हमारी नींद अच्छे से पूरी ना हो तो उसका असर हमारे चेहरे पे हमेशा दिखता है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। और रात का खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा टहलें और स्क्रीन से जहाँ तक हो सके थोड़ी सी दूरी बनाएं। और बहनों, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम अच्छा डाइट ले रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, वैसे हम अच्छा डाइट ले रहे हैं तो नींद आनी स्वाभाविक है। लेकिन यदि हमारे मन में किसी तरह का तनाव है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो उसका असर हमारे नींद पर भी होता है और उन सभी चीज़ों का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज़्यादा तनाव जो है हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे बालों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, ध्यान करके अपने तनाव को दूर रख सकती हैं। इसके साथ ही उन चीज़ों से दूरी बनाएं जो चीज़ें हमें तनाव दें, जिनसे हमें चिंता हो। घर परिवार में रहकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता को पाले नहीं। जिस चीज़ से चिंता हो रही है, तनाव हो रही है, कोशिश करें जो भी बात है उन्हें सुलझाएं, आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहनों, हम अपने कार्यक्रम को आगे भी जारी रखते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: तो बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ यदि आपके पास कोई सलाह हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो वह भी आप हमें ज़रूर लिखकर भेजिए। इसके अलावा यदि आपके पास कोई टिप्स हो, कोई रेसिपी हो जो आप चाहती हैं कि हमारे ज़रिए अन्य श्रोताओं तक पहुँचे, तो आप वह भी हमें लिखकर भेज सकती हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है वही, कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, और हमारा पिन कोड है 8460004। तो हमें आपके पत्रों का रहता है इंतज़ार। हमें भेजिएगा पत्र ज़रूर और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और मुझे कविता को दीजिए अगले अंक तक के लिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम नारी संसार अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाले हैं। अब आप हिंदी समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी है, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगे और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 1:15 और 2:30 पर। रोजगार सूचना आप सुनते हैं दिन के 2:10 पर। 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोकगीतों

हमारी दूसरी सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे तरुण कुसुम। 5:40 पर आप एक बार पुनः आनंद ले सकेंगे नए फिल्मी गीतों का। विद्यापति गीत का प्रसारण समय होगा शाम 6:10। 6:25 पर हम आपको सुनवाएंगे मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सौ शाम 6:30 पर। 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 7:30 और ही जिले की हलचल आप सुन सकेंगे 7:47 पर हमारे पटना केंद्र से।

बिहार विधानसभा विधानमंडल समीक्षा आप सुनेंगे 7:50 पर। संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर। मैथिली कार्यक्रम सिंहहार का प्रसारण समय होगा 8:15। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक हमारे दिल्ली केंद्र से। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है देशभक्ति गीत, स्वर मन्ना डे का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत का और इस समय हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्मी नगमे।

श्रोताओं, जुबली कुमार को कौन नहीं जानता। जी हाँ, फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को हिंदी सिनेमा जगत में जुबली कुमार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उनकी कोई भी फिल्म सभी सिनेमा घरों में लगातार 25 सप्ताह से अधिक चलती थी, इसलिए उनको जुबली कुमार की उपाधि दी गई। तो आज उनका जन्मदिवस है, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आज हम उन्हीं पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गाने सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं फिल्म गीत का ये गाना, लता मंगेशकर एवं महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म सूरज का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के विषय में। इन्होंने 3 दशकों तक 1960 एवं 1980 के दशकों में लगातार हिट फिल्में दी हैं। इन्हें कोई भी फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिला। ये हर रोल के लिए अपने अभिनय में जान डाल दिया करते थे। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म आरजू से। स्वर मोहम्मद रफ़ी का, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

फिल्म मेरे महबूब का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी एवं लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था शकील वदायूनी ने और संगीत नौशाद का। आइए अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं, फिल्म गूंज उठी शहनाई का गीत लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत रचना भरत व्यास की और संगीत दिया है वसंत देसाई ने।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हमारे सभी कार्यक्रमों को आप अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। तो न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम कहीं भी कभी भी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह

0: 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी नगमे। राजेंद्र कुमार एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सफलता और असफलता दोनों ही दौर को देखा। संघर्षों की पथरीली राह पर लगातार चलते हुए उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। साठ के दशक के सबसे सफल एक्टर में से एक माने जाते हैं राजेंद्र कुमार। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 80 से अधिक फिल्में फिल्म जगत को दी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

संदेश से पहले आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अनजाना का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाया राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी नगमे।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से

0: शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की है। विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार के भाषण और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें राज्य योजना मद में 24,370 करोड़ रुपए की राशि जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है। सत्र के दौरान 10 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। गौरतलब है कि मानसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, यदि दोनों सक्रिय रहें तो वे अत्यंत उत्पादक साबित होते हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों का मंगल होता है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्र के दौरान लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई CCSU ने सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले 6 महीनों के दौरान 692 कानूनी नोटिस जारी किए हैं। CCSU के पुलिस महानिरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अवधि में 1320 आपत्तिजनक पोस्ट और URL हटवाए गए, जबकि 529 फर्जी सोशल मीडिया ID को निष्क्रिय कराया गया। इसके अलावा साइबर अपराध से जुड़े 475 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर 103 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, फर्जी सोशल मीडिया ID, डीप फेक और भ्रामक तथा सांप्रदायिक सामग्री पर 24 घंटे सतत निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। मुंगेर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण किउल जमालपुर रेल खंड पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लगभग 2 फीट पानी जमा हो गया है, जिससे रेलवे प्रशासन ने इस रेल खंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया। इससे कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर घंटों तक खड़ी रहीं, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया था कि सरकार ने नए मसौदा नियम बनाए हैं। इन नियमों के कारण 11 करोड़ टीवी चैनल

बंद हो जाएंगे और केबल तथा डीटीएच शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएंगे। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप नाजिया से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साजिया का 5 रोजा मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। असेंबली में स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने अरकान से इजलास को बाजाबता चलाने में ताउन की अपील की है। कानून साजिया के मानसून इजलास की कार्रवाई शुरू होने से कबल ही हिजब इख्तलाफ के अरकान ने असेंबली के मेन गेट पर पहुंचकर हंगामा किया। अपोजिशन नीट इम्तहान पेपर लीक और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि इस दौरान असेंबली के अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। बाद में दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई और असेंबली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार की तकरीर और अनजहानी लीडरों को खराज अकीदत पेश करने के बाद कल 11 बजे तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इजलास के दौरान रियासत के वजीर मालियात विजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रुपए का उबूरी बजट पेश किया। इसमें रियासती मंसूबा मद में 24,370 करोड़ रुपए की रकम है, जबकि मरकज साज मंसूबों के लिए अलग से रकम रखी गई है। इजलास के दौरान 10 बिल ऐवान में पेश किए गए। वाज़ह रहे कि मानसून इजलास 24 जुलाई तक चलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून इजलास, अगर दोनों सरगर्म रहें तो वो इंतहाई नतीजा खेज साबित होते हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास की शुरुआत से कबल मीडिया को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब दोनों बेहतर होते हैं तो इससे कौम की फलाह और तमाम जानदारों की भलाई होती है। वहीं हमारे नामा निगार ने बताया कि मानसून इजलास 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इजलास में 19 मीटिंगें होंगी। वहीं मरकजी वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने इजलास के दौरान लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद तरमीम बिल 2026 पेश किया। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर मौजूदा वक्त में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट CCU ने महफूज डिजिटल माहौल को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान 692 कानूनी नोटिस जारी की हैं। CCSU के IG रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दत में 1320 काबिल एतराज पोस्ट और URL हटवाए गए हैं, जबकि 529 फर्जी सोशल मीडिया ID को गैर फ़ाल कर दिया गया है। इसके अलावा साइबर क्राइम से जुड़े 475 मामलों में FIR दर्ज करके 103 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस IG ने कहा कि खवातीन के खिलाफ साइबर क्राइम, फर्जी सोशल मीडिया ID, डीप फेक, गुमराहकुन और फिरकावराना मवाद पर 24 घंटे मुसलसल निगरानी रखी जा रही है। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और मगरबी चंपारण जिले में तेज बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सिवान और वैशाली जिले में तेज बारिश की पेशनगोई जारी की है। दीगर अजला में भी बारिश का इम्कान है। मुंगेर जिले में मुसलसल हो रही तेज बारिश के सबब क्यूल जमालपुर रेलवे सेक्शन पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर तकरीबन 2 फीट पानी जमा हो गया है। इसके बाद इंतजामिया ने इस सेक्शन पर आमदोरफ्त आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया। इससे मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर नशर हो रहे एक फर्जी पैगाम की तरदीद करते हुए दावा किया था कि हुकूमत ने नए मसौदे तैयार किए हैं। इन जब्तों के सबब 11 करोड़ TV चैनल बंद हो जाएंगे और केबल और DTH फीस 4 से 6 गुना तक बढ़ जाएंगी। इसमें भारी लाइसेंसिंग फीस भी नाफिज होंगी और लाखों मुलाजमत खत्म हो जाएंगी। PIB की फैक्ट जाँच यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसा कोई जब्ता पेश नहीं किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से

0: उर्दू का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026, कुल पद 1829। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in। JKSSB 2026, कुल पद 130, आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in। BOI 2026, कुल पद 779, आवेदन शुरू होने की तिथि 30/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2026 यानी कि आज तक। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल, अधिकतम उम्र सीमा 45 साल। ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia, बैंक ऑफ इंडिया .bank.in। रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026, कुल पद 6557, आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, अधिकतम उम्र 30 साल। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 33 साल, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब आप दोपहर समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही

0: ही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूँ कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि

0: विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।

0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

फिल्म हिमालय की गोद में का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म शर्मिली से, स्वर किशोर कुमार का, गीत लिखा है नीरज ने और संगीत एसडी बर्मन का।

फिल्म शर्मिली में किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे। अब सुनिए फिल्म तीसरी कसम में मुकेश को। शब्द रचना शैलेंद्र की और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

फिल्म वक्त का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था रवि ने। आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म माई लव का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दान सिंह का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

अनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सबक का गीत, जिसे लिखा था सावन कुमार ने और संगीत दिया था उषा खन्ना ने। आइए कार्यक्रम के आखिरी में सुनते हैं फिल्म ताजमहल का ये गीत सुमन कल्याणपुर एवं मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने।

0: सुमन कल्याणपुर एवं मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में अभी आप फिल्म ताजमहल का गीत सुन रहे थे। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। अभी आपने सुना राकेश किरण झा के स्वर में। अगला लोकगीत सुनिए आलोक कुमार ठाकुर के स्वर में।

माफ़ कीजिएगा, किसी कारणवश हम ये लोकगीत नहीं सुनवा पाए आपको। सुनिए अमन मिश्रा के स्वर में ये लोकगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

अमन मिश्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:20 हो चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे शाम 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। ये जो सॉन्ग है ये है फिल्म लोफर का। इसे दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी और इसके बोल लिखे थे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। इस सदाबहार गाने को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी ने और फिल्माया गया था धर्मेंद्र और मुमताज़ भी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज़ और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी।
1: चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, उमानाथ, अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक, जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी, यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा,
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15-17-18 इतने मिनट का समय लग जाता है, और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल,
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल, तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना, तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भर कर लेकर आते हैं, और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है। तो इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है, और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई, और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
0: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था, और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते थे।
1: बिल्कुल, और साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले लेती थी,
0: बारिश में भीगने का आनंद भी मिल जाता, और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो पाता।
1: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना, तो डोर मैट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से धार से पड़ पड़ के उनकी धूल निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल, उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें, और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है, और जैव विविधता को सहारा देता है।
0: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पर हम जंगलों की बात करें, जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते हैं।
1: बिल्कुल, हमने अपने सामने भी देखा है कि मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
0: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं महानगरों में, जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, और ये पानी इतनी ज्यादा

0: में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
1: बिल्कुल। और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
0: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है। उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
1: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है और गाँव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
0: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है बारिश का, वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी
0: एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है, उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात कर रहे हैं कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी से बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती हैं, वो एक अलग चीज़। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारे सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है।
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो और एक एक बूंद, मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना अगर हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन, बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम कह सकते कि भाई आप इस पर आप अपना है, मेरा सुन के ना अपना है जो

0: उन्होंने लिखा है वो अपनी यादें लिखी हैं,
1: और जल संचय
0: है?
1: अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लिखकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात
6: व्यंजन
5: करेंगे
6: की। तो पिन्नी जो है ना पंजाब का जो व्यंजन है ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा मैदा किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज़्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आँच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी बूरा जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
5: बिल्कुल। और देखो एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी मिर्च दालचीनी लौंग इलायची प्याज डालिए और भूनिए, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लाल मिर्च पाउडर हल्दी टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबलस्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी से मिलाइए और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
6: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन जी, साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करने की, वेट कम करना
0: जी,
1: रेगुलर एक्सरसाइजेस करना
0: जी जी,
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं
0: जी। तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली, सम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं,

0: वो रेगुलर करना जरूरी है
1: जी
0: ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है. तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है. अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है.
1: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी
0: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है,
1: जी
0: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है. सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है.
1: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका.
0: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है. लेकिन एक मैं बताता हूं, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं.
1: जी,
0: ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है. ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है.
1: जी,
0: लेकिन
1: जी,
0: वो एक अश्योरेंस हो जाता है. मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं. ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में. काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है. ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए. सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है. लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है.
1: जी जी.
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है. क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है. ये जरूरी नहीं है. ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए. क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है. तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए.
1: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते. वो कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी. तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए. तो
0: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है.
1: जी हाँ,
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता है.
1: जी जी.
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है. आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है.
1: जी.
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है.
1: जी जी.
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं.
1: जी.
0: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं.
1: जी.
0: सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए. अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है.
1: जी
0: मान लेना कि नहीं अब इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत।

0: पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस है जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है
1: जी,
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और उसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है
1: जी।
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी,
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है
1: जी।
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं, क्योंकि नहीं तो वो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है।
0: एब्सोल्युटली,
1: कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के,
0: और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई
1: तो,
0: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार।
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
1: जी।
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है। दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
1: जी जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मुहे रंग दो लाल।
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से।
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स, छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा
0: इसलिए मत
1: और
0: चेकअप
1: उसे चेकअप मत
0: कराओ
1: करवाओ,
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई।

0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी
1: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
0: जी
1: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं।
0: जी
1: लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
0: जी
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी जी
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
0: जी जी
1: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल।
1: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
0: जी जी, तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
1: ये मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि

0: ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है.
1: बिल्कुल.
0: एट द सेम टाइम एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक. बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो. एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है. बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है. ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है.
1: बिल्कुल.
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट.
1: जी, इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है. किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं, और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है. इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है. ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है. सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है. जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट, जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है.
1: जी, तो उसे पता चल जाता है. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुने.
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में

0: डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
1: जी जी
0: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
1: बिल्कुल.
0: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इंपॉर्टेंट।
1: जी.
0: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
1: दोस्तों, विविध भारती से यह है कार्यक्रम सेहतनामा. आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत. ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद.

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: जी।
2: ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इंप्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
1: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
2: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
1: जी हाँ।
2: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट

0: डिसीशन मेकिंग की जरूरी है या जरूरी नहीं है
1: जी,
0: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है
1: जी।
0: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है
1: जी,
0: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है
1: जी।
0: इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है
1: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है, इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
0: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप, कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है, प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है। पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
1: जी, बिल्कुल।
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी,
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है
1: जी, जी।
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है, लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है?
0: आई थिंक बहुत महत्व की बात आपने कही है
1: जी।
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
1: जी,
0: हैं
1: जी बिल्कुल।
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है
1: जी, जी।
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है,
1: अच्छा,
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है
1: जी।
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन

0: इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: बट आई कैन टेल यू ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन सावधन
1: चंचल चितवन।
0: चंचल चितवन
1: बेहतरीन
0: बहुत
1: गाना
0: अच्छा
1: है
0: गाना है
1: जी, मुकेश की आवाज में भी
0: मुकेश
1: है
0: की
1: और
0: आवाज में, लता जी
1: जी
0: की आवाज में भी है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज
1: जी
0: में
1: जी
0: सुनेंगे।
1: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है।

0: कि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी।
1: जी जी।
0: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
1: जी जी।
0: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
1: जी।
0: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
1: जी।
0: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है।
1: जी जी।
0: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
1: जी जी।
0: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
1: बिल्कुल।
0: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
1: जी।
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी।
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी

0: ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकेंड लाइफ मिलती है।
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी, जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सो सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है उस

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रारंभ होती है हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युववाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार झा। युवा श्रोताओं, कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत आज हम सुनते हैं तरुण कुसुम। युवा श्रोताओं, आज का दिन अंतरिक्ष अन्वेषण के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन अंतरिक्ष अन्वेषण के सबसे बड़े मील के पत्थर के रूप में दर्ज है कि जब 1969 में आज ही के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। और यदि आज ही के दिन के कुछ इतिहास के आयनों में यदि हम नज़र डालें तो हम सभी जानते हैं कि 1976 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष अन्वेषण क्या है, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड के रहस्यों को

कैसे हमारे वैज्ञानिक सुलझाने में लगे हुए हैं, पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में मानव जाति का सबसे बड़ा और साहसिक प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। इन सभी बातों पर हम अपने युवा श्रोताओं के साथ चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में अब एक गीत सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं एक मैथिली गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी इस विज्ञापन से पूर्व हम अरविंद कुमार झा की आवाज़ में ये देवी गीत सुन रहे थे। युवा श्रोता भी सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत तरुण कुसुम। श्रोताओं, अंतरिक्ष अन्वेषण की जो यात्रा है, 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक एक उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई थी और यह चंद्र चौकियों, मंगल रोवर्स और मानव अंतरिक्ष उड़ानों के उन्नत चरण में पहुंच चुकी है। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के बाहर मानव के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और हमारी तकनीकी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्यम भी है। नित नए नए अन्वेषण हो रहे हैं और नित नए नए शोधार्थियों द्वारा नए नए स्वरूपों को, अंतरिक्ष में कहाँ क्या चल रहा है इस बारे में जो कई सारे उपग्रह हैं उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार शोधार्थी अन्वेषण कर रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो अध्ययन है, बिग बैंग सिद्धांत से लेकर आकाश गंगाओं और ब्लैक होल के निर्माण तक, अंतरिक्ष वेधशालाएं हमें ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद करती है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां सौरमंडल और उसके बाहर उन ग्रहों की तलाश कर रही है जहां जल और जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हों, यानी जीवन की भी खोज चल रही है। पृथ्वी पर तकनीकी लाभ की बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान से प्राप्त तकनीकों का उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते आ रहे हैं। इनमें GPS, मौसम के पूर्वानुमान और उन्नत चिकित्सा उपकरण भी शामिल हैं। आने वाले दशकों में चंद्रमा पर स्थायी ठिकाने बनाने और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अंतरिक्ष पर्यटन और उपनिवेशीकरण पर कार्य चल रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक और गीत की ओर चलते हैं और आनंद लेते हैं इस प्यारे से संगीत का। तो सुनते रहिए हमारे इस कार्यक्रम युवाणी को और विषय के साथ साथ गीत संगीत का भी आनंद लेते रहिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई।

0: गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: युवा श्रोताओं, आज हम आपसे अंतरिक्ष अन्वेषण पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल के वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हम बात करते हैं पहले चंद्रयान मिशन की। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। वहीं भारत का पहला सौर मिशन, जो सूर्य के रहस्यों और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन कर रहा है, आदित्य L1 है। वहीं गगनयान मिशन की बात करें तो भारत अपने पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मिशन की सुरक्षा प्रणालियों जैसे क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसका सफल परीक्षण यह दर्शाता है कि भारत मानव अंतरिक्ष उड़ानों की जटिल तकनीकों में आत्मनिर्भर हो रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण की राह में अत्यधिक तापमान, विकिरण यानी रेडिएशन और विशाल दूरी जैसी कई चुनौतियां हैं। हालांकि निजी अंतरिक्ष कंपनियों जैसे SpaceX और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे आर्टेमिस समझौते के माध्यम से इन बाधाओं को पार किया जा रहा है। यह क्षेत्र न केवल वैज्ञानिक खोजों का केंद्र है, बल्कि यह नई पीढ़ी के अभियंताओं और वैज्ञानिकों को भी प्रेरित करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण ब्रह्मांड की खोज और उसका अन्वेषण अंतरिक्ष की तकनीकों का उपयोग करके करने को कहते हैं। अंतरिक्ष का शारीरिक तौर पर अन्वेषण मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों या रोबोटिक अंतरिक्ष यानों द्वारा किया जाता है। श्रोताओं, इस पर बातचीत आपसे यूं ही चलती रहेगी। एक और संगीत आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे अनुपमा मिश्रा की आवाज़ में ये सुगम संगीत। और युवा श्रोताओं, अब चलने का समय हो गया है, तो ऐसे ही अंतरिक्ष में जो अन्वेषण है उस पर अन्वेषण करते रहें और अंतरिक्ष के बारे में सोचते रहें। जो आपकी सोच है और जो जुटाए गए जो डाटा हैं, इस पर आधारित बहुत सारे कार्य हम ही में से कोई एक वैज्ञानिक बनते हैं और उनके द्वारा किया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में यानी तरुण कुसुम से दीपक को आज्ञा दें। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी की आवाज में। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने। सुनते हैं आजाद

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों

0: और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं नए नए फिल्म संगीत। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अथर्व से। गायक कलाकार हैं आशी तितोड़िया।

0: में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म भूल भुलैया से श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है।

0: सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए जानकारी प्राप्त करते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। इसके अंतर्गत आज हमारे कलाकार होंगे सूर्य नारायण यादव। छह 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद और शाम 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए संबोधित हमारा कार्यक्रम होगा गांव घर। इसी के अंतर्गत संध्या 7 किसान भाई सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, तदुपरांत 7:47 पर जिले की हलचल प्रसारित की जाएगी। 7:50 पर सुनेंगे बिहार विधानमंडल समीक्षा, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। शाम 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सिंगरहार। जी हाँ, मैथिली में संबोधित ये कार्यक्रम हमारा प्रसारित किया जाएगा रात 8:15 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9:00 News@9 और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें। रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:14 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

पटना एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे मानसून होय अथवा मानसून सत्र, जँ दुनू सक्रिय रहैत अछि तऽ ओ अत्यंत उत्पादक साबित होइत अछि। संसद के मानसून सत्र शुरू हेबा सँ पहिने मीडिया के संबोधित करैत ओ कहलनि जे जखन दुनू उत्पादक होइत अछि तऽ एहि सँ राष्ट्रक कल्याण आ जीव सभक मंगल होइत अछि। एम्हर हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे मानसून सत्र 13 अगस्त धरि चलत। 25 दिनक सत्र मे 19 बैसार होयत। ओतहि केंद्रीय विधि आ न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सत्रक क्रम मे लोकसभा मे सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत कयलनि। एहि विधेयकक उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 मे संशोधन कऽ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभक संख्या भारतक मुख्य न्यायाधीश के छोड़ि कऽ वर्तमान मे 33 सँ बढ़ाकऽ 37 करबाक अछि। बिहार विधानमंडलक 5 दिवसीय मानसून सत्र आइ सँ शुरू भऽ गेल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सदस्य लोकनि सँ सत्रक सुचारू संचालन मे सहयोग करबाक अपील कयलनि। सत्रक कार्यवाही शुरू हेबा सँ पहिने विपक्षी सदस्य लोकनि विधानसभाक मुख्य द्वार पर पहुँचि कऽ हंगामा कयलनि। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक आ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानक इस्तीफाक मांग कऽ रहल छल। दुनू सदनक कार्यवाही शुरू भेला पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमारक भाषण आ दिवंगत प्रमुख व्यक्ति लोकनि के श्रद्धांजलि देबाक बाद काल्हि 11 बजे धरि लेल सदनक कार्यवाही स्थगित कऽ देल गेल। एहि सँ पूर्व सदन मे राज्यक वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव 87,383 करोड़ टाकाक अनुपूरक बजट सदन मे प्रस्तुत कयलनि। एहि मे राज्य योजना मद मे 24,370 करोड़ टाकाक राशि, जखनकि केंद्र प्रायोजित योजना सभ लेल अलग सँ राशि राखल गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ पाटलिपुत्रा जंक्शन सँ 1100 श्रद्धालु के एक विशेष ट्रेन सँ सोमनाथ यात्रा लेल विदा कयलनि। एहि अवसर पर ओ कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक विकसित भारत संकल्प के साकार करबाक लेल भारतीय संस्कृति, आस्था आ सनातन परंपरा के जन जन धरि पहुंचेबाक सरकारक प्राथमिकता अछि। ओ कहलनि जे एहि यात्राक माध्यम सँ श्रद्धालु लोकनि के गुजरात प्रवास मे ठहराव, भोजन आ आनो सुविधा सरकार दिस सँ उपलब्ध कराओल जायत। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजेन्द्र प्रसाद यादव समेत आनो मंत्री आ गणमान्य लोक उपस्थित छलाह। राज्य में मानसूनक सक्रियता सँ बरखा भऽ रहल अछि। राजधानी पटना समेत प्रदेश में अधिक

0: अष्टम रुक रुक कऽ वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग आइ कैमूर, गोपालगंज, रोहतास आ पश्चिम चंपारण जिला मे अत्यधिक भारी वर्षा, जखनकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान आ वैशाली जिला मे भारी वर्षा के लऽ कऽ चेतावनी देने अछि। आनो जिला मे वर्षा हेबाक पूर्वानुमान अछि। प्रदेश में लगातार भऽ रहल बरखाक कारण उत्तर बिहारक कतेको नदीक जलस्तर खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि, जाहि सँ कतेको ठाम बाढ़िक खतरा उत्पन्न भऽ गेल अछि। केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त संवादक अनुसार गोपालगंज जिलाक डुमरिया घाट मे गंडक नदीक जलस्तर खतराक निशान सँ 52 सेंटीमीटर ऊपर अछि, जखनकि बागमती नदी रून्नी सैदपुर मे 30 सेंटीमीटर आ बेनीबाद मे 105 सेंटीमीटर खतराक निशान सँ ऊपर बहि रहल। ओतहि कोसी नदीक जलस्तर खगड़िया जिलाक बलतारा मे खतराक निशान सँ 73 सेंटीमीटर ऊपर बनल अछि। झंझारपुर मे कमला बलान, महानंदा समेत आनो नदी सभक जलस्तर एखन खतराक निशान सँ नीचा अछि। पूर्व विधान पार्षद आ कांग्रेसक वरिष्ठ नेता विनोद कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी सँ त्याग पत्र दऽ देलनि। मधुबनी मे पत्रकार लोकनि के ओ जनौलनि जे ओ अपन त्याग पत्र कांग्रेसक शीर्ष नेतृत्व के पठा देलनि अछि। एक प्रश्नक उत्तर मे नीतीश कुमार मे विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। समस्तीपुर जिलाक पूसा स्थित कस्तूरबा विद्यालयक एक छात्रा के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देल गेल। पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि। मधुबनी जिलाक बाबूबरही थाना क्षेत्र मे पुलिस नौकरी दिएबाक नाम पर ठगी करयवला एक व्यक्ति के गिरफ्तार कयलक अछि। दरभंगा मे टीबी भारत मुक्ति अभियानक अंतर्गत 15 अगस्त धरि 54 पंचायत के टीबी मुक्त करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गाम घर।

0: गाम घर सुननिहार सुधीर श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हाक नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर उगना भाई बैसल छत, तो गोर लगे छी उगना भाई।
1: खूब प्रसन्न रहू विजय भाई। विजय भाई, आई सोम दिन है, आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लऽ कऽ अबै छियनि हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा से। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आइ एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सुनब बुनियाद, एकर संगहि एकटा बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित भेंटवार्ता सुनब, मुदा एहि सबसँ पहिने दू टप्पी कऽ ली।
0: हाँ, देखियौ उगना भाई, अटल पेंशन योजना जे अछि ओ भारत सरकारक एकटा सामाजिक सुरक्षा योजना अछि। एकर तहत 60 वर्षक आयु पूरा भेला पर 1,000 से 5,000 रुपया धरि न्यूनतम मासिक पेंशन मिलैत अछि। एहि योजनाक मुख्य बात निम्न, जेनाकि एकर पात्रता जे अछि ओ 18 से 40 वर्ष के बीच कोनो भी भारतीय नागरिक जिनका बचत बैंक या डाकघर में खाता होनि ओ एहिमे शामिल भऽ सकै छथि। हिनकर योगदान छथि मासिक, त्रैमासिक या छमाही, एहि आधार पर अपने के ऑटो डेबिट के जरिया राशि काटल जाइत अछि आ 60 साल के उम्र धरि योगदान केनाइ एहिमे होइत अछि।
1: आ जे योगदान करै छी ताहि अनुपात मे 60 वर्षक बाद से पेंशन के राशि निर्धारित कयल जाइत अछि। तऽ विजय भाई ठीके कहलौ, स्नेही श्रोता लोकन के एहि अटल पेंशन योजना सँ लाभ उठेबाक चाही। बेर रहत तऽ फेर गपशप करब, मुदा आप पहिने सुनैत छी ई एकटा भेंट वार्ता।
0: हाँ, भेंट वार्ता के विषय अछि बुजुर्गों के लिए पेंशन का महत्व आ

0: भेंट वार्ताकार छथि सूर्य नारायण यादव, हुनकासँ भेंट कऽ रहल छथि शंकर कुमार चौधरी।
1: तऽ सुनल जाए
0: ई बात।
2: आइ हम राधाकृष्ण नगर चूना भट्टी दरभंगामे आयल छी। एतय बुजुर्ग शिक्षक छथि श्री सूर्य नारायण यादव जी, ई अवकाश प्राप्त छथि। तऽ हिनकासँ स्नेही बुजुर्ग श्रोता भाई बहिन लोकनिक लेल ई जनतब देबय चाहैत छियनि जे पेंशन जे सरकार द्वारा देल जाइत अछि ओकर जीवनमे की महत्व अछि बुजुर्ग लोकनिक लेल। एहि प्रसङ्गमे अपने अपन परिचयके सङ्ग जनतब।
3: वार्ड नंबर 14 राधाकृष्ण नगर निवासी छी। जे वृद्धावस्थामे सरकारीसँ हमरा जनैत ई अवस्थासँ सबके गुजरऽ पड़तै, केहनो बड़का पदपर छथि आ छोटसँ छोट व्यक्ति छथि, आर्थिक रूपसँ सबल होइ दुर्बल होइ जहन अवस्था खिन्न भऽ जाइ छै तऽ ओहि स्थितिमे अखन जे गिरावट भऽ रहल छै केकरो कोइ देखनिहार नहि छै। तऽ जीवन भरि जे राष्ट्र निर्माणमे व्यक्ति अपन योगदान देलथिन, कोनो क्षेत्रमे अपन बाल बच्चाके पोसला आ वृद्धावस्थामे हुनका दर दवाइ या नाना प्रकारके छै किछु व्यञ्जन बेचने छै तऽ तकरा प्राप्त करऽके हेतु ओ ललायित रहतथिन, हुनका नहि भेटतनि आ ओ जीवन जे छै से तखन हुनका निरर्थक बुझऽमे हेतनि जे हम कथी लए जीवै छी।
2: ठीके कहलहुँ।
3: तऽ ओहन स्थितिमे ई पेंशन जे छै सरकारी सहायता ई परम आवश्यक छै। बहुत सोचि समझि कऽ पेंशन नीति रहै आ ओ रहक चाही आ सम्मानजनक रहक चाही। आब ओ तऽ युग बदलि गेलै, पैसाके महत्व घटल जा रहल छै, सम्मानजनक सरकारके ध्यान देना चाही जे बुजुर्गके बुढ़ापा पहाड़ नहि बुझऽमे अबै, जीवऽके हुनका अधिकार छनि, संविधानसँ प्राप्त अधिकार छनि, जे हुनका भेटक चाही। हम एकर प्रबल समर्थक छी पेंशन नीतिके आओर अवश्य भेटक चाही।
2: अपने कहलहुँ जे पेंशन अवश्य भेटबाक चाही। ठीके कहलहुँ। कारण बुजुर्गावस्थामे कतेक ओ अपन धियापुतासँ बुजुर्ग लोकनि कहथिन जे हमरा आर्थिक मदद करू। विशेष रूपसँ जहन एहि उम्रमे अपन संतानसँ किछु माँगऽ पड़ैत छनि जे हुनका सभदिन दैत एलखिन, तऽ विशेष रूपसँ एकटा ई एहन बुझबामे अबैत छनि जेना ग्लानि बुझबामे जाइत छनि जे हिनकासँ मंगियनि। आ प्रायः धियोपुताके ई देखै छियनि जे हुनकर एहि गप पर ध्यान नहि दैत छथिन। एहि प्रसङ्गमे अपनेके की विचार अछि, ओ की जनतब दियन।
3: बुजुर्ग जे छथि वृद्धावस्था जे होइ छै तऽ ओहि शरीरके रक्षा करऽके लेल हमरा समझसँ अधिक धनके जरूरत पड़ै छै। ओ शरीर जीर्ण भऽ गेलै, ओ दवाइ दारू लगबे करतै, बच्चाके जीवन भरि सेवा केलथिन, परन्तु ओहि स्थितिमे आब बच्चा जे छै सेहो लाचार भेल जाइ छै, ओकरा बाल बच्चाके अपन पढ़ाइ लिखाइ छै, ओ बुजुर्ग तरफमे कम ध्यान दै छै। प्रायः देखल गेल जेम्हर चर्चा होइ छै तऽ इएह चर्चा होइ छै जे बुजुर्गके तिरस्कार कयल जाइ छै। आ जे पेंशन होल्डर छै सरकारी पेंशन होल्डर या पूर्व कर्मचारी सबके कनि सम्मानित सेहो रहै छथि आ कुछ बच्चा सेवो करै छै ओही अर्थ लेबल लेल, आ देबऽके लेल तऽ बहुत दुर्लभ बात छै। आब एहन हालतमे हुनका सम्मानपूर्वक जीवऽके लेल ओ सरकारके दायित्व होइ छै जे अल्प वेतन या बिना वेतन भोगी हुनका जे कुछ सम्मानित सम्मान ढङ्गसँ जीवऽके लेल यदि सरकार कुछ सहायता नहि करतै तऽ ओ बच्चा सब नाउमीदी छै जे प्रायः सब कोइ जनैत छथिन आ जनैत हथिन। अनन्त आवश्यकता भऽ गेलैए बच्चाके ओ पूर्ति करऽमे आनाकानी करै छै।
2: मुदा सामान्य ई रहैत छल जे बाबा नाना कक्का ई सब जो अबै छलखिन तऽ धियापुता लोकनिके ई अपेक्षा जरूर रहैत छलनि जे कि

0: लऽ कऽ अबता। चॉकलेटे होनि, किछु मिठाइए होनि, किछु फले होनि, अपना सभक एहिठाम ई एकटा प्राचीन परम्परा रहल अछि जे धियापुता लए किछु लऽ कऽ जाइ। तऽ एहि गपके जे एखनुक बेरमे पूर्ति भऽ रहल अछि सेहो तऽ अर्थेसँ, जाहिसँ हिनका लोकनिकेँ मान सम्मान भेटैत छनि।
1: जी हाँ, बिहार आओर मिथिलाके ई तऽ प्राचीन रिवाज रहलैए सदासँ, जे अहाँ अपना आब तऽ सब अहाँके जूनियर भऽ गेल, अहीँसँ उम्मीद छै, शुरूसँ तऽ अहाँ वृद्ध सेवा केनही छथिन,
0: आशा लगले रहै छै,
1: आशा लागल छै, आ ओहो चाहै छथिन जे हम बाल बच्चासँ भेटऽ जाइ, नाति नातिनसँ, पोता पोतीसँ, तऽ किछु सौगातो लऽ कऽ जाइ।
0: ठीके कहलहुँ।
1: आओर से प्रयास ओ करै छथिन, आ से यदि ओ कोइ आवश्यकताके पूर्ति नहि होइ छै तऽ हुनका बहुत कष्ट होइ छनि जे हम आइ एहि लायक नहि रहि गेलहुँ, कमाइ लायक तऽ रहबे नहि करै छथिन ओ तऽ,
0: कारण जे शरीर अस्वस्थ भऽ जाइ छनि,
1: शरीर
0: आँखिसँ कम देखबामे अबै छनि, हाथ थरथरा लगै छनि, तऽ ई सब जे नाना प्रकारके रोग व्याधि बुजुर्गा अवस्थामे सेहो ग्रसित करऽ लगैत अछि, एकटा कारण होइ छै। एहन परिस्थितिमे सबके सहयोगक आवश्यकता उपेक्षाके,
1: एहन परिस्थिति होइ छै जे आब ओ कतै जे जेबो करतथिन तऽ बिना एकटा सहयोगीके नहि जा सकै छथिन, आब जे सहयोग जे करतनि कोनो सवारिये पर लऽ जेतनि, हाथे पकड़ि कऽ लऽ जेतनि, सेहो तऽ आर्थिक युग छै।
0: ठीके कहलहुँ हँ, ओहू लेल तऽ द्रव्य चाही, पाइए चाही, रुपये चाही,
1: सहज काम नहि करऽ लायक रहि गेलथिन, शरीरके चलाबऽ लेल या रीति रिवाजके पालन करऽके लेल अत्यंत आवश्यक छै। जे
0: अपने बड़ नीक जकाँ बुजुर्ग लोकनिक लेल जे अपन विचार ओ देलियनि, आ पेंशनके बड़ महत्व अछि एहि अवस्थामे, तऽ एहि गप पर सब गोटे ध्यान दी। जे गोटे पेंशन पबैत छी सरकारी योजनासँ ओ तऽ बड़ नीक, जे नहि पबैत छी ओहो लोकनि जागरूक भऽ कऽ एहिसँ लाभ उठाबै।
2: उगना भाई, एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ वायु ध्वनियाङ्कन पर आधारित एकटा भेंटवार्ता, बुजुर्गों के लिए पेंशन का महत्व। भेंटवार्ता कर छला सूर्य नारायण यादव, हुनकासँ भेंट कऽ रहल छला शंकर कुमार चौधरी। तो आब हमरा लोग सुनै छी एकटा नचारी भोला बाबा के स्वर छन केदारनाथ कुमार के, सुनल जानकर सुनल।

0: एखन हमरा लोकनि केदारनाथ कुमारके गाओल बड़ नीक ई नचारी सुनलहुँ आ आब सुनैत छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद तऽ सुनल जाए
1: बुनियाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

कैसे हैं बिहार और झारखंड वालों, एक बार फिर से आपका दोस्त राजेश आ गया आप सबों के बीच में। सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर हाँ आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं, नंबर नोट करें 1800 121 0051 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एडुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एडुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। हाँ, उन्होंने डाल्टेनगंज से मोहन यादव ने लिखा है कि बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड में हाँ क्या क्या अंतर है या दोनों के

0: बारे में एक बार फिर से बताइए, क्योंकि मैं कार्यक्रम सुन रहा था और सुनते सुनते ये जो जवाब था वो निकल गया, हम फॉलो नहीं कर पाए। इसी तरीके से भागलपुर से, पूर्णिया से, हाँ इवन सासाराम से भी हाँ फोन कॉल्स आए हैं इसी तरीके के सवाल के लिए। तो चलिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी, और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एजुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051, 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने 3 नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं, लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए। शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये हॉट केक है। एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआर में स्थित है, और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद

भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, वहां से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावे हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे कैंपस में स्कूल है, जो इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहाँ पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह की सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहां है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन

0: स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह की सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब उन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गई लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहाँ भी रेफर करते हैं और वहाँ जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनी जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अविनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना, पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर, हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800 121 0051 1800 121 0051 और दूसरा नंबर 9431899002, ये नंबर है और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है। आपका इंटरेस्ट किस तरफ है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल हाँ पढ़ाई वाला हाँ यूनिवर्सिटी है जहाँ 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा

0: एग्रीकल्चर है आप जा सकते हैं, इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप लॉ, फाइव ईयर लॉ कर सकते हैं, इसके अलावे भी लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, आईटी, न जाने कितने कोर्स हैं, बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800120051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: विजय भाई, अखन हमरा लोकन सुनने ही प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद अहिक संग आब हमरा लोकन आजुक जे ई गाम घर कार्यक्रम ओ संपन्न भ रहल अछि। फेर अगला सोम दिन ई कार्यक्रम लऽ कऽ आयब, प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आब खेती गृहस्थीमे स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि के स्वागत करै छियनि। आइ हिनका लोकनिक लेल लऽ कऽ आयल छियनि एकटा लोकगीत, एकर संगे एकटा भेंट वार्ता सुनब मिश्रित मत्स्य पालन प्रसंग में, एकर संगे मौसम संबंधी जे जनतब ओ देवन स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के। मुदा आई सब से पहिने किछ दू टप्पी कऽ लै छी। विजय भाई, हमरा लोकन जे खेती करै छी ताहि मे जल प्रबंधन हेबाक चाही, ओहि लेल पटौनी जे हमरा लोकनि करै छी तऽ ओ वैज्ञानिक विधिसँ करबाक चाही। एकर सङ्गहि पटौनीमे पानिके जे मात्रा दैत छी ओहिपर ध्यान देबाक चाही, कारण नहि बड़ बेसी पटौनी करबाक चाही आ नहि कम करबाक चाही। कारण जो बड़ बेसी पटौनी करै छी फसलमे पानिके मात्रा आवश्यकतासँ बेसी पड़ैत अछि तऽ ओ प्रतिकूल होइत अछि। तऽ तैँ अनुकूल होयबाक लेल से एकर सङ्गहि इहो ध्यान राखी जे हमरा लोकनि पटौनी कखन आ कतेक करै छी।
3: एकदम निगप कऽ रहल छी अपने।
2: तऽ इहो ध्यान राखी जे पटौनी जहन ई बुझबामे आबे जे खेतमे नमी नहि अछि तखन पटौनी करबाक चाही। एहिके लेल एकटा साधारण स्नेहि किसान श्रोता भाइ बहिन लोकनि अपनेसँ बुझि सकैत छथि क्रिया कऽ कऽ जे पटौनीके एखन आवश्यकता छै कि नहि। जो आवश्यकता छै तऽ बुझू जे आब एकरा पटौनी करबाक चाही। जेना खेतसँ एकठामसँ जतऽ नमी बुझाय ओतऽसँ माटिके हाथमे लऽ कऽ गोला बनेबाक चाही। ई देखिए जे जो गोला बनि जाइत अछि नीक जकाँ तरहत्थीपर जे गोला बनबै छी माटिके, तऽ बुझियै जे एकरामे नमी छै, एखन पटौनी नहियो करबै तऽ काज चलत। मुदा जो ई देखिए जे माटिके गोला तरहत्थीपर नहि बनि रहल अछि, एकर मतलब छै जे ओहि माटिमे नमी नहि छै, तखन बुझिए जे पटौनीके आवश्यकता अछि। एहि तरहें सामान्य रूपसँ हमरा लोकनि बुझि सकैत छी जे पटौनीके आवश्यकता अछि तखन पटौनी करियै। आब भेल जे एकर कतेक करियै, ई मात्रा भेल तऽ कहबे केलहुँ जे आवश्यकता अनुसार करबाक चाही।
3: बड़ नीक गप कहलियै उगना भाइ। देखियौ उगना भाइ, जे ई जे अछि अपनेके जे गप कहि रहल छलियै एकरा कखन करी पटौनीके, तऽ सुबहमे 5-8 बजे या साँझमे 6-8 बजे धरि पानि दिएमे, दोपहरियामे सिंचाइ नहि करी दोपहरमे, किएक तऽ
2: पटौनी करबाक बेर भेल तऽ कखन करी। हाँ,
3: तऽ ई जे छै से धूपसँ एकरा जे छै धूपमे दोपहरमे नहि करबाक चाही, किएक तऽ धूपसँ पानि जल्दी उड़ि जाइत अछि,

0: आ एकर जे फसिलक जे अवस्था होइत अछि, एकर बीज अंकुरण, एकर फूल अयला पर की होइ छै तब दाना भरैत समय नमी नहि धरैत अछि ओकर, आ एकर माटिक जे प्रकार होइत अछि रेतीली माटिमे पानि जल्द सुखैत अछि, एहि लेल जल्द सँ जल्द एकरा सिंचाइ करी हमरा लोकनि।
1: ठीके कहलहुँ। एकर सङ्गे सिंचाइ जो करैत छी जकरा हमरा लोकनि पटौनी कहै छी,
0: हँ हँ,
1: तऽ पटौनी जे करैत छी तऽ ओकर जे विधि अछि, ओकर जे प्रकार अछि, तकरा अपनेबाक चाही, जकर अनुशंसा वैज्ञानिक लोकनि, जे कृषि वैज्ञानिक लोकनि छथि, ओ लोकनि कयलनि अछि। एहिसँ पानिके बचत होइत अछि, पानि निश्चित ठामपर पहुँचैत अछि, तऽ एहिसबपर ध्यान दी। फेर बेर रहत तऽ गपशप करब, मुदा आप पहिने
0: किछु रमन चमन कऽ लै छी की देख रहल छी। उगना भाई अपने मने गीत सुनै लेल व्यग्र भेल छी,
1: तऽ सुनल
0: सुनी हमरा लोकनि अरविन्द कुमार झाके स्वरमे ई नचारी।

0: उना भाई एखन हमरा लोकन अरविंद कुमार झा के स्वर में ई भोला बाबा के नचारी सुन रहल छन। आशा अछि जे श्रोता लोकन के जरूर निक लागल हेतन। तो आब हमरा लोकन सुनै छी एकटा भेंट वार्ता मिश्रित मत्स्य पालन। भेंट वार्ता कर छथि मंगलानंद झा, उनका सब भेंट कर रहल छथि अनिल कुमार कर।
1: तो सुनल जाए दुनू गोटा के बीच भेल ई गप सब,
0: सुनल जाए।
2: किसान भाई लोकन, आई खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आई आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर मंगलानंद झा। अपने वरीय वैज्ञानिक छी, एसके चौधरी शिक्षा न्यास द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चैनपुरा बसेठ, जे जिला मधुबनी अंतर्गत है। डॉक्टर मंगलानंद झा जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, संगे अपने के नमस्कार।
3: अपनों के नमस्कार अनिल जी।
2: हम आए अपने से गप करब जे कोनो काज के जखन आधारभूत प्रक्रिया संपन्न भ जाइए तो ओकर बाद वो आगू काज बढ़ाव के लेल अहाँ कह सकै छी जे वो काज आरंभ कैल जा सकैए। पुरना पोखर के देखभाल केला के उपरांत नीक जकां व्यवस्था भ गेल तो किसान भाई लोकन के, माछ पालक भाई लोकन के मन में आशंका रहै छन जे माछ पालन कोना करी। ओना तो ई काज पारंपरिक ढंग से बहुत वर्ष से लोग कर रहल अछि, मुदा एकर वैज्ञानिक विधि की अछि जाहि से बेसी लाभ भेट सके। हम सब मिश्रित मत्स्य पालन के संदर्भ में बहुत रास सुनने छी, मुदा डॉक्टर साहब हम आइ अहाँ से जानना चाहब जे हमर किसान बंधु छथि, माछ पालक भाई लोकनि छथि, जानना चाहे छथि जे मिश्रित मत्स्य पालन की अछि, एहि संदर्भ में कहल जाए।
3: अनिल जी, मिश्रित मत्स्य पालन छै जे अपन देसी किस्म के जे माछ छै, जाहिमे कतला छै, रेहू छै, मृगल छै। कतला के हम सब भाकुर कहै छी अपना भाषा में, रोहू माछ कहै छी, नैनी माछ कहै छी, जे अपन पुरान अपन एहिठमन का प्रजाति अछि। विदेशी जे छै अहाँ के किस्म छै, जाहिमे कि अहाँ के सिल्वर कार्प छै, ग्रास कार्प छै, कॉमन कार्प छै, जे चाइनीज किस्म छै। छओ के यदि हमसब मिश्र एक जगह मिश्रित करै छी तकरे हमसब मिश्रित मछली पालन कहै छी। मिश्रित मछली पालन केला से एहि दुआरे फायदा छै जे तालाब के अंदर में खाना के तीनटा लेयर छै, एकटा ऊपर के छै, एकटा मध्य के छै, एकटा नीचा के छै। तें भिन्न भिन्न स्तर में रहो वाला मछली जे भिन्न भिन्न स्तर में रहै छै, तकरा में यदि एक जगह यदि हम मिश्रित करै छियै तो तीनू लेयर के मछली यदि तालाब में डालै छियै, ओही किस्म के मछली, जेना अपन कतला छै, भाकुर जकरा कहै छै, से ऊपर से खाना लै छै, सिल्वर कार्प सेहो ऊपर से खाना लै छै, रोहू अहाँ के मध्य सिरा से खाना लै छै, कॉमन कार्प छै, नैनी छै, नीचा से खाना लै छै, एकरा बाद में ग्रास कार्प छै, तो ग्रास कार्प जे छै से ग्रास कार्प लै छै अहाँ के तालाब के अंदर में, जे लोग अलग से ओकरा पौधा दै छै, एहन चीज दै छै जैसे कि ओकरा भोजन भेटे, नै अंत में होइ छै तऽ किछु कुम्भियो जल कुम्भी घेरा लगा कऽ दऽ दै छै जे ओकरा भोजन भेटैत रहै। भोजन नै के लेल अहाँ के घर में जते किचन के जे पदार्थ है, जे साग सब्जी कटलहुँ है, ओकर जे किछु डस्ट छै ओहो ई तालाब में अहाँ देल जा सकै छै, जे ओकरा जे दऽ देलियै घेरा के अंदर में तो ग्रास कार्प अहाँ के खेतै। तैं मछली में एक दोसर के खाना के लेल कतौ प्रतिस्पर्धा नै होइ छै। आ तालाब के हल लेयर में जे खाद्य पदार्थ छै से माछ के भेटै छै, आओर सम्पूर्ण जे माछ के अपना तालाब के अंदर में जे तीनू लेयर में जे दोहन छै से मछली पालन के लेल जतेक छै अपन उर्वरक छै, खाद उर्वरक हम देलियै जे तीनू लेवल में यदि आबि गेलै तऽ लेला के बाद में ओहिसँ वृहत हमरा आमदनी हमरा भेटैए, एक दोसर सँ प्रतिस्पर्धा नहि छै। आ ओहिमे तीनू लेयर यदि पड़ि गेलाके बाद में तीनू लेयर के माछ पड़ि जेतै तऽ एक दोसर के आपस में रगड़ा झगड़ा

0: भोजन के लेल नहीं होइ छै, माछ में बेसी वृद्धि होइ छै, तैं हमसब ई मछली पालन हमसब करै छी।
1: तो ई जे मिश्रित माछ पालन होइए, एहि लेल पोखर के जे संरचना हेबाक चाही वैज्ञानिक रूप से तकनीकी रूप से ई केहन हेबाक चाही एहि संबंध में कहल जाए।
0: एहि के लेल तब तालाब के पहले जीर्णोद्धार कर लूँ, जते खाऊ मछली छै तकरा निकालि दियौ, निकालना के बाद में जते खर पतवार छै तकरा अहाँके नियंत्रण कऽ लिअ, नियंत्रण केला के बाद में एहिमे जीरा यदि डालै छै, छोट जीरा यदि किस्म छै तऽ ओकरा 8,000 से 10,000 डालू, नम्हर यदि अहाँके किस्म अछि जाहिमे साइज यदि ओकर भऽ गेलै 4 इंची के यदि साइज छै, 3 से 4 इंची के जे साइज छै तकरा मात्र 55 से डालल जाइ छै, जे कट्ठा में मानि के चलू 1 से 10 ओहिसँ बेसी अहाँ नहि डालू। डाललासँ अहाँके आगा आबके बाद में चूँकि हम छोट साइज के माछ के जे एहि दुआरे किछु बढ़ा कऽ देल जाइ छै जे मोर्टिलिटी कनिक बेसी होइ छै, नम्हर साइज जखने हेतै ताहिमे मरण किछु कम होइ छै, तैं 55 से मे हमसब आशा करै छी जे 55 से हमर 3 इंची से 4 इंची के साइज के यदि मछली डालबै तऽ 55 से हमर जिंदा रहत। एहिमे दुनू तरहक प्लांकटन पायल जाइ छै, सूर्य के उपस्थित सँ जे पौधा जे छै स्वतः फोटोसिंथेसिस के क्रिया सँ से जंतु प्लवक अहाँ के बनै छै, पौधा जगत के सेहो वनस्पति जगत के प्लवक बनै छै, आ जंतु जगत के पबैत नीचा में जे मिट्टी छै ओहि सँ जे बहुत सारा जे पदार्थ छै ओ सड़ि गेल के जे छै ओहि सँ जंतु जगत के प्लवक बनै छै, जे दुनू प्लवक अपन मछली खाइए, जे कतला ऊपर सँ छै तऽ ऊपर सँ ओकरा कनि प्रारंभिक स्तर में ओ भोजन करै छै, जंतु प्लवक खाइ छै, नैनी खाइ छै अहाँके नीचा सँ लै छै तऽ ओ जंतु प्लवक खायत, आ वनस्पति प्लवक सेहो खायत, रेहू मुस्कुल सँ प्लवक खाइ छै, जंतु ये वनस्पति प्लवक खाइ छै, तैं जे छै से एकर सामंजस्य एहि ढंग के बनायल जाइ छै जे हमरा तालाब में गोबर यदि हम दै छियै तऽ गोबर देला के बाद में जे 10,000 किलोग्राम गोबर पहिल किस्त में देल जाइ छै, जँ अहाँ के पास में गोबर नहि अछि तऽ नया नया तकनीक अहाँ के लिए जे अपना सबके बांस के बीच में जे करची अबै छै बैम्बू स्टिक एकरा हमसब कहै छै, एकरा छोट छोट टुकड़ा में काटि कऽ या जाहि ठमन मिल अखन चलै छै शुगर किन मिल चलै छै या अहाँ गुड़े पेड़ आबै छै तऽ ओकरा हमसब शुगर केन बगास कहै छियै, एकरो या अहाँ के पतोई छै ओहो सारा चीज के यदि लऽ कऽ बंठल डंठल बना बना कऽ यदि अहाँ दऽ दिए 250 से 300 क्विंटल एकरा हर 3 महीना 4 महीना के अंदर में यदि देबै तऽ इससे प्लवक बननाइ क्राई बनतै, काई बनला के बाद में पौधा के जे जंतु जगत के वनस्पति जगत के प्लवक छै सेहो बनतै, जंतु जगत के प्लवक सेहो बनतै, अहाँ के मछली के भोजन बढ़िया भेटतै, एकरा विस्तार से मछली भोजन करत आ मछली के बढ़वार बेहतर हेतै।
1: संगे संग ई जे मिश्रित माछ पालन होइए तो एहिमे जे 6 प्रजाति के अपने जीरा दै लेल कहलियै तो एकर अनुपात की होइ छै प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जँ विचार कयल जाए तो कोन माछक जीरा कतेक अनुपात में देबाक चाही, माने किलोग्राम के हिसाब से अनुपात में किसान भाई लोकन के कह दियौ।
0: अहाँ के यदि संख्या में यदि अहाँ डालै छियै तो एकर रेशियो हमसब 1:1 में रखै छियै, ई 3 प्रजाति छै, ई तो उपलब्धता के आधार पर छै, मानि लिअ ई 6 किस्म उपलब्ध रहै छै, 3 अपन यदि देसी किस्म उपलब्ध है कतला ए रेहू ए मृगल ए तो ऊपर के लेवल वाला के कतला 40%, रेहू अहाँ के 30%, मृगल अहाँ के 30% हमसब डलवाबै छियै अहाँ किसान के भाई के डालक चाहिए। यदि 4 प्रजाति के अछि तो सिल्वर कार्प कॉमन कार्प और यहाँ के 4 प्रजाति के अछि, एहिमे कतला जे छै से कतला यहाँ के 20% अहाँ के कतला डालू, 30% अहाँ के नैनी डालू आ फिर अहाँ के 30% जे बच जाए छै से अहाँ के डालऽ पड़त नैनी कॉमन कार्प डालू आ ओकरा बाद में अहाँ के जे बच जाइए तो ई अहाँ के सिल्वर कार्प जे छै सेहो ऊपर से खाना लै छै, 20% सिल्वर कार्प अहाँ सेहो लो डालि सकै छी। 6 प्रजाति के यदि छै ताहिमे हमसब डालै छियै 15% डालै छियै अहाँ के कतला रेहू डालै छियै 20% आ कॉमन कार्प जकरा करै छियै से 20% बाकी चारू मछली के अहाँ के 15% के यदि 15 के संख्या में यदि हम डालि देबै तो एकर मिश्रण समुचित वैज्ञानिक अनुपात में मिश्रण भऽ जाइ छै, कोनो तरहक प्रतिस्पर्धा नहि बढ़ै छै, तालाब के अंदर में दोहन जे छै से पूर्ण रूप से जते खाद्य पदार्थ छै तकर हमरा दोहन भऽ सकैए, दोहन भेला के बाद में

0: हमरा माछ के बर्बाद अहाँ के बेहतर हेतै।
1: एहन देखल जाय छै वा सुनलो जाय छै वा कहि सकै छी जे जानकारी लोक के भेटलै ने जे माछक उत्पादन जे प्रति हेक्टेयर अपना सभक ठाम अछि, खास कऽ मिथिलांचल में वा अपन प्रांत में जँ गप करी, आन प्रांत के अपेक्षा एकर उत्पादन अपना सब ठाम कम होइए, तऽ एकर कारण की छै आ एकर निदान की छै एहि संदर्भ में कहल जाय?
0: पहिल बात छै जे हमसब खाद और उर्वरक मिश्रित मछली पालन यदि करबै तऽ ओकरा पर्याप्त रूप में भोजन चाही। भोजन यदि अहाँ गोबर डाललिए, गोबर डालना के बाद में सबसे पहले हम सब देखे छिए जे एकरा अंदर में प्लवक कतेक बनले, तो अइ के लेल हम किसान भाई के कहबन जे अपन हाथ डालिए, अपन हाथ पानी के अंदर में डालू, एकटा हाथ अपन डालू, अपन अंगुली के एना के उठाऊ, जो अंगुली के अहाँ के देखे में आबि गेल तो एकर मतलब भेले जतेक पारदर्शिता रहते, एकर मतलब होइ छै जे एतेक माछ के खाना कम छै। यदि गोबर डाललो के बाद में एतेक अहाँ के उत्पादन बेसी से बेसी लेबक चाही तो खाद संगे अहाँ के उर्वरक से हो अहाँ के डाल पड़त। अइ के लेल 30 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 25 किलोग्राम अहाँ यूरिया डाल सकै छी प्रति महीना के डर से। दोसर बात छै जे अहाँ के सिंगल सुपर फॉस्फेट छै, ओकरा बाद में एक डाई सुपर सिंगल सुपर फॉस्फेट अहाँ 12-15 किलोग्राम अहाँ डाल सकै छी, या ट्राई सुपर फॉस्फेट छै तकरा अहाँ 8-10 किलोग्राम अहाँ एकरा डाल सकै छी। जाहि में देखै छी जे पोटास के यदि कमी छै तो पोटासो के अनुशंसा अहाँ के 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से माहवारी एकरा डालू। चूना निश्चित रूप से हर महीना में चूना डालू, चूना अहाँ के 20-25 किलोग्राम चूना हर महीना में यदि अहाँ छिटाव करबै तो अहाँ के उत्पादन बेसी हैत। एक क्विंटल चूना अहाँ जीरा डाल से 15 दिन पहले डालू, ओकरा बाद में दोनों के अंतर कर लिया जे गोबर डाललिए तो गोबर के यदि चूना पहले फिर अगला महीना में चूना यदि डाले छे तो चूना डाला के बाद में गोबर यदि डालनों तो गोबर के दोनों के बीच में अहाँ के कम से कम 10 दिन के अंतर जरूर होबक चाहिए, तखने अहाँ के पर्याप्त मात्रा में प्लांकटन बनते और प्लांकटन बनला के बाद में जंतु प्लांकटन बनते, वनस्पति प्लांकटन बनते, पर्याप्त भोजन भेटते। आ भोजन के बाद में यदि तैयो देखै छी जे प्लांकटन पर्याप्त अहाँ के नहीं भेटल तो परिपूरक आहार के सेहो व्यवस्था छै जे ओकरा यदि हम माछ के देबै तो माछ में विषत व्यवहार हेतै, ओकर वजन के 3-4% एक हेक्टेयर के लेल यदि करै छी तो पहिल महीना में अहाँ के 2-3 किलोग्राम मूंगफली या अहाँ के सरसों राई के खली छै से या चावल के कुंडा छै दोनों के बराबर बराबर मात्रा में यदि बना कर दिए, टोकरी में बना कर दिए, लड्डू जका बना दिए, बनेला के बाद में निश्चित समय निश्चित स्थान पर अहाँ डालियो आ डालना के बाद में अहाँ देखियो भेड़ खाना के उठा लिया, आ नहीं तो होइया जे जूट वाला जे बोरा होइ छै बोरा में छेद क के ओरा लड्डू जका बना कर दियो, छोट छोट गोली बना कर दियो, देखियो जो खा यदि लेलकै, लेकिन कोशिश करू जै समय में डेली दै छी वही समय में दियो, निश्चित समय और निश्चित स्थान पर पानि के लेवल तक यदि अहाँ डाल देलिए, पानि के लेयर में जेना डालल जाइ छै पेंसिल्ला लोग गाड़ी दै छै तहिना ओकरा ओहि लेवल तक ओहिठाम निकलक चाहिए जे माछ ओहिमे छेद छेद कऽ कऽ अहाँके भोजन कऽ लेत। जतबी भोजन करिए ततबी दियौ, अहाँ खाना अहाँ छीट के दे देबै तऽ खाना अहाँके बर्बाद भऽ जायत।
1: तऽ डॉक्टर मंगलानंद झा जी, अपने मिश्रित माछ पालन के संदर्भ में माछ पालक भाई लोकन के बहुत सुंदर आ नीक जानकारी देलियन, ताहि लेल अपने के धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: विजय भाई। एखन हमरा लोकन सुनलहुँ ई भेंटवार्ता मिश्रित मत्स्य पालन आ भेंटवार्ता काज छला मंगलानंद झा, हिनकासँ भेंट कऽ रहल छला अनिल कुमार कर्ण। आ आप स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनिके मौसम संबंधी जनतब दऽ दियौन।
3: हाँ हाँ, ओना भाई देखियौ, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 18 जुलाई से 22 जुलाई 2026 धरिक मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहारक बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, सारण, वैशाली, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिला में 19-20 जुलाई के आसपास मेघ गर्जन, वज्रपात तथा तेज हवा के संग वर्षा होबाक संभावना अछि। एहि जिला के किछु स्थान पर भारी वर्षा हेबाक अनुमान अछि तथा आकाश पूर्णतः मेघ से आच्छादित रहि सकैत अछि। अन्य जिला में हल्लुक से मध्यम वर्षा भऽ सकैत अछि। 20 जुलाई छोड़ि कऽ पूर्वानुमान अवधि के अन्य दिन में हल्का बादल छायल रहि सकैत अछि। एहि अवधि में तापमान बेसी उतार चढ़ावक संग अधिकतम तापमान 23-36 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि। तऽ एहि संग

गाम घर। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित ये कार्यक्रम, और इसी के अंतर्गत आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी भी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले
5: ना,
4: पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़ी है,
5: जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: अरे, मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
9: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, MPR स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, MLC की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा UDID कार्ड दिखाते भी मतदान किया जा सकता है।
8: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
9: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
10: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
11: कोई मतदाता ना छूटे।
12: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
13: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्नि कांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा

0: सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। 87,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। मौसम विभाग ने कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम चंपारण ने खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, यदि दोनों सक्रिय रहें तो वे अत्यंत उत्पादक साबित होते हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। वहीं केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्र के पहले दिन लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। बाद में नीट पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर 1 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्य नीट मुद्दे को लेकर अपना विरोध जताते रहे। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की बात पर ध्यान न देते हुए अपना विरोध जारी रखा।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचकर हंगामा किया। विपक्ष नीट परीक्षा पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। हालांकि इस दौरान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंचे थे। विपक्ष के हंगामे पर उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि यह परंपरा गलत है, सदस्यों को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए।
3: स्वयं हित में जीने वाले लोग कभी बंगला के लिए हट कर

0: हैं, कभी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कब जनहित के मुद्दों को उठाते हैं देखा, और जब भी सदन चलता है नेता विपक्ष गायब रहते हैं। अब इसी से उनके गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए।
1: बाद में मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, विपक्ष कानून को बचाने का काम कर रहा है।
2: नीट पेपर लीक जो मामला हुआ है और कई ऐसे सरकार के द्वारा परीक्षा ली जा रही है जिसकी पेपर लीक हो जा रही है, उसी को उजागर करने के लिए हमारा दल और हमारा गठबंधन ने रोड मार्च कर लिया। नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो भाई वीरेंद्र और अन्य जो भी कार्यकर्ता और नेता है वो तेजस्वी के रूप में काम कर रहे।
1: विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के भाषण और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही चली। इसके बाद कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 87,383 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें राज्य योजना मद में 24,370 करोड़ रुपए की राशि जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है। सत्र के दौरान 10 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। भगवान सोमनाथ धाम की यात्रा के लिए आज 1,100 श्रद्धालु सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र जंक्शन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
3: आज से हजार वर्ष पहले कई आतंकी आए जिसने बिहार उस सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। वो सिर्फ सोमनाथ को नहीं लूटा था, वो तो बिहार की धरती पर आकर इस बिहार का जो गौरवशाली इतिहास था नालंदा को भी जलाने का काम किया था। लेकिन हम भारत के लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने भगवान सोमनाथ को के मंदिर को भी स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी
4: मुख्यमंत्री ने बताया कि गुजरात प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं गुजरात सरकार की ओर से की गई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं की यात्रा, भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना, नई पीढ़ी को अपने इतिहास से परिचित कराना और सनातन परंपरा के प्रति गौरव का भाव जागृत करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रद्धालुओं ने राज्य सरकार के इस पहल की सराहना की।
5: आज हम सभी बिहारवासी बाबा महादेव के दर्शन के लिए सोमनाथ की शुभ यात्रा पर निकल रहे हैं। ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है।
6: जाने का बहुत हम लोग को खुशी मिल रहा है। बाबा सोमनाथ का दर्शन होगा। हर हर महादेव और बिहार सरकार को बहुत बहुत आभार।
7: पहला यात्रा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया, बहुत ही खुशी की बात।
4: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज विधान परिषद में कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप सभी सदस्यों को सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए।
8: नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। हमारा गठबंधन, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार तो सहयोग हमें मिल ही रहा है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि हम लोग विकसित और समृद्ध बिहार न बने।
1: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत।

0: है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सीवान और वैशाली जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी रून्नी सैदपुर में 30 सेंटीमीटर और बेनीबाद में 105 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बालतारा में खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके साथ ही राज्य में झंझारपुर में कमला बलान और महानंदा समेत अन्य नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं मुंगेर जिले में भारी बारिश के कारण क्यूल जमालपुर रेलखंड पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लगभग 2 फीट पानी जमा हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: रेलवे प्रशासन ने इस रेलखंड पर रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। इससे कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर घंटों तक खड़ी रही। इनमें भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभयपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। वहीं जमालपुर चूल DMU को धरारा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जबकि गया जमालपुर पैसेंजर दशतपुर स्टेशन पर घंटों तक खड़ी रही। अचानक रेलगाड़ियों के रुक जाने से कई यात्रियों को आगे की यात्रा प्रभावित हुई, जबकि जरूरी कार्यों से जा रहे लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टेशन परिसर में यात्री ट्रेन परिचालन सामान्य होने का इंतजार करते रहे। बाद में रेलवे प्रशासन ने रेल ट्रैक पर जलस्तर कम होने और सुरक्षा जांच के बाद कुछ रेलगाड़ियों के परिचालन की मंजूरी दी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
0: मुंगेर पोलो मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय 65वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला पश्चिम चंपारण और मुंगेर के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में पश्चिम चंपारण की टीम ने मुंगेर को 0-3 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ पश्चिम चंपारण की टीम अब बेंगलुरु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 20 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया था कि सरकार ने एक मसौदा नियम बनाए हैं। इन नियमों के कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे और केबल तथा DTH शुल्क 4-6 गुना बढ़ जाएंगे। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। समस्तीपुर जिले में पूसा कस्तूरबा विद्यालय की 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार घटना पूसा थाना क्षेत्र के केजिया वार्ड में हुई। मामले की छानबीन की जा रही है। बक्सर जिले के चुरामनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में ऑटो सवार 8 शिक्षक-शिक्षिकाएं घायल हो गए हैं। मधुबनी जिले की पुलिस ने बाबू बरही थाना क्षेत्र से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले में मेहंदिया थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवक के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने के कारण मौत हो गई। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के SI और चौकीदार पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 3 कारतूस, 46 ग्राम बाउंड सुगर, 4 मोबाइल और 1 लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सुपौल जिले के सदर अस्पताल में जिलाधिकारी सावन कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब झा ने संयुक्त रूप से 182 यक्षमा रोगियों के बीच निक्षय पोषण किट वितरित किया। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला क्षेत्र के वाल्मीकि नगर पनियहवा रेल

0: खंड पर आज एक जंगली भालू की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हादसे के कारण करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से सार्थक चर्चा की अपील की। विधानमंडल के मानसून सत्र की आज से शुरुआत। 87,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश। मौसम विभाग ने कैमूर, गोपालगंज, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की। कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिम चंपारण ने जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
7: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
6: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
8: दिशा सूचक इतने स्पष्ट है कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
9: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
10: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
8: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
11: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
12: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
13: नेपाल से लगातार हो रही भारी बारिश से वाल्मीकि नगर बैराज से 2,26,000 क्विलिस पानी छोड़े जाने के कारण सारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी बनी हुई है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 योजना के तहत सारण जिले के 9 प्रखंड तरैया, मकेर, एकमा, दरियापुर, मरहोरा, मसरक, लालहादपुर, पानापुर और इसुपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज का संचालन शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक चरण में चिन्हित सरकारी विद्यालयों के भवनों में कक्षाएं संचालित की जा रही है। साथ ही भवनों की मरम्मत, बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बढ़ौड़ा छपरा पटना के बीच मेमो ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस संबंध में अनुरोध करते हुए कहा है कि इससे छात्रों, नौकरी पेशी लोगों और प्रतिदिन पटना आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
14: और सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का आभार कि आपको इस बड़ी जिम्मेवारी के साथ छपरा की धरती पर, सारण की धरती पर एक ट्रेन के सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत की घोषणा की। मरहौड़ा से लेकर के छपला होकर के पटना के लोगों ने बहुत ट्रेनों की मांग की है, तो एक मेमू चलवाए बहुत अच्छा रहेगा।
13: सारण प्रमंडल के लिए जुलाई 2026 का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण RTA एजेंडा जारी किया गया है। इसमें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर विचार किया जाएगा। दिल्ली के औषधि विभाग से मिली सूचना के आधार पर एकमा प्रखंड के फुटची खुद्र गांव में औषधि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध आयुर्वेदिक दवाएं बरामद की गई है। अधिकारियों ने दवाओं के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं और पूरे स्टॉक को सील कर दिया गया है। और जिले में आयोजित ITT टेबल टेनिस प्रतियोगिता में करीब 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने

0: प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जिले के दो खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
1: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: सिवान जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने और 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाने का विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड निर्माण का विशेष कार्यालय भी बनाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में हर वर्ष 50,000 से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर जिले में अंबेडकर भवन और जिला परिषद सभागार में प्रगणों एवं प्रेक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। 15 से 20 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में घर घर सर्वेक्षण, डिजिटल डेटा संग्रह और सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न सुविधाओं से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं। जिला सदर अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। बीते दिनों अस्पताल में मरीजों की परेशानी और परिसर में कथित दलालों की सक्रियता का मुद्दा सुर्खियों में रहा। लोगों ने व्यवस्था में सुधार और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रबंधन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान भी जारी है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे और पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने लोगों से नशे के कारोबार की सूचना देने पर तथा युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री किसान निधि उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। संबंधित विभागों ने पात्र लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विभिन्न मामलों में जाँच और छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है और जिले में सड़क, जल निकासी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर कई प्रशासनिक बैठक और जनहित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम लोगों की समस्याओं को त्वरित समाधान की बात कही है।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल के कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। सदन में 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। साथ ही 4 अध्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रखी गई। सदन की कार्यवाही जैसे ही प्रारंभ हुई, विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक, कानून व्यवस्था और अपराध जैसे विभिन्न मुद्दों का हवाला देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। राजद के आलोक मेहता और भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितताएं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के समान हैं। कई विपक्षी विधायकों ने उनका समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383.43 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। यह बजट संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत अतिरिक्त खर्च की स्वीकृति के लिए लाया गया है। प्रस्तावित अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा हिस्सा वार्षिक योजनाओं के लिए रखा गया है। इसके अलावा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए लगभग 30,266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 39.48 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से विभिन्न विकास योजनाओं, केंद्र और राज्य की परियोजनाओं के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध खर्चों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस अनुपूरक बजट पर 23 जुलाई को विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके

के बाद इसे पारित कराया जाएगा। उन्होंने विधायकों से कहा कि मानसून सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अनेक विधायी वित्तीय और जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष आएंगे। मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने सदन की आगे की कार्यवाही के संचालन में मदद के लिए 4 अध्याशी सदस्यों को मनोनीत किया। इनमें राम नारायण मंडल, श्याम रजक, आलोक मेहता और ज्योति देवी को शामिल किया गया है। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष खुद इस समिति के सभापति होंगे, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी इसके सदस्य होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, संजीव चौरसिया, मंजीत कुमार, मनोहर सिंह, अख्तरुल ईमान, प्रफुल्ल मांझी,

सदन की आगे की कार्यवाही के संचालन में मदद के लिए 4 अध्याशी सदस्यों को मनोनीत किया। इनमें रामनारायण मंडल, श्याम रजक, आलोक मेहता और ज्योति देवी को शामिल किया गया है। इसके अलावा कार्य मंत्रणा समिति का भी गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष खुद इस समिति के सभापति होंगे, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोजपा विधायक दल के नेता राजू तिवारी इसके सदस्य होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, संजीव चौरसिया, मंजीत कुमार, मनोहर सिंह, अख्तरुल ईमान, प्रफुल्ल मांझी, माधव आनंद, अरुण सिंह, अजय कुमार, इंद्र प्रसाद गुप्ता और सतीश सिंह यादव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 पेश किया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए समपरिवर्तन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखा। इसके अलावा श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनिमयन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026 को पेश किया। सदन ने 8 दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय रामेश्वर पासवान, बागी कुमार वर्मा, माधव लाल सिंह, राम प्रसाद सिंह, अनवर रहमत, अंबिका सिंह, नागेंद्र प्रसाद यादव और हरिराम के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। बिहार विधान परिषद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन बैठक की शुरुआत सभापति अवधेश नारायण सिंह के संबोधन के साथ हुई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत को आज उनके जन्मदिन पर सभापति सहित सभी पार्टी के सदस्यों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। सत्र के लिए अध्यासीन सदस्यों का मनोनयन किया गया, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा गया। सदस्यों ने पूर्व विधायकों और विधान पार्षदों समेत राज्य के गणमान्य लोगों के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार किसानों को विशेष अनुदान दे रही है। सभापति ने कहा कि राज्य सरकार के सौर ऊर्जा संयंत्र योजना को प्रोत्साहन देने के निर्णय का दूरगामी प्रभाव होगा। सभापति ने कहा कि सम्राट चौधरी लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं, वे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। सदन के नेता के तौर पर आज उनका पहला दिन है, उन्हें हम सब की तरफ से बधाई। उन्होंने कहा कि प्रगति के पथ पर राज्य को और आगे ले जाने के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों तक इस सदन के सदस्य रहे। आज मुझे और इस सदन को उनकी अनुपस्थिति खल रही है। सभापति ने वर्तमान सत्र के लिए जदयू के संजीव कुमार सिंह, भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, कांग्रेस के मदन मोहन झा और निर्दलीय महेश्वर सिंह को अध्यासीन सदस्य मनोनीत किया। प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने बिहार विधानमंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियां सदन के पटल पर रखा। बाद में राजद के सुनील कुमार सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को महागठबंधन की ओर से जन्म की बधाई दी। इसके बाद जदयू के नीरज कुमार और रीना यादव, भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव और राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। सदन में पूर्व सांसद और पूर्व विधान पार्षद राम प्रसाद सिंह और अनवर अहमद, पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह और रामेश्वर पासवान, पूर्व विधायक अंबिका सिंह, सैयद गुलाम हुसैन, सतीश कुमार, सियाराम यादव, राधिका देवी, मंसूर आलम, हरिराम, नागेंद्र यादव, बागी कुमार वर्मा और कृषि वैज्ञानिक गोपालजी त्रिवेदी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल

0: बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: नमस्कार।

विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अब सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहाँ चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मिक

इन इंडिया एआई वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को एआई सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत आईटीआई पीएमएसईटीयू योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों, संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंग कीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखराय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में
मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा, कोंगल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश गड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मानसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए

सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में चार दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया। हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार

0: विस्तार किया जाएगा। उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए सुनते हैं मैथिली में संबोधित हमारा कार्यक्रम सिंगरहार।

आ जखन अपना सब भाषा के गप करै छी त अही से जुड़ल क्याक ने ई गीत सुनै छी कृष्णानंद मिश्रक स्वर में, त सुनी ई गीत।

हाँ, तो अखन अपना सब कृष्णानंद मिश्रक स्वर में एक गीत सुनैत रही। वास्तव में अपन गाम के अपन माटि

0: दिनसँ जखन अपनासभ दूर होइ छी तऽ बड्ड अखरैए। मिथिलाक माटि पानि आ बोलीवाणीमे अद्भुत क्षमता अछि जे एकर प्रभाव आ आकर्षणसँ दूर नहि भऽ पबैत छी। भाषाक जानकारीके ई स्पष्ट आ सरल बनबैत अछि आ सभ गोटाके एक दोसरक सङ्ग जुड़बाक काज करैत अछि। पत्र पत्रिकाके भाषा सरल आ स्पष्ट रहबाक कारणे सभ गोटाके आसानीसँ बुझि जाइत छी। आब इहो कहब, जखन अपनासभ भाषाके ज्ञान नहि रहैत अछि तऽ जखन कोनो दोसर ठाम जाइ छी, कोनो दोसर क्षेत्रमे जाइ छी, तऽ हुनकर मुँहे अपनासभ देखैत रहै छनि ई बजलखिन की, बुझबाक प्रयास करैत रहै छी आ जिज्ञासा रहैए जे ई केना बाजल जाए। तऽ कोनो सभ भाषाके अपन अपन स्थान आ महत्व अछि आ सभ भाषा सिखबाक जिज्ञासा सेहो रहैत अछि जे केना हमसभ बाजी। तऽ कोनो समाज अपन भाषा आ संस्कृतिके बले उन्नत मानल गेल अछि। ई देखल गेल अछि जाहिठाम भाषाक आधार मानल गेल ओतुका भाषा आ संस्कृतिके विकास बेसी भेल अछि। भाषा व्यवहारक साधन होइत अछि। कोनो क्षेत्रक सभ्यता संस्कृति ओकर अतीतक गुण गौरव आ ओकर भाषापर निर्भर होइत अछि। श्रोतागण, जखन कखनो एक ठाम चलि जाइत छी, एक दोसरक भाषा नहि बुझि पबैत छी तऽ हुनकासँ जुड़ि नहि पबैत छी। कहै छथिन जे हिनकर तऽ बोली वाणी हमरा बुझिए नहि आबि रहल अछि, बुझबनि तखन हुनकासँ मोनसँ जुड़बनि। तऽ इएह अछि अपन सबके भावनाक अभिव्यक्ति। तऽ भाषा बुझऽमे अबैत अछि तखने कतबो नीक गीत हुए, तऽ गीतो जे सुनबै तऽ अपनासभ नहि बुझि पबैत छी। तऽ आब अपनासभ कार्यक्रममे जखन नैना लोकनिके जखन अपनासभ जोड़ै छियनि, हुनका बुझबै छियनि कोनो भाषाके विषयमे, तऽ कतेक रास बाल साहित्य लिखल गेल जाहिसँ कि बच्चासभके बुझाओल गेल जे ई अहाँ सबके लेल अछि। हुनकामे धैर्य, हुनकामे विश्वास, साहस जुड़ल गेल। कोनो साहित्यक विकास ओहि भाषा साहित्यमे प्रकाशित होइवला पत्र पत्रिकापर निर्भर होइत रहल अछि। जाहि क्षेत्रक लोक जतेक सजग छथि ओहि क्षेत्रक साहित्यक विकास ओते तीव्र गतिसँ होइए आ ओहि क्षेत्रक विकाससँ ई होइए जे जतेक नैना लोकनि सब छथि ओ नैना लोकनिके जिज्ञासा बढ़ायल जाइत अछि। बेर बेर हुनका बुझाओल जाइत अछि ई पोथीमे अहीँ लेल लिखल गेल खिस्सा सब अछि। तऽ खिस्सा पिहानी भेल, कविता भेल, नाटक भेल, जकर उद्देश्य ई होइत अछि जे बच्चा सबके मनोरंजनक सङ्ग सङ्ग हुनका ज्ञान प्रदान कयल जाय। एहिसँ हुनका प्रेरणा भेटनि, नेनपनेसँ अपन भाषाके प्रति जागरूक करैत अछि ई बाल साहित्य। अपन संस्कृति आ लोक कलासँ हुनका जोड़ल जाइत अछि जाहिसँ कि हुनकर जे हुनका बुझऽमे अबनि जे अपन सबके जे समृद्ध परम्परा अछि की अछि, हुनका अपन बाल साहित्यसँ बुझेबाक प्रयास करै छी। तऽ आब कार्यक्रममे अपनो सब सुनी ई वार्ता मैथिली बाल साहित्य, जकरा फरचा कऽ अपना सब सुनै छी। वार्ताकार छथि डॉक्टर योगानंद झा।
1: नैना भुटकाके लिखित साहित्य थिक बाल साहित्य। मैथिली में एकर प्रारंभिक स्वरूप सुत परम्पराक लोक कथा ओ क्रीड़ा गीत सब में भेटैत अछि। मैथिली बाल साहित्यक पुस्तकाकार प्रकाशन के गतिशीलता प्रदान करबाक श्रेय साहित्य अकादमी के जाइत छैक। वर्ष 2010 सँ ई राष्ट्रीय संस्था प्रत्येक स्वीकृत भाषाक उत्कृष्ट बाल साहित्यों के पुरस्कृत करब आरंभ कयलक। परिणामतः एहू साहित्य के मौलिके साहित्य जकाँ प्रतिष्ठा प्राप्त भेलैक आ कवि लेखक लोकनि एकर प्रणयन प्रकाशन दिस सविशेष रुचि लेबय लगलाह। वर्ष 2020 धरि साहित्य अकादमी 11 गोट मैथिली बाल साहित्यक पोथी के पुरस्कृत कऽ चुकल अछि, जाहिमे 2 गोट कविता संग्रह, 5 गोट कथा पोथी, 2 गोट उपन्यास आ 1-1 गोट क्रमशः निबंध संकलन आ जीवनी संग्रह प्रभेदक अछि। विभिन्न विधाक ई प्रतिनिधि बाल साहित्य सब मैथिलीमे एहि साहित्यक विकास मार्गक हेतु स्वस्तिदायक अछि। वर्ष 2010 मे मैथिली साहित्यक समर्थ कवि, कथाकार ओ समालोचक श्री तारानंद वियोगीकेँ हुनक पोथी ई भेटल तऽ की भेटल हेतु साहित्य अकादमीक बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त भेलनि। एहिमे 1 गोट उपनिषद कथा अछि। आकर्षक आवरण ओ प्रसंगानुसार चित्रावलीसँ समन्वित ई पोथी बाल मनकेँ सहजहि आकृष्ट करबा योग्य अछि। एकर भाषा सरल, वाक्य सब छोट छोट, ओ कथोपकथन सब सेहो बाल रुचिक अनुरूप अछि। कथाक माध्यमे अपनत्वक भाव

ज्ञानक महत्ता, ईश्वरक सर्वव्यापकता, ज्ञान प्राप्तिक उपाय, वनस्पतिक महत्व आदि विषय तथा परोपकार, निर्मलता, श्रमशीलता, धैर्य आदि मानवीय गुणक परिचयक संगहि ऋष्या, अभिमान, परनिंदा आदि अवगुणक प्रति घृणाक भाव जगाओल गेल अछि से सहज भावे कथा वस्तुहिक माध्यमे। तें ई पोथी नेना लोकनिक चरित्र विकासक दृष्टिये महत्वपूर्ण अछि। वर्ष 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल मायानाथ झा द्वारा प्रणीत बाल लोककथा संग्रह जकर नारी चतुर होई पोथी पुरस्कृत भेल। एहि में श्रुत परम्परा सँ लोक जीवन में व्याप्त 21 गोट कथा संकलित अछि। एहन कथा सब नेना लोकन के मनोरंजनार्थ किंबा उपदेश प्रदान करबाक दृष्टिये दादी नानी लोकनिक द्वारा सुनाओल जाइत रहल अछि। श्रुत परम्परा की कथा सब बालमन द्वारा सहज ग्राह्य रहल अछि। लेखक श्रुत परम्परा के एहि कथा सबके लेखन परम्परा में आनि संरक्षित करबाक श्लाघनीय कार्य कयलनि अछि। सहसा विदधित न क्रियाम, जकर नारी चतुर होइ, साहसी फुद्दी, उपाय अपाय आदि कथा सर्वथा उत्कृष्ट बाल कथा सब थिक, जे नेना लोकन के सहजतापूर्वक कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान करबैत छनि आ श्रमक महत्व सँ अवगत करबैत छनि। पिलपिलहा गाछ कथाकार ओ समालोचक श्री मुरलीधर झाक बाल कथा संग्रह थिकनि, जकरा 2012 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार सँ समलंकृत कयल गेलैक। आकर्षक आवरण ओ चित्रावली सँ युक्त एहि पोथी में 21 गोट बाल कथा अनुसूचित भेल अछि। ठक, दुष्ट खिखिर आ स्नेहक सिंदूर लोक कथा परक अछि। शेष 18 गोट कथा आदर्श बाल कथाक नमूना थिक, जाहि सब में बाल मानस में तनाव उत्पन्न केनिहार, अकर्तव्यताक निषेध, कर्तव्यताक आदेश किंबा नैतिकताक उपदेश देवाक बलात् चेष्टाक स्थान में घटित घटना, पात्रक स्वभाव ओ चरित्र अथवा आचरण ओ परिवेश निर्माणक माध्यमे अनायास सहज रीत सँ सद्भावना, सत्प्रेरणाक संदेश बाल मन के गृहित करयबाक प्रयास भेल अछि। नेना लोकनिक ग्रहण शक्ति ओ प्रभावक बीच एहि कथा सब में संतुलन दृष्टिगोचर होइत अछि। रोचकता, उक्ति चातुर्य, यथार्थपरक परिवेश निर्माण, रुचिक परिष्कार आदिक दृष्टिये लेखक सतत बाल मनक संग तादात्म्य स्थापित कयने देखि पड़ैत छथि। प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार झा रचित हमरा बीच विज्ञान पोथी के वर्ष 2013 बाल पुरस्कार प्रदान कयल गेलैक। ई निबंध ग्रंथ थिक। एहि में 43 गोट निबंध संकलित अछि। आकाशवाणी वार्ताक रूप में प्रसारित एहि निबंध सब में किछु हिंदियो सँ अनुदित अछि। डॉक्टर सीवी रमन सँ संबंधित 3 गोट और डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर सँ संबंधित 1 गोट निबंध जीवनी परक अछि। अन्य निबंध सब आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति सँ सम्बद्ध विषय वस्तुक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत कयने अछि, जथा टेलीविजन, ग्रह उपग्रह, संचार साधन, परमाणु युद्ध, रोबोट, ध्वनि प्रदूषण, कंप्यूटर, अग्नि प्रक्षेपास्त्र, रेडियो, टेलीफोन, पर्यावरण प्रदूषण आदि। निबंध सभक भाषा ओ प्रस्तुति युवा ओ प्रबुद्ध पाठकक अनुकूल अछि, तथापि पोथी बाल मन के वैज्ञानिक विषय सभक प्रति औत्सुक्य जगयबाक ओ विज्ञानक अध्ययन दिस उन्मुख करयबाक दृष्टिये महत्वपूर्ण अछि। प्रख्यात ओ बहुआयामी रचनाकार जीवकांत जी विभिन्न विधा में पुष्कल रचना के आजीवन मैथिलीक भंडार के भरित रहला। बाल साहित्यक रचना में सेहो ई प्रवीण छलाह, खास कऽ पद्य विधा में मुक्तक कविता ओ पद्य कथाक रूप में। ई विभिन्न आयु वर्गक नेना लोकनिक हेतु सुनियोजित ढंग सँ बाल साहित्यक रचना कयलनि। हिनक बाल साहित्यक किछु पोथी सब अछि गाछ झूल झूल, छाह सुहावन, अधरतिया में चान, बोकी धरती माता, खिखिरक बियर, हमर अठन्नी खसले वन में आदि। हमर अठन्नी खसले वन में के साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2014 सँ समलंकृत कयल गेलैक। जीवकांत जीक बाल कविता सब बाल मनक गार्ज्यताक अनुरूप रचल गेल अछि, जाहि में मनोरंजकताक संग विविध सांसारिक विषय वस्तु सँ नेना के परिचय करयबाक उल्लासपूर्ण आयोजन छैक। अंत्यानुप्रास सम्बलित हिनक बाल कविता सब अनायासे बाल वर्गक चतुर्दिक परिवेशक सुष्ठु ओ आकर्षक वर्णन प्रस्तुत करैत अछि, जे नेना लोकनिक क्रमिक बौद्धिक विकास में सहायक अछि। वर्ष 2015 बाल साहित्य पुरस्कार मैथिलीक निविष्ट विद्वान ओ बहुआयामी रचनाकार डॉक्टर रामदेव झा के हुनक बाल उपन्यास हसनी पान बजंता सुपारी हेतु प्राप्त भेलनि। हसनी पान बजंता सुपारी में
कथा उपकथाक ततेक सुंदर संयोजन होइत चल गेल अछि

जे बाल मन के मुग्ध कयने रहित अछि। एकर भाषा ओ परिवेश वर्णन बाल मनक अनुकूल, वाक्य विन्यास छोट छोट एवं शब्दावली लोक प्रचलित राखल गेल अछि। पात्रक चरित्र ओ आचरण तथा घटनावलीक माध्यमे लेखक नेना लोकनिमे श्रमशीलता, अभय, निर्लोभता, साहस, धैर्य, ईमानदारी, दयालुता, परोपकारिता आ नेतृत्व विकास आदि गुणक प्रति आकर्षण ओ जिद्दी स्वभावक प्रति घृणाक भाव उत्पन्न करबाक प्रयास कयलनि अछि। एहि पोथिक पारायणसँ नेना लोकनि शिष्ट ओ निर्भीक नागरिक बनबाक चेतना ग्रहण कऽ सकैत छथि। प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रजीक भारत भाग्य विधाता भाग एक पोथीकेँ वर्ष 2016 साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान कयल गेलनि। ई जीवनी संकलन थिक। एहिमे प्राचीन, मध्यकालीन ओ आधुनिक कालक 23 गोट भारतीय वैज्ञानिक लोकनिक तथा 3 गोट नोबेल पुरस्कार विजेता परदेशी वैज्ञानिक लोकनिक जीवन ओ कर्तृत्वक संक्षेपमे परिचय उल्लिखित भेल अछि। चरक, सुश्रुत, पतंजलि, भास्कर, प्रफुल्ल चंद्र राय, सी वी रमन, होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा, शांति स्वरूप भटनागर, राजा रमन्ना, जयंत विष्णु नार्लिकर आदिक परिचय ओ कर्तृत्व नेना लोकनिकेँ भारतीय विज्ञानक गौरवशाली परम्परासँ अवगत करबैत अछि। सङ्गहि बाल मनमे वैज्ञानिक बनबाक उत्सुकता सेहो जगबैत अछि। सरल सहज भाषा ओ संक्षिप्त प्रस्तुति एहि पोथीक अन्यतम विशिष्टता थिक। बहुआयामी रचनाकार, निविष्ट सम्पादक ओ पत्रकार डॉक्टर अमलेन्द्र शेखर पाठकक बाल उपन्यास लालगाछीकेँ वर्ष 2017 साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान कयल गेलैक। लालगाछी 23 गोट खण्डमे विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विभाजित अछि। प्रत्येक खण्ड स्वयंमे पूर्ण बालकथाक आनन्द प्रदान करैत अछि आ समेकित रूपमे एकटा श्रृङ्खलाबद्ध घटनावलीसँ युक्त उपन्यासक आस्वाद प्रदान करैत अछि। उपन्यासक केन्द्रमे नेना लोकनिक मनसँ भूत प्रेतक अन्धविश्वासकेँ मिटाबि राखल गेल अछि। एहि लाथें हिनका लोकनिकेँ निडर, साहसी आ नेतृत्व क्षमतावान बनेबाक शिक्षा सेहो प्रदान कयल गेल अछि। गागरमे सागरक अनुष्ठानपूर्वक लेखक नेना लोकनिकेँ देश दुनियाक विविध विषय वस्तुक परिज्ञान दिस उन्मुख करबैत छथि, जथा मिथिलाक दर्शनीय स्थल सभक परिचय, एकर गौरवपूर्ण इतिहास, अपन भाषा ओ साहित्य संस्कृतिक प्रति अनुराग आदि। अयाची ओ शंकरक कथा, विद्यापतिक अवसानक कथा, खुदनेश्वर धामक कथाक सङ्गहि राणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदिक चर्चा कऽ बालमनमे मिथिलाक गौरवक सङ्गहि भारत राष्ट्रक प्रति भक्तिभावकेँ जागृत करबाक अनुष्ठान भेल अछि। पर्यावरण संरक्षणक प्रति सतर्कता, उत्साह, अभय, संतोष, नेतृत्व आदि गुणक प्रति अनुरक्ति आदिक वर्णन बालरुचिक परिष्कारक दृष्टिएँ उपाध्येय अछि। बालवीरता पुरस्कारक नियोजन द्वारा नेना लोकनिकेँ उत्कृष्ट सामाजिक काजक प्रति प्रतिबद्ध बनयबाक दिशामे ई पोथी अनन्य अछि। श्री वैद्यनाथ झा प्रणीत बालकथा संग्रह खिस्सा सुनू बाव केँ 2018 साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्रदान कयल गेलैक। एहिमे 21 गोट बालकथा अछि। कथाकार सहज शब्दावलीक माध्यमे नैतिक शिक्षा, मेहनतिक प्रतिष्ठा, खेलकूदक महत्व आदिक सङ्गहि विज्ञानक कतौक ज्वलन्त विषय वस्तुकेँ नेना लोकनिक हृदयमे आत्मसात करबाक प्रयास कयलनि अछि। नकली गाछ, छत्तामे भूर, सखी परी, वैकुण्ठमे मुकदमा आदि पर्यावरण संरक्षणसँ सम्बद्ध कथा अछि तँ बिलट कका, चलित रहू धार जकाँ, मुस्की घुरल आ असल कर्म आदि कथामे समक प्रतिष्ठा प्रतिपादित भेल अछि। संयुक्त शब्दक न्यूनतम प्रयोग पर ध्यान राखल गेल अछि। कथा प्रवाह गत्वर ओ मनलग्गु अछि। कवि, कथाकार, उपन्यासकार श्री ऋषि वशिष्ठकेँ बालकथा संग्रह ई फूलक गुलदस्ताकेँ 2019 साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान कयल गेलनि। एहिमे 16 गोट कथा अछि, जथा ई फूलक गुलदस्ता, डुगडुग्गी, सुटहा, दाम, एकटा मायक ममता आदि। स्वभावतः हिनक बालकथा सब नहि केवल बाल मनक ग्राह्यताक सङ्ग सन्तुलित अछि अपितु हिनक सुचिन्तित लेखनक सेहो परिचय करबैत अछि। ई फूलक गुलदस्ता कथा पर्यावरण संरक्षणके केन्द्रमे राखि रचल गेल अछि। 2020 ईस्वीक साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार वरिष्ठ गीतकार ओ बहुआयामी रचनाकार श्री सियाराम झा सरसजीक बाल कविता ओ गीतक संग्रह सुनहुला इजोतवला खिड़की पोथीके प्रदान

0: कयल गेलैक अछि। एहि निष्णात रचनाकारक पुरस्कृत पोथी नेना लोकनिक ज्ञानक परिधिकेँ विस्तृत आयाम प्रदान करबामे समर्थ अछि। एहिमे इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, काव्यकला, समाज संस्कृति, राष्ट्र, पर्यावरण आदि विविध विषय वस्तुसँ नेना लोकनिके अवगत करयबाक सङ्गहि हुनका लोकनिमे महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, सृजनशीलता, राष्ट्रभक्ति आदि गुणक विकासकेँ प्रश्रय देल गेलैक अछि। बालमनक हेतु सहज ग्राह्य ई संग्रह नेना लोकनिक मनोरंजनक सङ्गहि ज्ञानक अभिवृद्धि ओ जिज्ञासाक समनमे सहायक अछि तथा बौद्धिक विकासक दृष्टिएँ उत्कृष्ट अछि। स्पष्ट अछि जे साहित्य अकादमी पुरस्कृत मैथिली बाल साहित्यक पोथी सब जे गद्य आ पद्य दुनू विधामे मैथिली बाल साहित्यक प्रतिनिधि रचना सब थिक, एहि कोटिक साहित्य रचनाक मार्गदर्शक अछि आ एहि साहित्यक रचनाक हेतु उत्प्रेरक सेहो।
1: हाँ, तऽ एखन अपना सब सुनैत रही ई वार्ता मैथिली बाल साहित्य पर। वार्ताकार छलथि डॉक्टर योगानंद झा। तऽ वास्तवमे बाल साहित्य जे अछि अपन सबके धियापुताके मे धैर्य, साहस आ ज्ञानक प्रचार करैत अछि, प्रसार करैत अछि, जैसे कि बच्चा नेनपनेसँ बहुत किछु हुनकामे प्रेरणा अबै छनि। कतेक एहन नाटक होइत अछि, नाटक देखलासँ हुनकामे ज्ञान बढ़ै छनि आ ओहिसँ सीखै छथि, ओकरा जीवनमे, व्यावहारिक जीवनमे ओकरा उतारबाक प्रयास करै छथि। तऽ आब जेना कार्यक्रमक परम्परा रहल अछि शब्द विमर्श करबाक, तऽ अहाँ सबसँ एक गोट आग्रह, जे कोनो प्रचलित शब्द जँ बुझल हुए तऽ अवश्य पत्रक माध्यमे वा ईमेलके माध्यमे अवश्य पठाबी। तऽ कार्यक्रमक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004 आ ईमेल के पता अछि akashwanidarbhanga@gmail.com। तऽ निश्चित रूपसँ पठाबी। तऽ आब बढ़ै छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अबैत अछि दुगदुग्गी। ओह, की कहू, तेहन मनमे दुगदुग्गीमे छी, एतेक शंका अछि जे की हैत आ नहि हैत। मोनमे एकटा भय बनल अछि, डर बनल अछि कि आब हैत की। एकटा शब्द अबैत अछि दुरदुरायब। ओह, ई नेना केहन छथि, कहै छै ने जे एह ई नेनाके कतबो हिनका बुझाक कहै छियनि मुदा बाते नहि बुझै छथिन, तैँ तऽ सब हुनका दुरदुरेने रहै छनि, बिगड़ने रहै छनि, जे बात बुझिते नहि छथिन, बुझाक हम थाकि गेलहुँ। एकटा शब्द अबैत अछि साठि घाटि। एह, देखियौ ने, हिनका बड्ड स्नेह छनि एक दोसर सङ्ग, तैँ तऽ हरदम हिनका साठि घाटि दुनूके एके पेट रहै छनि, आ जखन कतौ जेतथि तऽ सङ्गे जेतथि तऽ बड्ड साठि घाटि रहै छनि। तऽ एहि शब्द विमर्शक सङ्ग आब देखू कार्यक्रम लगचा गेल अछि, जे कार्यक्रमसँ विदा लेबाक, मुदा अहाँ सबसँ एक गोट आग्रह जे कार्यक्रम केहन लगैत अछि, अपन सुझाव, अपन प्रतिक्रिया अवश्य पठाबी। तऽ अगिला भेट धरिक लेल हमरा यानी नीतूके दियौ आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली में संबोधित हमारा कार्यक्रम सिंगरहार, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अपने रेडियो सेट के अलावे आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के भी माध्यम से। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे। एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे। देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज

0: संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुजारों को खबर किया कि वह इस मामले को सियासी रंग न दें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह SIT की तश्कील के बारे में हिदायत हासिल करें कि क्या मुकामी पुलिस की बजाय उस SIT पर भरोसा किया जा सकता है जो FIR दर्ज होने से पहले इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इस मामले की अगली समाअत करेगी, जब उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मामले में SIT जांच के बारे में इत्तला देगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमिजिश किए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोल और कुदरती गैस के वजीर मुमलकत सुरेश गोपी ने कहा कि इथेनॉल की आमेजिश में इजाफे के सिलसिले में कोई भी फैसला तफसीली, साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर मौसुफ ने कहा कि E20 कोई नया ईंधन नहीं है और उन्होंने मजीद कहा कि इथेनॉल एक सदी से ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का पेट्रोल में इथेनॉल आमेजिश प्रोग्राम साल 2001 में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ था। जनाब गोपी ने कहा कि E20 की जानी मुंतकली रफ्ता शवाहिद पर मबनी और साइंसी जायजे की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की आमेजिश में साल 2013-14 के 1.53% से साल 2025-26 में 20% का इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मकसद साइंसी जवाज के साथ पेशकदमी करना है और ईंधन के मेयारात में बेहतरी लाना है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोलदोवा के दरमियान गहरी माशी मसरूफियात की बात की है और कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला नमो के कई शोबों में इश्तराक को वसत देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
1: आई एम ग्रेटली एनकरेज्ड बाय द ग्रोइंग कोऑपरेशन। देयर इज इमेंस पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स सच एज डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांसमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ मोल्डोवा इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स, ग्रीन हाइड्रोजन।
0: सदर जमहूरिया आज चिसिनाउ में भारत मोल्दोवा कारोबारी फोरम से खिताब कर रही थीं। विकसित भारत 2047 का हवाला देते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर मबनी इश्तराक का खाहां है, वहीं मोल्दोवा का स्ट्रेटेजिक महल वकू और हुनरमंद अफरादी कुव्वत भारतीय कारोबार के लिए उम्मीद अफजा इम्कान की पेशकश करती है।
1: India also offers good business opportunities for Moldovan companies for trade and business. We remain committed to fostering a transparent, predictable and investor-friendly business environment. I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in Moldova. Your enterprise, vision and commitment will be instrumental in building enduring economic partnerships.
0: सदर जमहूरिया ने डिजिटल टेक्नोलॉजियों, मसनूई जहानत, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे, ज़िरात, फार्मास्यूटिकल्स और सेहत देखभाल को मुस्तकबिल के इश्तराक के कलीदी मैदान करार दिया। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी हमनसब माया सांदू के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने चिसिनाउ में स्टेफन शेल मारे शीस फंट यादगार पर गुलाए अकीदत नजर किए। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू डिवीजन में बारिश से वाबस्ता वाकयात में मजीद 4 लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले 2 दिनों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। सैलाब से मुतासर राजौरी और पुंछ जिलों में मुसलसल बारिश के सबब बचाव और राहत कार्रवाइयों में रुकावट पैदा होने से कम 7 अफराद अब भी लापता हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ जिलों में शदीद बारिश, अचानक सैलाब और चट्टानों के टुकड़े गिरने के पेश नज़र सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ दोनों सरहदी जिलों में बारिश से मुतालिक वाकयात में जान गंवाने वालों के हर कुंबे को 6-6 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: आज की शदीद बारिश ने पुंछ और राजौरी अजला में बचाव कार्रवाई को काफी मुतासिर किया। एक दिन पहले अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकये में 12 अफराद

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भरत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112311 0411 0112311 0112311 4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेज होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेज होते हैं और आयकर विवरण इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूं आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फरहास अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई, बताने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो लोग जहां पर वो अटक गए हैं, जहां उनको डाउट है।
0: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
1: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है एक टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
0: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो पांच मैंने इनकम्स बताई थी, उन पांच इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि

0: आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पर मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए, ये सब। अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताने रहा हूं कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इंफॉर्मेशन और ये फिगर कहां से ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
2: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रुपए तक अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि वो ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं
1: जी। और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा जी। अमित जी
3: नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, कोहली सर को नमस्कार। सर
0: नमस्कार अमित जी। नमस्कार
3: सर, मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा जी जी जी।
3: हाँ सर, सर मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स से रिलेटेड है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ
0: जी,
3: तो सर तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ
0: जी।
3: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर? धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है, और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है, हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और बिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है, तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आप वो जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए, या फिर आपका कोई TDS कट गया है पर वैसे टैक्सेबल है, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फरहद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है, तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो वो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए ITR में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं, और एक सीनियर सिटीजन के लिए यह होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है, कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं, और मैं तो

0: तो आज इस शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं, और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं, और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहत बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में संशय रहता है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए।
0: जी, तो जी। उस चीज़ और में मैं उसी पे आ रहा था, तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन। जी मकसूद जी,
2: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
2: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जन सेवा केंद्र चलाता, तो उस पर ना गांव के अंदर है जन सेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी,
2: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुँच जाता है जी, अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जन सेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब कि वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा, तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फरहत मैं ठीक समझ रहा हूं, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे हैं, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। जी रशीद जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
3: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50 हो जाए या 12,80 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
0: जी जी,
3: इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिज्यूम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था ATTTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई, आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा। पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: है। जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या ITR के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
4: नहीं, ITR के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: और मैं आपकी इजाजत हो फरहत, तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दें तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट

0: नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए, तो ऐसे में एक हल निकला है। हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में लाके और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। जीएसटी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40 लाख रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन जीएसटी शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं। जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है, तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
1: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो जीएसटी नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बता दें।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं।
2: लोगों से हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से एनपी सिंह जी।
3: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मेरा नाम एनपी सिंह है, मैंने एब्रीविएशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके
3: ओके। शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
3: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
3: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
3: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है, अनियमितता को छोड़कर, ये लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रख सकें।
0: अच्छा,
3: और कौन सी ऑप्शन बेटर
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, मैं क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिनको जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने सिंह साहब बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये है, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है। अब की बार जो जैसा लोग बता रहे हैं, तो न्यू रिजीम उनके लिए है जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शंस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शंस न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको यह सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश कर रहा हूं।
2: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं।
1: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे LIC में है, NSE में है, FD है या इस तरह की, तो वो या PPF है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
2: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ
2: जी।
4: और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं, और मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर

0: आई है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम एनआरआई कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं, पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं। तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है, उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे, उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है, उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था, मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
1: जी अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं और पिछले दो साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं। तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
0: देखिए, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है, फिर तो भरना पड़ेगा। हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फर्क दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जनसेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर आयकर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं, आपके सवाल से एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने तीन साल से फाइल ही नहीं करी, तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई, रह गई जाने में अनजाने में। तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, तीन साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, दो साल पुरानी तो 50%, तीन साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार यह इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है, और वो फिर कंपलसरी जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी,
2: भरत जी आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
0: सर हमारा भी सब प्रेम,
1: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
2: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
0: जी
2: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे कुटीर उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है, क्या थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से, रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग आईटीआर दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस?
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्द होता है किसी की गलतियां निकालना, और आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया, और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये होदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
3: ऐड करूंगा इसमें कि कुली अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है, पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता
3: और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।

0: नहीं वो हो जाए, मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी,
1: इनकम की गलत है, लेकिन तो, जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26 AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर, मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है।
2: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
3: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्कार
3: सभी पैनल को नमस्ते।
0: नमस्कार
3: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी, तो यूजर आईडी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम डरते हैं वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो उसमें लिख के आ रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
3: अगर अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ,
0: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है।

0: बड़े गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया।
1: तो अगर
0: अनलॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से घर रहा हूँ, भरने वाला।
1: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर, नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है, उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है, उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है। तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं, और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया, तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
2: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं, हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
2: नमस्कार
3: जी, मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पर क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं इसे जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
1: अरे अरे रवि जी, आप क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत तो उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है, आप नहीं भर रहे हैं, तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा। पेनल्टीज बहुत भारी है, मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं, थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
2: और अब थोड़ा सा समय बचा है, तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
1: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें, और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न आ रही है आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इंफॉर्मेशन को चेक जरूर कर।
2: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करें 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी, डेट एक्सटेंड हो ना हो आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
2: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
1: शुक्रिया।
2: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, यह आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभा सदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जो अभी तेलंगाना में है 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेन दला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी, वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे, इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। मान्य सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी

0: संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा यह अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक।
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहां से लेंगे? मोदी जी ने पांच प्रण लिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारे मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया, उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं, और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी वो सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।

0: संसदगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा, अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी। हाँ,
1: हेलो
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं राम कुमार साह सिमरिया भिंडी पंचायत के कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या हाल है वहाँ का? अभी क्या खबर, कहिएगा, किस तरह के मौसम है?
1: मौसम में तो कोई दूरी नहीं है, करीब 20-30 किलोमीटर की दूरी है। जो स्थिति आपके दरभंगा की वही स्थिति यहाँ की भी है। वर्षा
0: और
1: नाम की चीज नहीं हो रही है,
0: अच्छा,
1: किसान बहुत व्यथित हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार वो पंपिंग सेट है
0: अच्छा
1: या फिर
0: अच्छा
1: बिजली के
0: जी
1: मोटर
0: जी
1: से
0: बिल्कुल।
1: इस्तेमाल करते हैं।
0: और ये के आकाशवाणी से हमारे आप कौन-कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: ज्यादा तो नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन हेलो जिंदगी है और ये फरमाइश जो है वो है,
0: अच्छा
1: और फिर नारी संसार जो है तो
0: बिल्कुल।
1: वो
0: तो
1: सदन में सुनाता है।
0: आज के फरमाइश के रूप में आपकी ओर से क्या फरमाइश है?
1: नौनिहाल फिल्म का है श्रीमान,
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ,
0: मोहम्मद
1: वो
0: रफी की
1: गाना
0: आवाज
1: सुना
0: में,
1: दिया जाए जी।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में सुनवाएं
1: हाँ,
0: लीजिए। तो आपके फरमाइश पर आपका पसंद का और हमें सभी के पसंद का ये गीत नौनिहाल फिल्म का सुनवाते हैं।

0: हेलो आकाशवाणी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दरभंगा से बोल रहे हैं, फैजुल्ला खान।
0: अच्छा फैजुल्ला जी,
1: खान साहब की हवेली।
0: जी जी जी फैजुल्ला जी, आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समझिए बहुत शिद्दत से लगा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: लगभग तीन महीना पर प्रयास करने के बाद लगा है।
0: चलिए, आप निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं तो आकाशवाणी के प्रति और खासकर आकाशवाणी दरभंगा को सुनने के प्रति जो आपका लगाव है वो इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
1: जी जी जी जी बहुत बहुत बहुत हम लोग प्रोग्राम अपना दरभंगा का सुनते हैं, सारा प्रोग्राम, लगभग पूरा प्रोग्राम सुनते हैं।
0: जी जी
1: मिलता है और सारा गम भूल करके इसी में लगते हैं तो सारा गम भूल जाते हैं।
0: और
1: थके हारे आते हैं, कोई गम
0: जी जी
1: होता है तो अपना रेडियो
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस ये जो है मोबाइल की दुनिया में और टेलीविज़न की दुनिया में भी अभी आप रेडियो सुनते हुए और उसका आनंद उठाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
1: हमारा हमारा इससे पहले प्रोग्राम था तो रेडियो हमारा खराब हो गया था, तो मैंने रेडियो जाकर के नया खरीद करके लाया। मैं रेडियो खरीद करके रेडियो ही में प्रोग्राम सुनता हूँ और आप सब से उम्मीद करते हैं जिसी तरह आप लोग हमारे साथ सलामत रहे।
0: जी जी जी, हमारे यहाँ से
1: बरकत दे।
0: जी हमारे यहाँ से और कौन कौन कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: लगभग प्रोग्राम सबसे पहले जो सुबह में प्रोग्राम होता है 7 बजे।

0: जी जी जी
1: फिल्म गीत देते हैं
0: जी। नमस्कार मिथिला
1: जी, जी जी नमस्कार मिथिला। सबसे पहले तो वही सुनते हैं, सवेरे उठते हैं
0: जी।
1: और अपना जो फरमाइशी 3 दिन जो चलता है वो सुनते हैं, और गांव घर सुनते हैं,
0: विभिन्न कार्यक्रमों को आप सुनते हैं।
1: आपका जो एतवार वाला प्रोग्राम है बच्चे का, शनिचर को, बच्चे का शनिचर को देते हैं या एतवार को, वो भी सुनते हैं।
0: तो आज आप
1: उसमें एक प्रोग्राम और है टेलीफोन वाला, जो विशेष बताते हैं बीमारी उमारी के बारे में।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल,
1: तो वो विशेष ज्यादा सुनते हैं। उसमें भी कोशिश की है कॉल लगाने का, सफल नहीं हुए हैं।
0: अच्छा, सफलता जरूर मिलेगी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, और हम चाहेंगे कि आपके द्वारा आज क्या है फरमाइश, कौन से गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फरमाइश है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पे देखता होगा,
0: धरती फिल्म से।
1: जी, धरती फिल्म है
0: जी, बिल्कुल,
1: मेरे महबूब को जिसने बनाया
0: जी, बिल्कुल आपको सुनवा रहे हैं धरती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: जी जी जी जी जी,
0: तो आइए सुनते हैं हम सभी मिलकर आपके फरमाइश को।
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी सर,
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दरभंगा से बोल रहे हैं, शिवधारा
0: अच्छा, शिवधारा से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं?
1: जी, एमडी रोजेश सर।
0: अच्छा, आप क्या पहली बार फोन किए हैं हमें?
1: दो बार किए सर, इससे पहले भी किए थे, एक
0: अच्छा
1: साल के बाद लगा कॉल
0: अच्छा कॉल ही लगा है 1 साल बाद।
1: जी।
0: तो हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: सभी कार्यक्रम सुनते हैं सर।
0: अच्छा, और कभी कभी हमारे किन किन कार्यक्रमों को आप सुनते हैं?
1: जी, जैसे वो हो गया, सेहत के बारे में बताता है, वो
0: अच्छा अच्छा
1: सब सुनते हैं
0: जी
1: सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: सर
0: अच्छा, आज आपकी ओर से क्या फरमाइश है? कौन से फिल्म के गाने सुनेंगे?
1: ये सर हिरांजा का गाना है सर,
0: ठीक,
1: तुम थे मैं तेरा दीवाना। आप कौन सर बोल रहे हैं सर? अच्छा
0: जी मैं दीपक बोल रहा हूँ।
1: सर, हाँ, इससे पहले सज्जाद सर से बात हुई थी सर।
0: जी, तो लीजिए आपके फरमाइश का ये प्यारा सा गीत हीर रांझा का, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनवा रहे हैं।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी। नमस्ते सर जी।
0: जी जी नमस्ते नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा सतीश रघुवंशी जी, छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे हैं, आप वहाँ से हमें सुन पा रहे हैं?
1: जी सर, छिंदवाड़ा एमपी से बोल रहा हूँ सर जी। बहुत अच्छा प्रसारण हो रहा सर जी।
0: ओ तो हमारे किस किस कार्यक्रम को आप सुनते हैं?
1: सर मेरे को तो ये हेलो आकाशवाणी सर बहुत ही अच्छा पसंद आता सर जी, और मैं फॉलन कार्यक्रम में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ सर।
0: अच्छा,
1: क्या
0: तो
1: होता है कि सर इसमें दूर दराज के हमारे जो श्रोता लोग श्रोता होते हैं उनकी वार्तालाप सुनने को मिल जाती है, और हमारे आरजे रहते सर उनकी आवाज भी सुनने को मिल जाती है सर इसमें।
0: जी, और आप लोगों का प्यार जो है वो हमें भी बहुत उत्साहित करता है इस तरह के कार्यक्रमों को और अच्छे से करने को लेकर।
1: जी बिल्कुल सर।
0: आपके द्वारा आज का क्या फरमाइश है, किस फिल्म का आप गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है सर साथी, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, हुई आखना और ये दिल मुस्कुराया, याद साथी कोई भूला याद आया, ये वाला गीत सुनना सर जी।
0: जी, अनुराधा पौडवाल की आवाज में।
1: जी, और कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करना सर जी, इस समय लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं हमारे दोस्त लोग।
0: जी, जरूर।
1: सर हमारा ग्रुप है सर हेलो फरमाई, देखता रेडियो श्रोता ग्रुप, इसमें हमारे गौतम राय भोले जी हैं सर, गुरुबंद कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, और टेकचंद अग्रवाल जी हैं, और धीरज रवारी इस समय लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं सर, उनको भी डेडिकेट है। इन सभी दोस्तों का सुनना सर जी मुझे आएगी।
0: जी, बिल्कुल। तो आपके और आपके सभी दोस्तों के साथ चलिए हम सभी मिलकर सुनते हैं साथी फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।
1: जी थैंक यू।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी सर जी को राधे राधे।
0: जी नमस्कार।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, तेरसीय जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: केसरी सिंह राजपूत जी भोपाल मध्य प्रदेश से आप बोल रहे हैं, आपका आकाशवाणी दरभंगा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। तो और आप सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि आज आप कॉल ज्यादा लेंगे एक घंटे में, मैंने अभी अभी 10-15 मिनट पहले रेडियो ट्यून किया है।
0: जी
1: तो
0: जी हमारी कोशिश रहती है
1: सर।
0: जी बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं से जुड़ें। ये जो गीत सुनना है ये तो एक बहाना है, इसी बहाने हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, और आपका जो स्नेह आपका जो प्यार है ये हमें और ही उत्साहित करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, गाने तो 3 मिनट या 3.5 मिनट बहुत लंबा गाना हो तो ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट बहुत अच्छा हो जाता है, 3, 3.5, 4 मतलब 3 से 4 के बीच में।
0: जी जी
1: सही है कुछ काम
0: आप
1: और श्रोताओं से बात कर लो, भले 2 मिनट कर लो, 2.5 मिनट, 3 मिनट।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हैं?
1: सर मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, पेंट करते हैं।
1: हाँ सर,
0: चलिए नजदीक नजदीक नजदीक में रहता तो आपके पेंटिंग हम भी देखते, अच्छा लगता। जी
1: सर आपका बड़ा फन है।
0: और आज के फरमाइश क्या है आपके?
1: आज सर एक निकाह मूवी में एक गाना है सलमा आगा जी की आवाज में, तो वो सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे, जी बिल्कुल सुनवाएंगे। और लीजिए आपके फरमाइश पर।
1: और सर कहना चाहेंगे आपकी तारीफ में कि कमी तो नहीं पर कुछ कमी लगती है दोस्त, ये मुस्कुराती आंख भी सब नमी लगती है दोस्त, जब से बिछड़ेगी तुझसे प्यार की जिंदगी तो अपनी तो सांस भी अजनबी सी लगती है दोस्त। और जितने भी सुन रहे हैं हमारे हेलो फरमाइश रेडियो ग्रुप के साथ सभी मित्रों को नमस्कार, आपको सभी सुनने वालों को।

0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतने अच्छे शेर सुनाए। और आइए सुनते हैं आपके द्वारा किए गए फरमाइश पर ये गीत सलमा आगा की आवाज़ में, निकाह फिल्म से।
1: ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम परकोली प्रखंड बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से।
0: जिला मधुबनी से बोल रहे हैं, और क्या करते हैं आप?
1: हम किसानी करते हैं।
0: अभी जो किसान

0: की जो स्थिति है या अभी जो वर्तमान जो इस बरसात के मौसम में क्या कुछ कहिएगा?
1: वर्षा वर्षा नहीं हो रहा है सर, पता मुठा के थोड़ा बहुत लोग लोग रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा और आकाशवाणी के किन किन कार्यक्रमों को आप सुनते हैं?
1: 5:45 से जो शुरू होता है वो हम तक, मतलब 11 बजे रात तक जो भी सुनने का समय मिलता है सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा लगा। आप आपके कॉल कितने दिन पर लगे हैं?
1: लगभग 2 महीने पर लगा है।
0: चलिए, फिर भी आप पूरे प्रयास में लगे रहते हैं और हमें भी इस बात की खुशी होती है कि जो हमारे श्रोता हैं वो बिल्कुल ही तन्मयता के साथ और इस सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं और इसी से हमें एक उत्साह मिलती है, हम उत्साहित होते हैं और फिर अन्य कार्यक्रमों में जो एक गुणवत्ता है वो उसे और बढ़ाने में हमें और मदद मिलती है।
1: नहीं नहीं भी लगने के सुनते हैं सभी कार्यक्रम, अगर लग गया तो कॉल ठीक है, नहीं तो सुनते तो है
0: जी। आज का फरमाइश क्या है?
1: उनका नाम है जनता हवलदार, गाने का बोला है हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम के मिली,
0: अनवर की आवाज में।
1: जी जी
0: जी, तो आइए सुनते हैं आपके फरमाइश को।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद हाशिम सिमरा चतरिया से।
0: अच्छा, तो क्या कहिएगा, क्या हालचाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: बहुत
1: और आप
0: बढ़िया।
1: लोग? ठीक है, हाँ जी, बढ़िया सर।
0: इतने दूर दूर से और इतने पास पास से, सभी जगहों से जब हमारे श्रोता जब हमें फ़ोन करते हैं तो लगता है कि अभी भी आकाशवाणी को सुनने वाले लाखों लोग अभी भी हमें सुन रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: तो
1: और हम,
0: क्या
1: हाँ
0: करते हैं आप?
1: सर, हम सिलाई का काम टेलर खोले हुए हैं सिंहभाड़ा चौक पर। मेरा
0: अच्छा,
1: दुकान का नाम है भारत टेलर।
0: और जब काम से फुर्सत मिल जाए तो आप किस मनोरंजन को ज्यादा पसंद करते हैं?
1: हम न्यूज सुनते हैं, और आपका जो हेलो प्रभात कार्यक्रम है, और दिन में जो है ना मौका मिलता है तो 1 बजे से
0: बिल्कुल
1: हम लगभग 3:15 बजे तक, 3 बजे तक वैसा ही हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल, मनोरंजन के साथ साथ आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों को भी आप सुनते हैं?
1: हाँ, वो सब है। और जो दिल्ली से प्रोग्राम देते
0: जी
1: हैं
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: ज्ञान जो हम तो सुनते रहते हैं, तो बहुत
0: अच्छा,
1: अच्छा लगता
0: बहुत अच्छा लगता है,
1: है।
0: और हमें भी अच्छा लगता है जब आप ऐसे श्रोता हमें फ़ोन करते हैं और फ़ोन के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। और
1: जी सर,
0: क्या फरमाइश है आपके आज के?
1: सर मुझे गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, ये
0: जी
1: इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ।
0: जी जी
1: हाँ, यही गाना सुनना है।
0: आइए, तो आपके फरमाइश पर भरोसा फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो आकाशवाणी
1: नमस्कार।
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: कर
0: जी, आपका स्वागत है हेलो आकाशवाणी में। क्या आपके फरमाइश क्या हैं?
1: रहे हैं।

0: मेरे साथ ही फिल्म गाना सुना क्योंकि समय कम है।
1: जी जी बिल्कुल, आपके फरमाइश का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनवा रहे हैं। जी जी जी जी सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, ये दरभंगा है आकाशवाणी का। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो

0: बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
3: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
2: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। समाप्त होती है हमारी दूसरी सभा। कल सुबह 5:45 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद।